印度特里广播电台，听众朋友们，请收听扎吉辛格和吉特啊辛格唱的歌曲。

0: 印度德里广播天台听众朋友们，请收听扎吉信歌唱的歌曲。
1: Admi bulbula hai pani ka, aur pani ki behti sathe par tootta bhi hai, doobta bhi hai, phir ubharta hai, phir se behta hai. Na samandar nigal saka isko, na tawareekh tod paayi hai.वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुल।

印度的里广播电台听众朋友们，现在我们播送印度著名的女士歌手苏尼迪·乔汉唱的歌曲，请各位欣赏。

0: विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।
1: सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वादुपुनी।

0: विकसित रेल स्थानकानां उद्घाटनं भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत् तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: पूर्वाह्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति, अथ 91 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योगमंत्री पीयूष गोयलः ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेशमंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार निवेश अंकिकीय परिवर्तन साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्शः कृतः। अनन्तरं साह्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मंत्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मंचम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिमबंगालराज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुडी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुडीनगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र VSF इत्यस्य 18वां बटालियन् इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्यचक्रीय स्पर्धायां चीनदेशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।

0: 1500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
0: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भवः का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: वर्किंग टू स्ट्रेंथन ईच अदर्स,
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब मैं लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
7: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला

0: भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the 4-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
4: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
3: Earlier in the day, India got its first hydrogen power.

0: on PM CM's removal bill defers draft report. Drawing attention to possible plans to introduce plastic currency in India, the Times of India reports, in step towards plastic notes, RBI floats expression of interest for polymer substrates. And finally, the passing away of legendary cricketer Sir Garfield Sobers is widely noticed in the press. The Indian Express writes in its obituary, legendary all-rounder with many firsts. He didn't know how special he was. And with that, it's back to you, Sanjay.
1: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. PV Sindhu enters into final of Japan Open badminton tournament. And in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-दाखला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में BSF की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है। टोक्यो में जापान बैडमिंटन ओपन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पाक पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम पंजाब के शहर जालंधर से 20 रियासतों के 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS के तहत जदीद बनाया गया है। ये प्रोग्राम स्टेशनों को जदीद बनाए जाने के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में शामिल है। मुसाफिरों की सहूलतों के लिए की गई इन स्टेशनों की जदीदकारी पर तकरीबन 1,570 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इन स्टेशनों को विरासत भी विकास भी के जज्बे के साथ नए सिरे से तैयार किया गया है और इस अमल में मकामी सकाफत, विरासत और फन तामीर का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। इस मौके पर जनाब मोदी ने करतौली अम्बाला ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के रबते में इजाफा होगा। वजीर अजम ने अमृतसर और वाराणसी के दरमियान संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसकी वजह से भारत के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम रूहानी और सकाफती दो मराकज़ के दरमियान बराह रास्त रेल खिदमात शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने चार लेन वाले ग्रीनफील्ड दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 30.9 किलोमीटर के छठे पैकेज का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि इन 75 तजदीद शुदा रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवेज़ के जरिए पिछले कुछ बरसों में की गई अक्सर तब्दीली की अक्कासी होती है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
2: इससे पहले दिन में वज़ीर आज़म मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेगी और 79 किलोमीटर का फासला महज 2 घंटे में तय कर लेगी। जनाब मोदी ने जिंद में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए के बहुत से कौमी तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के लिए वक्फ किया। वजीर आजम ने चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के तरक्याती कामों का आगाज़ किया, जिसमें हिफ्जान सेहत, तालीम और सड़क बुनियादी ढांचा शामिल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के जुमागच इलाके में BSF की 18वीं बटालियन की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। ये चौकी भारत बांग्लादेश सरहद के करीब वाक़ है। वो BSF से मुतालिक बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखिला सिलीगुड़ी में एक मीटिंग की सदारत भी करेंगे, जिसमें रियासत में सरहद पर बंदोबस्त और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
4: जनाब अमित शाह मगरबी बंगाल के 3 रोज़ा दौरे के लिए कल रात बागडोगरा पहुंचे। आज वो शुमाली बंगाल में सरहदी हिफाजी दस्तों के 2 कैंपों का दौरा करेंगे और एक प्रहरी सम्मेलन से खिताब करेंगे। शुमाली बंगाल के सरहदी इलाकों से मुतालिक मामलात पर उत्तराखंड में कई मीटिंगों का इनेकाद करेंगे। वज़ीर-आला सुविंदो अधिकारी और रियासती सरकार के सीनियर अफसरान इन मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब शाह आज शाम कोलकाता चले जाएंगे। कल वो सीनियर पुलिस अफसरान के साथ एक मीटिंग में रियासत में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। वो कौमी लाइब्रेरी में एक तकरीब में शिरकत करेंगे और बिस्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर से धौलागढ़ में अमूल डेयरी प्लांट की संग बुनियाद रखे जाने की एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। कोलकाता से संदीप उन्दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल टेलिन में एस्टोनिया के खारजी उमूर के वजीर मार्गस सखना से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल तब्दीली, साइबर सलामती और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के शोबों में भारत एस्टोनिया इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूरोपीय यूनियन आज़ादाना तिजारती माहदे से मुतालिक बातचीत के कामयाब अख्ताम के बाद नए मौके पैदा करने के इम्कान पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब सखना की मौजूदगी में भारत एस्टोनिया कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल सलाहियतों और आलमी दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के इम्तिजाज को भारत यूरोपीय यूनियन आज़ादाना तिजारती माहदा फ्रेमवर्क की मदद मिलने से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग मिल सकता है और भारत यूरोपीय यूनियन साझेदारी मजबूत हो सकती है। जनाब गोयल ने एस्टोनिया के कारोबारियों को भारत में सरमायाकारी करने की दावत दी और इस बात को नुमाया किया कि भारत की इस्लाहात, शफाफ, मुस्तहकम और मसाबिकत पर मबनी कारोबारी माहौल तश्कील देने पर मरकूज हैं। स्काई रूट एरोस्पेस आज सुबह विक्रम 1 को पहली बार इसके मदार में पहुंचाएगा। प्राइवेट कंपनी के जरिए तैयार किया गया ये भारत का पहला रॉकेट है जो सयारचों को खला में ले जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को भारत के खलाई सफर में एक तारीखी नया बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि 4 सतहों वाले इस रॉकेट को तेज़ रफ्तार से और मांग किए जाने पर सैयारों को खला में ले जाने की खिदमात फराहम करने के मकसद से तैयार किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि इस मिशन से मुल्क के नौजवानों की सलाहियत, अज़्म और कारोबारी जज्बे की अक्कासी होती है। साथ ही साथ इससे भारत के खलाई शोबे की असलाहत नुमायाँ होती हैं, जिनसे इख्तरा और कारोबारी जज्बे के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। अक्वामी मुत्तहदा की इंसानी हकूक़ से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है। एजेंसी ने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों की हलाकतों की तहकीकात के लिए कहा है। अक्वामी मुत्तहदा के इंसानी हकूक़ से मुतालिक कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के हुकाम से ज़ोर देकर कहा कि वह तहम्मुल से काम लें, बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करें और महीने के अवाखिर में इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के जिन वाक़ियात की इत्तला दी गई है उनकी जवाबदेही कायम करें। जनाब टर्क ने अमन व सुकून बरकरार रखने की अपील की है क्योंकि खित्ते में कशीदगी का सिलसिला लगातार जारी है। हाई कमिश्नर ने सभी हलाकतों की फौरी, मुकम्मल और गैर जानबदाराना तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है जो बेचैनी के सबब वाक़ हुई हैं। इस दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हुकूमत हमेशा कहती रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम सभी इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं।
5: मैं ये कहना चाहूँगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
2: गजा में आज एक तदफीन के दौरान हुए इसराइल के फिजाई हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और दीगर 22 जख्मी हो गए। نصیرت پناہ گزین کیمپ میں واقع اودا اسپتال نے ہلاک ہونے والوں کی

0: तादाद की तस्दीक की है। इस हमले पर इसराइली फौज की जानिब से कोई फौरी तबसरा नहीं किया गया। इसराइल और हमास ग्रुप गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जंगबंदी समझौते पर राजी हुए थे, जिसका मकसद 2 साल तवील जंग को रोकना था। इंतहाई शिद्दत की लड़ाई अब कम हो गई है, ताहम जंगबंदी के निफाज के बाद से गजा में कम अज कम 1,130 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन समझौते के नाकाम होने के बाद अमरीकी फौजों ने कल लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान की फौजी सलाहियतों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी फौज के फिजाई हमलों की शुरुआत के कुछ ही देर बाद कल रात जुनूबी बंदरगाही शहरों बंदर अब्बास और सिरिक में कई धमाके सुने गए। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि उसके ड्रोन्स ने खित्ते में मौजूद अमरीकी मोर्चों के खिलाफ अपने ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर उर्दुन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज़ को निशाना बनाया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 16,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के 3 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से पुणे खित्ते में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, सफ़र के वक्त और ट्रैफिक में कमी आएगी, नीज सनती व इकतसादी तरक्की को फ़रोग हासिल होगा। इन प्रोजेक्टों पर डिज़ाइन, रकूम की फराहम, तामीरात, कामकाज और मुंतकली DFBOT की तर्ज पर अमल दरामद किया जाएगा, जिन्हें 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमे मौसमियात ने हिमालय के ज़ैली मगरबी बंगाल इलाके और सिक्किम में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश और अलग अलग जगहों पर इंतहाई दर्जे की बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने साहली आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाओं की पेशगोई की है। इस दौरान आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में गर्मी और नमी का इम्कान है। मैक्सिको के जनूबी साहिल पर कल 7.4 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबॉर्न ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलजले के बाद किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम उन्होंने कहा कि हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। जंजबार के सदर और इनकलाबी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मोइनवी, जो भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले सदर मोइनवी ने कल चेन्नई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 63वें तकसीम असनाद में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि IIT मद्रास के पहले बैनुल अक्वामी कैंपस IIT मद्रास जंजीबार का क़याम तालीमी संगमील से कहीं ज़्यादा की नुमाइंदगी करता है। मारूफ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने दुनिया की 4थे नंबर की खिलाड़ी चीन की शेन यूफी को शिकस्त दी। सिंधु कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के दस्तबरदार होने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थी। फीफा आलमी कप में आज रात मायामी स्टेडियम में यूरोपीय हरीफ फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मुकाम हासिल करने के लिए प्लेऑफ मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मुकाम के लिए प्लेऑफ मैच को आलमी कप के हिस्से के तौर पर साल 1934 में टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद से सिर्फ साल 1950 के एडिशन में ये मैच नहीं हो सका था। इस दौरान कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप का फाइनल मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। हॉकी इंडिया आज से मुल्क भर में मुल्कगीर सतह पर कोचिंग और इंतजामी उमूर के तौर तरीकों से मुतालिक वर्कशॉप का आगाज करेगा, ताकि मुल्की सतह पर हॉकी के फरोग के लिए इको निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सके। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। फॉरेस्ट सर्विस के अफसरान महज जंगलात के मुंतजिम नहीं हैं, बल्कि कुदरती विरसे के भी मुहाफिज हैं।

0: इस बात का इजहार ख्याल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात के दौरान किया। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। सतीश गोलछा की जगह अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खबरों के मुताबिक वजारत दाखिला का हुक्म जारी होते ही उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, जबकि रोजनामा इनकलाब ने अमरीका और ईरान की तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले जारी रहने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में BSF की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अकवामी मुत्तहिदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज उठाई है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में स्वीकार करिए अपने दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। दोस्तों, मॉनसून के मौसम में नमी बढ़ने और जल जनित बीमारियों की संभावना के कारण स्वस्थ रहना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वातावरण में नमी वायरस और बैक्टीरिया के पनपने के लिए आदर्श समय होता है, इसलिए ये जरूरी है कि हम पर्याप्त सावधानी बरतें ताकि हम वायरल बुखार, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें। बारिश के दौरान नाक कान और गले के संक्रमण की भी आशंका रहती है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर माझी को। आप वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ हैं और आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के साथ लंबा अनुभव रहा है। आइए जानें बरसात में नाक कान और गले में होने वाली आम समस्याओं और उसके उपचार के बारे में। आपसे बात कर रही हैं रश्मि गुप्ता। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मॉनसून के सीजन में गला, नाक और कान की ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत क्यों होती है?
3: हमें नाक, कान, गला अलग से सावधानी बरतने की बहुत ही जरूरत है रेनी सीजन में, क्योंकि हमें रेनी सीजन में एलर्जी की भी शिकायत काफी लोगों की बढ़ जाती है। अगर वो लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस से, एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस से, तो हमें साइनोसाइटिस और राइनाइटिस के एलर्जी से बचाव करना है, क्योंकि बरसात में पॉलन ग्रेन्स, डस्ट और पानी से भी लोगों को होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और कान में एक स्पेशल वो है कि फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। काफ़ी लोग मतलब इस समय गर्मियों में स्विमिंग भी करते हैं तो बरसातों में हमारा सुझाव यही है कि स्विमिंग बंद कर देनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि गंदा पानी भी होता है, बहुत लोग तैरते हैं और वो पानी अंदर जाता है और आपके कान में फफूंदी, हम लोग कॉमन टर्म में फफूंदी बोलते हैं, जो ब्रेड पे लग जाता है, या तो व्हाइट होता है या तो ब्लैक होता है। व्हाइट हम लोग कैंडिडा, जो डायबिटीज पेशेंट है उनमें कैंडिडा वाला इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। और ब्लैक फंगस होता है, वो काला होता है, एस्परजिलोसिस। तो हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है कान का, कि पानी का ज्यादा मॉइस्चर ना हो। कूलर का उपयोग कान के एकदम नजदीक ना करें, उससे मॉइस्चर बढ़ता है, मतलब मॉइस्चर से हमें बचना है मतलब कि। और ड्राई रखना है, फेस को भी ड्राई रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है कि नाक और आंख और ये सब कान को छुए ना, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर से लगाएं, और तो क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस है, टॉन्सिलाइटिस भी होने के चांसेस है, साइनोसाइटिस भी होने के चांसेस है, एलर्जिक राइनाइटिस भी होने के चांसेस है, और कानों में फंगल इन्फेक्शन, और स्पेशली अगर किसी के कानों के पर्दे में छेद है, बहता है पहले से, तो उसमें तो और भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस।
2: तो सर, इनके लिए कोई घरेलू उपचार?
3: एक तो है कि जिसको एलर्जिक राइनाइटिस की है शिकायत पहले

0: से,
1: जी
0: क्योंकि एलर्जी तो ऐसी चीज है कि वो लाइफ लॉन्ग चलता है, कंट्रोल हो जाएगा आपका 90% अगर आप ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे तो, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। और अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो पॉल्यूशन की वजह से आप हर तीसरे आदमी को, तीसरे चौथे आदमी को यहाँ पे है।
1: बिल्कुल
0: तो दूसरा तो है कि आप या तो मास्क, सिंपल मास्क यूज करें बरसात में ज्यादा, तो वो भी है कि पॉल्यूशन से बचेंगे आप। और अपने गंदे हाथों से अनावश्यक कान को और नाक को ना टच करें,
1: जी
0: थोड़ा सैनिटाइजर यूज करें, और मॉर्निंग में उठ के अनमोल विलोम करें, मतलब
1: अनुलोम
0: अनमोल
1: विलोम
0: विलोम,
1: जी
0: हाँ 10 बार भी करें, तो जिससे कि हमारा सांसों का लेने का ये बढ़ जाती है, मतलब कि,
1: जी
0: और
1: क्षमता बढ़ जाती
0: हाँ,
1: है जी
0: और रुमाल का भी, हैंगरचीफ का यूज करें हर हमेशा, हैंगरचीफ से ही नाक को टच करें, खुले हाथ से ना करें, मतलब। उसके बाद है कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं यूज करना है, ना बहुत ठंडा पानी पीना है ना बहुत गर्म पानी पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना है, वो ध्यान रखना है, खासकर बरसात में, उससे भी
1: जी
0: एलर्जी बढ़ती है, मतलब की।
1: ओके
0: और नॉर्मली आप हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के अगर सवेरे शाम गरारा करते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा
1: आराम मिलता है
0: रहता
1: जी।
0: है, मतलब।
1: तो सर जैसे बरसात के मौसम में आपने बताया कि कानों का इन्फेक्शन आपने बताया, तो ये इन्फेक्शन का किसी बड़ी बीमारी की ओर भी संकेत करते हैं?
0: डेफिनेटली अगर किसी के कान के पर्दे में पहले से छेद है और वो सपोज डायबिटिक भी है, तो अगर डायबिटिक भी है और कान के पर्दे में ऑलरेडी छेद है, तो वो अगर उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है, बहुत ही सीरियस भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, वो उसको हम लोग मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं, जिसमें कि फिर हमें एक तो डायबिटीज को सबसे पहले इंसुलिन वगैरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो दिमागों तक फैल सकता है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो कि ध्यान रखना है। नॉर्मल तो लोगों को नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं और उनको अगर कान के पर्दे में छेद नहीं भी है या है, तब भी उनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और उसमें ध्यान रखना है बिल्कुल। और स्विमिंग के समय आप वही है कि प्लास्टिक का जो वो आता है, रुई मत लगाएं, रुई से और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं,
1: जी
0: प्लास्टिक का जो वो मिलता है वो लगा के स्विमिंग करें, कान में पानी नहीं जाना चाहिए, रिफ्रेश मतलब ईयर ड्रॉप भी आता है जो डालें तो ड्राई हो जाता है, मतलब
1: ओके
0: ईयर।
1: सर, कुछ लोगों को कान में खुजली की भी शिकायत इन दिनों में बढ़ जाती है, तो क्या ये भी इन्फेक्शन ही है? वो बरसात के दिनों में, नमी के दिनों में ज्यादा हो जाती है?
0: एलर्जी की वजह से आपका ये इचिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है, एलर्जी की वजह से होता है।
1: जी
0: और फंगल इन्फेक्शन में दो सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्लेन है, पेशेंट एक्सट्रीम पेन,
1: जी
0: बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत पेनफुल होगा, और इचिंग भी बहुत ज्यादा होगी, खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो फंगल इन्फेक्शन में इचिंग और पेन ये बहुत ही होता है, और ऐसे भी एलर्जी की वजह से भी, मतलब अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं भी है, एलर्जी के वजह से भी कानों का, मतलब, और लेट एज में जब उम्र बढ़ती है तो स्किन ड्राई हो जाता है,
1: जी
0: तो हमारा ईचिंग का बढ़ जाता है टेंडेंसी, और हम लोग कान के अंदर उंगली डाल के खुजाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, अदरवाइज मतलब हमारे कान के, मतलब, डैमेज होने के, पर्दे को डैमेज होने के और कैनाल को भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखना है, खुजली होने पर बहुत ज्यादा उसका ट्रीटमेंट कराइए, आप ड्रॉप डालिए, डॉक्टर के पास जाके मिलिए, दवा खाइए और ड्रॉप डालिए, लेकिन अपने से खुजाना नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब बरसातों में ये कॉमन वो है, मतलब।
1: जी सर, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन हो जाती है नाक कान गले की कि तब हमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है?
0: नाक अगर तीनों आपस में कनेक्टेड है, बरसात में मतलब एलर्जी की वजह से टॉन्सिलाइटिस भी बढ़ जाने के चांसेस रहते हैं, फेरेंजाइटिस भी, इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं, और ये तीनों आपस में अगर एक में इन्फेक्शन होता है तो तीनों में फैलने की मतलब संभावना बढ़ जाती है। अगर आप पहले ही से एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब नाक का आपका एलर्जी का बीमारी है, उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा छींकी आएंगी, मॉर्निंग में उठने के बाद बाउट्स ऑफ स्नीजिंग होगा, आंखों में जलन होगी, आंखों से पानी आएगा, नाकों से पानी आएगा, तो ये एलर्जी वाला जो है फीचर्स, इसमें आपको साइट्रस फ्रूट खाना है और आपको अनमोल विलोम करना चाहिए, आपको इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए,
1: जी
0: विटामिन सी, च्यूएबल विटामिन सी टैबलेट ऐसे भी हम लोग खा सकते हैं, मतलब कि, और ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ये जो हमारा जंक फूड है उसको अवॉइड करना है, वो भी एलर्जी बढ़ाता है।
1: एक ही ईयरफोन या हेडफोन सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं?
0: बिल्कुल, ईयरफोन तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यंग जनरेशन में, ये उनको शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोगों ने इस पे काफी प्रोग्राम किया है कि अगर आप लगातार ईयरफोन यूज कर रहे हैं, हाई वॉल्यूम में म्यूजिक सुन रहे हैं और नॉर्मल भी कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको नॉइज इंड्यूस डीपनेस की ओर ले जाएगा। शुरू में नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे 40-50 के बाद अगर आप शुरू से यूज कर रहे हो तो आपका एक प्रेस बाइकोसिस चीज होती है, जैसे आंखों में कैटरेक्ट होता है, तो प्रेस बाइकोसिस जैसे हमारा एज बढ़ता है, अगर हम डायबिटिक हैं तो उसमें और जल्दी आता है प्रेस बाइकोसिस। नॉर्मल फेनोमेना है, लेकिन 50-60 के बाद ये हमारा जो नस होता है कानों में सुनने का नस, वो कमजोर होने लगता है, तो उसको हम प्रेस बाइकोसिस बोलते हैं। तो अगर ज्यादा आप हियरिंग ये यूज कर रहे हैं ईयरफोन, तो उससे नॉइज इंड्यूस स्टीफनेस होने के चांसेस हैं, बिल्कुल बचना चाहिए। और बरसातों में क्या है, अगर आप डाले हो तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ने के चांसेस है, तो उससे फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बिल्कुल मतलब लिमिटेड यूज करें, अगर ऑफिस में आप कर रहे हो तो लिमिटेड यूज करो, लेकिन बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। लेटर ऑन बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट होता है, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, तो उसका इलाज तुरंत होना चाहिए। और अगर नहीं करने पर परमानेंटली फिर हियरिंग लौट नहीं पाता है। अगर हमने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में उसका इलाज कर लिया सडन सेंसरी हियरिंग लॉस का, तो वो लौट आता है। तो ये मतलब ईयरफोन यूज करने का एक साइड इफेक्ट ये भी है, सडन सेंसरी हियरिंग लॉस भी होता है। लाउडनेस इंड्यूस डीफनेस तो एक अलग चीज है, वो तो धीरे धीरे आएगी, लेकिन सडन सेंसरी हियरिंग लॉस भी होता है, तो अवॉइड करना चाहिए।
1: बरसात के दिनों में सर अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाहर से आते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, तो उसके बाद एकदम से उन्हें जुकाम हो जाता है। कुछ लोग एकदम जाके पंखे के नीचे या एसी में बैठ जाते हैं, तो और भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं?
0: मैंने सबसे पहले ही बताया, कभी भी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। आप बाहर से भींग के आए घर में और तुरंत आप एसी में चले गए या तुरंत शावर लेने चले गए, नहीं करना है। पहले अपने बॉडी को एक्लिमेटाइज करना है, आके अच्छे तरीके से तौलिए से पोछिए, पूरा ड्राई कर लीजिए। फेस आपका गीला नहीं रहना चाहिए, कान के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, कान के अंदर मतलब तौलिए से जो जितना तक कान में आप पहुंच सकता है उतना साफ कर लीजिए, सारा आपको ड्राई कर लेना है। आर्मपिट वगैरह में आप जो है पाउडर लगाइए, लेकिन लिक्विड चीजें मत लगाइए बरसात के दिन में, उससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है और फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांस है। तो ह्यूमिडिटी आपको कंट्रोल करना है बाहर से आने के बाद। जब बाहर में भी आप मतलब हैं तो भींगने के बाद मतलब कोशिश करें कि आप उससे बच के रहें, क्योंकि भींगने के बाद फिर एलर्जी शुरू होती है, छींके बाउट्स ऑफ मतलब स्नीजिंग काफी आएगा नाकों से, फिर डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, फिर टॉन्सिल मतलब साइनस, सब आपस में रिलेटेड है। एक बार साइनसाइटिस का इन्फेक्शन हुआ तो आपको नेजल ब्लॉकेज होगा, स्नीजिंग होगा, सर में दर्द होगा और पीछे बलगम भी, नाक से पीछे गले में बलगम भी गिरना शुरू हो जाता है। ये साइनसाइटिस के फीचर्स हैं और उससे फिर टॉन्सिल भी इन्फेक्शन होगा, कानों में इन्फेक्शन आराम से, अगर साइनस में इन्फेक्शन है, नाक में इन्फेक्शन है, तो वो कानों में चला जाता है स्टेकिंग ट्यूब के थ्रू, तो वो आपको बचाव करना है मतलब की।
1: तो कुल मिलाकर नाक, कान और गला तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यदि आप वाकई में बरसात के मौसम में खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। सर आपने बहुत सारी बातें बताई किस तरह से हम अपने नाक, कान, गले के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, तो एक बार चलते चलते मैं आपसे फिर जानना चाहूंगी हमारे उन सारे लिसनर्स के लिए कि किस तरह से हम क्या क्या सावधानियां रखें और साथ साथ खान पान में किस चीज का परहेज करें कि हम बरसात के दिनों में खुद को इस संक्रमण से बचा सकें।
0: बरसात के दिनों में एक तो सबसे बड़ा तो पानी, आपका सबसे बड़ा भगवान ने एक वो दिया है पानी, अब कम से कम 5-6 लीटर तो आप पानी जरूर पीना चाहिए पूरे 24 घंटे में, वो सबसे बड़ा हमारा वो है। और अगर पानी थोड़ा सा गर्म हो, सुसुम जिसको बोलते हैं हम लोग अपने शब्दों में, गुनगुना पानी पिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब खासकर बरसात में। और रात में अगर दिन में नहीं भी कर पा रहे हैं तो रात में एक बार हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के गरारे कर लीजिए, उससे अच्छा कोई एंटीबायोटिक नहीं होता और आपका गला बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो गले के लिए तो एक बहुत ही वो है। रात दोनों टाइम ब्रश करें, मतलब सवेरे भी और रात में खाने के बाद भी, डिनर के बाद भी ब्रश करना चाहिए। और खाने में तो वही मैं कहूंगा, आजकल इम्यूनिटी लोगों की बहुत घट गई है तो इम्यूनिटी पे पूरा ध्यान दें। फल खाना चाहिए, फल जो नॉर्मल जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया, ये सब तो बहुत ही जो डायबिटिक वगैरह है थोड़ा सा मीठा फल अवॉइड करें, लेकिन पपीता तो एकदम हर मौसम में मिलता है, एप्पल हर हमेशा मिलता है, ये दोनों फल तो सबसे, और केला में बहुत एनर्जी होती है, कैल्शियम होता है, तो हमें अपना पूरा विटामिन इंटेक भी इंटैक्ट रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोग धूप में नहीं निकलते हैं और विटामिन डी मोस्टली आप देखोगे 50 इयर्स के बाद खासकर फीमेल्स में भी विटामिन डी की बहुत कमी होती है, तो हमें सन का जरूर लेना चाहिए।

0: नेचुरल
1: जी
0: नेचुरल
1: जी
0: जो विटामिन डी का सोर्स ऑफ वो है वो सन, तो
1: जी
0: इसलिए सन में बच्चों की बरसात में सन नहीं निकलता है, तो जब भी आपको मौका मिले सन में आना चाहिए। केवल एसी, हाँ एसी इज ऑल्सो ए फैक्टर कि एलर्जी बढ़ाती है। आप
1: जी
0: देखोगे मोस्टली लोग जो आते हैं वो एसी में 24 आवर्स एसी में रहते हैं, उनको एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है।
1: जी
0: तो उसके लिए वही है अनुलोम विलोम, मैंने बताया मॉर्निंग में उठ के 10 बार भी 15 बार भी अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। नींबू पानी मॉर्निंग में जरूर पीना चाहिए, नींबू पानी में शहद मिला के अगर पीते हैं तो सबसे अच्छा है, मतलब और गुनगुना पानी से आप नमक डाल के गरारे करिए, मतलब कि
1: जी सर, आपने बहुत सारी बातें बताई हमारे लिसनर्स के लिए। आज का प्रोग्राम काफी फायदेमंद रहा होगा। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नमस्कार।
2: अभी आप भेंटवार्ता सुन रहे थे। बरसात में नाक कान और गले में होने वाली आम समस्याएं और इनका उपचार, हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर सुधीर माझी, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। आपसे बात कर रही थी रश्मि गुप्ता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। दोस्तों, 27 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व सिर और गर्दन कैंसर दिवस, यानी वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे। ये दिन इन कैंसरों के लक्षणों, जोखिम कारकों और रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी फैलाने का अवसर है। आइए अधिक जानकारी लेते हैं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर डोडुल मंडल से।
3: नमस्कार। आज हम हेड नेक कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। 95% ऑफ हेड नेक कैंसर जो होते हैं वो होते हैं स्मोकिंग एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से। अब ये स्मोकिंग अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, अल्कोहल भी एक रीजन है। स्मोकिंग में बीड़ी भी है, सिगरेट भी है, हुक्का भी है। किसी किसी लोग को लगता है कि अब हुक्का पानी से फिल्टर होकर आ रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत फहमी है। टोबैको, जैसे च्यूइंग टोबैको हो गया, तम्बाकू मिक्स करके जो आजकल गुटखा वगैरह जो सब होते हैं गाल के अंदर रखते हैं, खैनी, पान मसाला, ये है जो 95% ओरल कैंसर या हेड नेक कैंसर का कारण है। एक वायरल इन्फेक्शन भी होती है, बट वो हमारा देश में उतना कॉमन नहीं है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। ये मेनली ओरोफेरिंग्स कैंसर में होती है। ओरोफेरिंग्स यानी जो हमारा थ्रोट का पीछे वाला पार्ट जो है, रेयर केस डेंटल ट्रॉमा, उससे भी हो सकती है। हमारा शरीर का जिस ऑर्गेन में कैंसर होगा, कैंसर का लक्षण उस हिसाब से होती है। किसी का अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कैंसर है तो उसमें सिर दर्द हो सकता है, दौरा पड़ सकता है, बेहोशी हो सकती है। किसी का अगर थ्रोट कैंसर यानी हेड नेक कैंसर होती है तो उसमें किसी को वॉयस में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर दिख सकते हैं, नोज से ब्लीड हो सकता है। किसी को अगर फूड पाइप की कैंसर है तो उनको खान पान में प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम है तो उनको पेट में दर्द हो सकता है। जैसे कुछ सर्कोमाज होते हैं बोन्स या मसल्स में होती है, उसमें हड्डी में पेन दर्द होती है, आपको एक स्वेलिंग जिसको हम कहते हैं कि ट्यूमर रसोली, कई बार बाहर से दिखता भी है कि थाई में ट्यूमर आ गया या हड्डी के ऊपर कोई फूल गया, तो ये पूरा निर्भर करता है कि किस ऑर्गेन में हो रही है। कोई अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रही है, बॉडी की किसी भी ऑर्गेन से ब्लीडिंग हो रही है जो कि नेचुरल नहीं है, कोई भी अल्सर या घाव जो ठीक नहीं हो रही है, कोई भी खांसी जो 3 हफ्ते से ज्यादा चल रही है ठीक नहीं हो रही है, कोई मोल जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बर्थ मार्क भी कहते हैं, सडनली अगर उसका कलर और शेप चेंज हो जाता है, तो ये सब हम ध्यान रखते हैं और स्क्रीनिंग करके आप इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कैंसर की सस्पिशन होती है तो फिर उसमें स्कैन वगैरह जरूरत होती है।
2: श्रोताओं, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य। नए स्कूल सत्र के लिए परामर्श छात्रों को नए शैक्षणिक वर्ष के लिए तैयार करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसमें शैक्षणिक, भावात्मक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल होता है। नए सत्र के लिए परामर्श, इस विषय पर आइए सुनिए ये भेंट वार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर मीना चंद्रा। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मनोरोग विभाग की प्रोफेसर और विभाग का अध्यक्ष हैं। आपसे बात कर रही हैं देविका चुग, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं।
4: डॉक्टर साहब, जब नया सेशन शुरू होता है तो बच्चों की लाइफ में बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ पॉजिटिव एक्साइटमेंट के साथ और कुछ नेगेटिव एंजाइटी के साथ भी। आपके हिसाब से ये नए चेंजेस उनके इमोशनल और मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं?
5: नया सेशन का अनुभव करीब 12 बार होता है। जो प्राइमरी सेक्शंस हैं उनमें अलग अनुभव होते हैं, मिडिल स्कूल तक बच्चों को एक पैटर्न पता चल जाता है तो अलग अनुभव होते हैं, और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम क्लासेस वाले हैं उनको

0: थोड़ा सा अलग अनुभव होता है। नए सेशन में एक्साइटमेंट होती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें नए नए रोल्स भी मिलते हैं, तो एक सीनियोरिटी का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है कि हाँ जैसे हम पिछले साल थे उससे अब हम ज्यादा परिपक्व हैं, ज्यादा मेच्योर हैं। फिर भी कुछ बच्चों को नई क्लास में जाके घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, तनाव हो सकता है, कई बार नई क्लास उन्हें पसंद नहीं होती, कई बार वो नई क्लास के साथ साथ नए स्कूल में भी जाते हैं जहां वो एडजस्ट नहीं कर पाते, कई बार पुरानी क्लास टीचर से अच्छे संबंध होते हैं, नई क्लास टीचर से वो समन्वय नहीं बैठ पाता, उसलिए भी बच्चे परेशान होते हैं। और कुछ कुछ परेशानियां होती हैं जैसे बुलिंग है जो स्कूल में देखी जाती है, उससे भी बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि हर कक्षा में कोर्स ज्यादा मुश्किल होता जाता है, तो कई बच्चे पढ़ाई की दृष्टि से भी संघर्ष कर रहे होते हैं, कई बच्चे सामाजिक दृष्टि से संघर्ष करते हैं कि नई क्लास में फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे या नई क्लास में टीचर से सही समन्वय नहीं है, घबराहट हो सकती है, थोड़ा सा मन उदास हो सकता है, कई बार बच्चे अपने में गुमसुम हो जाते हैं, उनका किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाते या वो कई बार उदंड हो जाते हैं, जल्दी से अपना आपा खो बैठते हैं, गुस्सा करने लगते हैं या स्कूल जाने को मना भी कर देते हैं कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो इस तरीके के लक्षण हम देखते हैं कि पॉजिटिव भी होता है और थोड़ा नेगेटिव भी होता है।
1: जी, मैं बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बच्चों के मन में आ सकता है, ये बस डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे में कैसा वो उभर के आएगा। मेरा अगला प्रश्न ये है, कई बार पेरेंट्स को बच्चों के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं पर वो इग्नोर कर देते हैं सोच के कि ये तो एज का एक फेज है, शायद ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स को किस स्टेज पर सीरियस हो जाना चाहिए?
0: पेरेंट्स को हर स्टेज पे सीरियस रहना चाहिए। कई बार हम देखते हैं माँ बाप को पता भी नहीं होता बच्चे की मानसिक अवस्था कैसी है, बच्चा परेशान है या बच्चा दुखी है या बच्चे को कोई चीज चाहिए, तो माँ बाप को पता भी नहीं होता। दूसरा, माँ बाप कई बार अपनी ग्लानी, अपना गिल्ट कम करने के लिए चीजों से की बारिश कर देते हैं बच्चों पे, जो बच्चा चीज मांगे या ना मांगे उसे चीजों में बिजी रखते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य चीजों में नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य तो मन में है। तो मानसिक अवस्था के बारे में जानना माँ बाप का फर्ज है, कर्तव्य है। आप बच्चे के साथ बैठें, बात करें, उसको देखें, उसकी नटखट चीजों में खुश भी हो या बच्चा परेशान हो तो आप पता लगाएं कि बच्चा क्यों परेशान है। तो एक दिन में नहीं होता, ये गहरा रिश्ता है, संवाद स्थापित करना है तो शुरू से ही करना है। जब बच्चा परेशान हो और आप तब पूछना चाहें तो बच्चा कई बार नहीं खुल के बता पाता क्योंकि उससे कभी किसी ने बातचीत की नहीं होती, उससे सिर्फ चीजों की बातचीत होती है। तो बच्चे का दिन कैसे गया, आज आपने क्या किया, आज आप कहाँ परेशान हुए, आप आज कहाँ खुश हुए, आप संडे को क्या करना चाहते हैं, ये सारे सवाल अगर बच्चे से हम लगातार पूछते हैं तो बच्चे को समझ में आता है कि मेरे माँ बाप, मेरे बड़े भाई बहन मेरी प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड हैं, उनको फर्क पड़ता है कि मैं परेशान हूँ या खुश हूँ, तो बच्चा खुल के बताना शुरू करता है। तो संवाद तो पहला कदम है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए। कभी भी आपको बच्चे में कुछ फर्क नजर आए जो उसके अपने स्वभाव से अलग हो और वो फर्क कई दिनों तक नजर आए, एक दिन तो कोई भी बच्चा परेशान हो सकता है, लेकिन आप देखते हैं कि पहले हमारा बच्चा ऐसे नहीं था और अब बच्चा ऐसे है, तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि बदलाव जो है और काफी दिन तक अगर चलने वाला बदलाव है उसकी कोई वजह होगी, और वजह है तो उसका निदान भी होगा और उसका इलाज भी संभव है। तो जो चेंज फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन जो है कि पहले बच्चा क्या था, पहले बच्चा खूब बहिर्मुखी था, सबसे बातचीत करता था, अब बच्चा चुपचाप हो गया है, अंतर्मुखी हो लग रहा है, तो ये चेंज अपने आप नहीं आता, कोई ना कोई वजह रहती है। तो अगर बदलाव आ रहा है और कुछ बदलाव वो सस्टेन्ड है, कुछ दिनों तक चल रहा है, आपको वजह नहीं समझ में आ रही, तो बच्चे से संवाद स्थापित करें, उसके टीचर से संवाद स्थापित करें, उसके फ्रेंड से भी संवाद स्थापित करें कि बच्चे में बदलाव क्यों आ रहा है या क्या बात हुई, और उसके आगे तो एक रास्ता है बच्चे को मदद करने का।
1: अगर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही नोटिस करते हैं कि बच्चा अलग बिहेव कर रहा है तो पहला स्टेप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
0: अगर पेरेंट्स फील करते हैं कि बच्चा अलग व्यवहार कर रहा है तो उन्हें टीचर से बात करनी चाहिए, और टीचर्स अगर को लगता है कि बच्चा अलग व्यवहार कर रहा है तो उन्हें पेरेंट्स से बात कर। अगर बच्चे में दोनों का ऐसा मत है कि बच्चे में परेशानी है तो हमें उसका एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन

0: करना चाहिए। एक साइकियाट्रिस्ट को मिले, मनोचिकित्सक असेसमेंट करते हैं बच्चे की क्या परेशानी है उसको समझते हैं, जरूरत होती है तो उसको दवाई दे सकते हैं, लेकिन जरूरत हो तभी। ऐसा कोई मनोचिकित्सक ना होगा जो जबरदस्ती बच्चों को दवाई दे देगा। ज्यादातर बच्चे काउंसलिंग के लिए भेजे जाते हैं और वो काउंसलर्स के पास जाते हैं, लेकिन इनिशियल असेसमेंट से एक अच्छा काम होता है कि बच्चे को अगर कोई गंभीर समस्या है, और वो हो भी सकती है, चाइल्डहुड ऑनसेट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं, उनका इलाज शुरू हो जाता है। साथ में कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम माइमेटिक्स कहते हैं कि वो लगती है व्यवहार में दिक्कतें लेकिन उसका कारण कुछ और है। जैसे अगर बच्चे को दौरे की समस्या है लेकिन लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल गुमसुम हो जाता है, या बच्चे को चाइल्डहुड ऑनसेट डायबिटीज है और बच्चे को बीच बीच में घबराहट बेचैनी हो जाती है, तो एक कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, एक साइकियाट्रिस्ट को मिलना जरूरी है जिससे आपके माइमेटिक्स रूल आउट हो जाए, और अगर कुछ गंभीर चाइल्डहुड ऑनसेट प्रॉब्लम्स हैं उनका अगर दवाई के जरिए इलाज करना है तो वो शुरू हो जाए। लेकिन अधिकतर बच्चे, मैं दोबारा कहूंगी, काउंसलिंग के लिए भेजे जाते हैं, और जो काउंसलर्स होते हैं वो बच्चे से संवाद स्थापित करते हैं, बच्चे को असेस करते हैं, माँ बाप से भी संवाद स्थापित करते हैं, कई बार वो टीचर से भी संवाद स्थापित करते हैं। आजकल टेली मेंटल हेल्थ की दुनिया में ये बहुत आसान हो गया है, और टीचर्स कई बार रिपोर्ट्स भी लिख के भेजती हैं, और बच्चे का एक फ्रेमवर्क बना के उसके तहत बच्चे की काउंसलिंग शुरू की जाती है। बच्चे का क्या प्रमुख लक्षण है, किस दिशा में हमें उसको मदद करनी है, और साथ ही साथ माँ बाप की भी काउंसलिंग होती है, कैसे मदद करें जिससे बच्चे की वाकई मदद हो पाए, ये काउंसलर बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से माँ बाप को बता देते हैं अपने काउंसलिंग सेशन में। तो ये एक प्रक्रिया होती है, लेकिन ये कोई वन टाइम प्रक्रिया नहीं है कि एक ही बार होती है, बच्चे की जरूरत के अनुसार कई सेशंस लेने पड़ सकते हैं, और जब बच्चा सही हो जाता है, इम्प्रूव कर जाता है, तो काउंसलिंग टर्मिनेट भी होती है। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग शुरू हो गई तो जीवन भर चलेगी, अगर दोबारा आवश्यकता होगी तो दोबारा भी हो सकती है। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ये पूरा वैज्ञानिक तौर पे प्रोसेस है, तो उसमें से गुजरने से बच्चे को लाभ मिलेगा, तो हिचकिचाना नहीं चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली होता कैसे है? क्योंकि क्या है ना, आजकल पेरेंट्स और बच्चे दोनों थोड़े बहुत हेजिटेंट हो जाते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, तो मैं ये चाहूंगी कि आप एक बार ही समझाएं कि एक काउंसलर किस तरीके से उनकी मदद कर सकता है।
0: काउंसलर के पास जब बच्चा रेफर होके आता है तो काउंसलर बच्चे की पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, उसके जन्म से लेके पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, और उसकी जो अभी की समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तार से पूछते हैं, और उसके जो मानसिक अवस्था है उसका आकलन करते हैं, जिसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं। उसके बेसिस पे वो एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं और एक काउंसलिंग का भी एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि बच्चे को अगर परेशानी किसी समस्या को लेके है तो उस समस्या के लिए हेल्प करेंगे, या बच्चे के जीवन में कुछ ऐसा घटित हो गया जिसको बच्चा नहीं कोप अप कर पा रहा तो उस हिसाब से हेल्प करेंगे, अगर बच्चे में ऐसे कुछ विषम तरीके के ख्यालात बन गए हैं तो जिसे हम मैलअडैप्टिव कॉग्निटिव स्कीमास कहते हैं, तो बच्चों को उस तरीके से हेल्प करेंगे, अगर बच्चे को एग्जाम से पहले एंजाइटी होती है तो एग्जामिनेशन एंजाइटी के हिसाब से हेल्प करेंगे। तो जो बच्चे को समस्या है उसके अनुसार काउंसलिंग फ्रेमवर्क तैयार होता है। उस काउंसलिंग फ्रेमवर्क के तहत काउंसलर डिसाइड करते हैं कि कितने सेशंस लेने हैं, कितने सेशन बच्चे के लेने हैं, कितने सेशन माँ बाप के लेने हैं। बीच बीच में बच्चे का आकलन दोबारा भी करते हैं कि काउंसलिंग से बच्चे में क्या सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा, या कई बार क्या होता है काउंसलिंग करते करते कोई और समस्या भी बच्चा एक्सप्रेस कर देता है जो उसने शुरू में नहीं बताई होती, या माँ बाप ने भी शुरू में नहीं ध्यान दिया होता, तो काउंसलिंग की दिशा कई बार थोड़ी सी बदलती भी है। लेकिन आखिरी परिणाम यही है कि जो भी बच्चा परेशानी के साथ आया था, काउंसलिंग के जरिए बच्चा अपने में परिवर्तन लाता है, माँ बाप अपने में परिवर्तन लाते हैं, और वो समस्या से बाहर निकलते हैं, और बच्चा स्किल सीख जाता है कि कभी दोबारा भी भविष्य में ऐसी कोई समस्या होगी तो वो उसको मैनेज कर लेगा, क्योंकि अब उसको स्किल आ गया है। तो हम स्किल बिल्डिंग भी करते हैं काउंसलिंग में। तो ये कई तरीके हैं जिसके तहत काउंसलर बच्चे को मदद करते हैं आगे बढ़ने में। मेरा संदेश सभी बच्चों और सभी माता पिता के लिए है कि जो मानसिक रोग हैं वो साध्य हैं, जो मानसिक परेशानियां हैं उनका हल है, समस्या है तो समाधान है, हिचके नहीं, ये ना सोचें कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ें, और इसके लिए अगर आपको मदद लेनी है मनोचिकित्सक की, काउंसलर की, तो उसमें

0: लेने में कोई भी परेशानी नहीं महसूस करें। आप खुले मन से काउंसलिंग के लिए जाएं और जो भी आपको डायरेक्शन दिए जाते हैं उनका पालन करें और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतने ज़्यादा पावरफुल इंसाइट्स दिए हैं और आई एम श्योर कि जो भी पेरेंट्स और बच्चे अभी ये सुन रहे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और सपोर्टेड फील कर रहे होंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, नए सत्र के लिए परामर्श। हमारी विशेषज्ञ थी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मीना चंद्रा। आप प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर आरएमएल अस्पताल में। आपसे बात कर रही थी देविका चुग। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली है और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती आकाश। धरती आकाश में आज आप सुनेंगे वर्षा जल संचयन जल संकट का समाधान। इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं गोपाल सिंह, सेवानिवृत्त तकनीकी विशेषज्ञ दिल्ली जल बोर्ड से, और बातचीत जो की जाएगी वो दिलीप झा उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही ऊर्जा संरक्षण पर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी अहम जानकारी देंगे। तो सुनते हैं ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
5: धरती आकाश के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
6: हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। धरती पर 3/4 जल की मात्रा बहुत बड़ी लगती है लेकिन उसमें पीने योग्य जल बहुत ही कम है और उसकी भी मात्रा दिन ब दिन कम होती जा रही है बढ़ते शहरीकरण के कारण, पक्कीकरण के कारण। इन समस्याओं को देखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल संचय की प्रक्रिया अपनाई गई है। जल संचय विधि क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है, इसकी तकनीकी किस तरह की है और इसके फायदे क्या हैं, किस तरह इसके दुर्गामी परिणाम हो सकते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री गोपाल सिंह। आप दिल्ली जल बोर्ड से रिटायर्ड हैं और जल संचय रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इनका एक लंबा अनुभव है। गोपाल सिंह जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
7: आपका भी, दर्शकों का भी बहुत अभिवादन।
6: ये बताइए कि जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ये असल में क्या है?
7: जो बारिश होती है उसी से जो गिरने वाला पानी है हम उसी को रेन कहते हैं, और जब इस पानी को हम बचाने की जो प्रक्रिया है वो हार्वेस्टिंग है। तो ये दोनों मिला के एक शब्द हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम इसको कैसे सेव करें, इसकी दो टेक्निक है। एक तो हम इसे संचयन कर लें, कोई स्टोरेज बना के उसमें स्टोर कर लें और उसे दोबारा यूज कर लें। दूसरा तरीका है कि हम इसे नीचे जमीन में रिचार्ज कर दें। तो रिचार्ज के जो मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट मेथोडोलॉजी है, वो डिपेंड करेगी आपके जमीन की मृदा कैसी है। अगर रेतीली मिट्टी है तो वो जमीन में आराम से सोख जाएगा। आप गड्ढा करेंगे, गड्ढा करके फिल्टर मीडिया डालना है, फिल्टर मीडिया के थ्रू और पानी नीचे परकुलेट होकर जमीन पर चला जाएगा। हम जो गड्ढा बना के फिल्टर मीडिया जो डालते हैं उसकी क्यों जरूरत है? उसकी जरूरत इसलिए है कि नेचुरल फिल्टर तो काम करता है जमीन, वही पानी परकुलेट करती है, लेकिन फिल्टर मीडिया इसलिए डालते हैं कि वो जमीन के जो स्लॉट्स हैं उनके वॉइड्स हैं वो ब्लॉक न हो जाए, इसलिए फिल्टर मीडिया डालते हैं। अगर वो ब्लॉक हो गए तो पानी सोखना बंद हो जाएगा, इसलिए फिल्टर मीडिया दोबारा रिप्लेस करके। और आज उसकी सिंपल बहुत तकनीक आ गई है। अभी जो हम डाल रहे हैं नीचे ग्रेवल डाल दिया और सैंड डाल दिया, ऊपर से एक जियोटेक्सटाइल मेम्ब्रेन डाल देते हैं। जियोटेक्सटाइल मेम्ब्रेन एक तरह से फिल्टर का काम करती है। अगर जो भी उसमें फाइन पार्टिकल्स आएंगे, कुछ भी आएगा, वो उसके ऊपर रुक जाएगा। एक तरह कपड़े का होता है फिल्टर, उसे इकट्ठा किया, साफ करके दोबारा बिछा दे। इजी मेंटेनेंस है, बहुत इजीली किया जा सकता है। जहाँ मिट्टी की अच्छी है, परकुलेशन रेट अच्छा है, वहाँ तो ये हमारा टेक्निक ठीक है, लेकिन जहाँ परकुलेशन रेट ठीक नहीं है। अब जैसे भाई चिकनी मिट्टी है तो वहां पर ये देखना पड़ेगा कि हमें किस लेवल पे वो परकोलेशन वाला स्ट्रेटा मिल रहा है, हमें फिर वहां उसके लिए एक बोट डालना पड़ेगा जिससे वो पानी परकोलेट होके उस स्ट्रेटा में परकोलेशन

वाले में चला जाए और वो पानी वहां जमीन में सोख जाए। ऐसा भी है कि कई बार हम हार्ड रॉक में काम करते हैं, तो हार्ड रॉक में तो वहां कोई ऐसा मिलता नहीं, लेकिन वहां पे भी बहुत सक्सेसफुल परकोलेशन हो सकता है। वहां पे क्या है, अगर इम्प्रीवियस रॉक है तो पानी नहीं जाएगा, अगर वहां फिशर रॉक्स हैं उनमें पानी बहुत अच्छा जाता है, बहुत बढ़िया परकोलेट होता है, क्योंकि रॉक्स के अंदर स्लॉट्स होते हैं, हल्के हल्के वो क्रैक्स होते हैं, वो क्रैक के थ्रू पानी चला जाता है। तो ये सिंपल तकनीक है, ये तो रहा अर्बन एरियाज के लिए।

0: बाद हम उसकी जुताई करते हैं, जिससे क्या है कि ऊपर के जो उसके वॉइड्स क्लॉग हुए हैं मिट्टी के वो खुल जाए, जिससे वो पानी बरसेगा तो वो सीधा जमीन में चला जाएगा। दूसरा, उसके किनारे अगर इस तरह का है तो हम किनारे पे एक खड्डा बना दें, और वो खड्डे में अगर मिट्टी हमारी परकुलेट वाली है तो नेचुरल चला जाएगा, नीचे उसमें ग्रेवल डाल दें और फिल्टर डाल दें नॉर्मल सा। अगर बहुत ज्यादा मिट्टी वैसी है तो उसकी जगह एक बोर डाल दें। बोर की लेकिन एक है कि हम बोर जो डालेंगे वो कम से कम जमीन के जो ग्राउंड वाटर का पानी है उससे 5 मीटर ऊपर रहना चाहिए उसकी डेप्थ, 5 मीटर ऊपर रहनी चाहिए।
1: ऐसा किस लिए? अच्छा,
0: ऐसा इसीलिए कि पानी को कम से कम 5 मीटर फिल्टर जमीन से होके जाए, अगर वो पानी किसी वजह से कोई कंटामिनेट हुआ तो वो 5 मीटर की लेयर उससे परकुलेट करके फिल्टर करके नीचे जमीन में वाटर में भेजेगी। अगर डायरेक्ट हमने कनेक्ट कर दिया तो वो सीधा का सीधा ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाएगा, जैसे कभी द्वारका वाले केस में चल रहा है, वहां TDS 8.5 हजार पहुंच गया, वो कारण वही था, वो कोर्ट में केस भी चल रहा है उसका।
1: तो उसका तो स्वास्थ्य पे बहुत
0: नहीं, वो
1: बहुत
0: तो
1: बहुत घातक
0: अनयूजेबल
1: प्रभाव है।
0: अनयूजेबल है अनयूजेबल है वो। लेकिन एक चीज हम और कर सकते हैं कि बारिश खाली शहरों में नहीं होती, गांव में नहीं होती, हर जगह होती है, जहां बूंद गिरे हम उसको वहीं सेव करें। तो इसके जो फायदे होंगे, एक तो हमारा पानी प्रिजर्व हो जाएगा, दूसरा जो पानी नीचे का खराब हुआ है फ्रेश वाटर मिलने से उसकी क्वालिटी सुधरेगी, तीसरा फायदा ये होगा कि उससे फ्लड भी नहीं आएगी। फ्लड आने का मेन कारण क्या है कि वो बूंद बूंद खट्टा होता है और बहता जाता है और एक जगह खट्टा हो जाता है, वही फ्लडिंग करता है। हम आए दिन शहरों में देखते हैं कि यहाँ फ्लडिंग हो गई, वहां फ्लडिंग हो गई, वहां गाड़ियां डूब गई, यहाँ रास्ता नहीं है। ये सिंपल सा है कि जहां बारिश की बूंद गिरती है उसको वहीं हम प्रिजर्व कर लें, वहीं उसको हार्वेस्ट कर दें या स्टोर कर लें या हार्वेस्ट कर लें। तो सिंपल सा तरीका है, ना फ्लड होगी, पानी की हमारे पास कोई कमी नहीं होगी। जब फ्लड आती है तो उस टाइम अगर हम पानी को स्टोर कर लें या रिचार्ज कर दें। कई बार होता है कि अब जैसे यमुना के केस में फ्लड आती है, फ्लड के दौरान क्या होता है कि फ्लड आके चली जाती है, पूरा जो डैमेज है वो करके चली जाती है। यमुना का लेवल तो पानी का बहुत ऊंचा है, वहां तो रिचार्ज हो नहीं सकता, लेकिन वहां से अगर थोड़ा दूर जाएंगे तो वहां का जमीन का लेवल, पानी का लेवल नीचा होगा, उस पानी को वहां जाके हार्वेस्ट भी कर सकते हैं और नियर यमुना के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। वो पानी हमें पूरे साल के लिए हमारे वाटर रिक्वायरमेंट के लिए काम आएगा, ट्रीट करके हम सप्लाई कर सकते हैं।
1: अगर हम दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें जहां शहरीकरण बढ़ रहा है, यमुना का भी इंक्रोचमेंट हो रहा है,
0: हाँ
1: प्रदूषित नदी नाले यमुना में मिल रहे हैं, तो पेयजल की घनघोर कमी दिख
0: जी
1: रही है और
0: जी
1: अभी
0: जी
1: और दिखेगी। इस क्षेत्र के लिए चूंकि आप दिल्ली जल बोर्ड में रहे हैं, आपके अनुभव क्या है कि किस तरह की कार्य योजनाएं बनाई गई, सफलताएं क्या है और आपको क्या लगता है और क्या सुधार की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है?
0: मेरे हिसाब से पानी की जो कमी है हम दो तरह से पूरा कर सकते हैं, एक तो पानी की क्वालिटी, फ्रेश वाटर की क्वालिटी बढ़ाकर, दूसरा हम जो यूज कर रहे हैं उसको रिसाइकल करके, रियूज करके। तो रियूज में भी हम पानी की काफी बड़ी क्वांटिटी, हम जैसे मैक्सिमम हमारा जो वाटर यूज होता है फ्लशिंग में होता है, गार्डनिंग में होता है, फ्लोर वॉशिंग में होता है, कार वॉशिंग में होता है, तो ये पानी हम अपने घर का जो यूज्ड पानी है उसको रिसाइकल करके इनमें यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो खपत है वो घट जाएगी। खपत घटने का मतलब है कि जो हमारी 1200 MGD अगर पर डे की यूज है तो वो घट के सीधा 800 पे आ गया। अगर हमने 30-35% भी अगर हमने बचा लिया इससे तो वो 800 पे आ जाएगा। तो ये 800 हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतना पानी तो हम बढ़ा नहीं सकते। अब तो काफी सारे लोग इस बात पे भी फोकस कर रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कि हम ZLD पे काम करें।
1: अच्छा
0: हाँ, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज।
1: अच्छा
0: तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में क्या होता है कि हम सारा जितना अपना वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम रिसाइकल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट उस लेवल तक करते हैं कि वो पानी हमारा जो नॉन पोर्टेबल पर्पज है उसमें यूज हो जाए, फायर में काम आ जाए, और दूसरे जो पीने के अलावा पानी है, फ्लशिंग है, गार्डनिंग है, वॉशिंग है, इन सब में यूज हो जाए। तो वहाँ जो इस तरह से वो रिसाइकल करके उसको लगातार करते हैं, इससे हमारी जो खपत है वो हमारी कम हो जाएगी, हमारी जो वाटर डिपेंडेंसी, जो एक्सट्रैक्शन है, हम जिस पानी पर भरोसे हैं वो पानी हमारी कम जरूरत होगी तो वो धीमे धीमे हमारा स्टोर बढ़ता जाएगा। दूसरा, हम ऊपर से रिचार्ज कर रहे हैं तो पानी की क्वालिटी सुधरेगी। तो हम इस तरह से कई स्टेप ले सकते हैं कि हम पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है।
1: निश्चित रूप से ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है।
0: जी,
1: दिल्ली में जैसे कि 14 मंजिल, 15 मंजिल से लेके 30-40 मंजिल तक के मकान बन रहे हैं,
0: जी,
1: जमीन से कई मीटर नीचे तक उसके बेस बनाए जा रहे हैं,
0: जी,
1: दोहन हो रहा है, एक एक सोसाइटी में 500 से लेके 5,000 तक के लोग रह रहे हैं
0: जी जी
1: संख्या
0: जी
1: में, ऐसी स्थिति में इन जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज के लिए
0: जी,
1: किस तरह की आपको लगता है कि किस स्तर पर सरकार को पहुंचना चाहिए उनसे कराने के लिए, और उन सोसाइटियों को सरकार या संस्थाओं के पास पहुंचना चाहिए कि इस तकनीक का फायदा अपनी सोसाइटी में करने के लिए?
0: सबसे पहला इस मामले में हमें जन जागृति अभियान चलाएं, जिससे लोगों को इस बात को अवेयर कराएं कि कल

0: पानी नहीं होगा, आज तो आपको पानी मिल रहा है लेकिन आपकी जनरेशन को क्या मिलेगा, तो ये बात उनके समझ आ जाए तो फिर वो करना उनके लिए आसान हो जाएगा। चाहे वो लाख लोग कहें, कोई करने को तैयार नहीं होता। इवन प्रैक्टिकली आज भी हम उस टारगेट पे क्यों नहीं पहुंच पाए, भाई सरकार भी कोशिश कर रही है, सब कुछ एफर्ट्स डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं, लेकिन उतना टारगेट क्यों नहीं अचीव हो पा रहा, क्योंकि उसमें पब्लिक की भागीदारी उतनी नहीं है, उन्हें अवेयर नहीं है, उस बात का एहसास नहीं है उन्हें कि अगर कल पानी खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे और हमारी जनरेशन क्या करेगी। तो उस चीज के लिए जरूरत है कि सबसे पहले हम उस लेवल पे काम करें कि अवेयर करें, उनको प्रोत्साहित करें और इंसेंटिव भी दें। तो इस तरह से मैं उनको अवेयर, जब तक नहीं होंगे वो, किसी को कितना ही कुछ भी कह लो कोई सुनेगा ही नहीं ना करेगा। इसलिए जरूरी है हम पहले स्टेप पे अवेयरनेस फैलाएं, जगह जगह कैंप्स लगा के और उससे अवेयर करके फिर लोगों को बताएं भी इसका ये महत्व है। अगर नहीं करेंगे, अगर वो नहीं भी बिल्कुल भी अगर जैसे टाइम दें,
1: नहीं
0: कोई इतने
1: नहीं
0: टाइम के
1: मान
0: अंदर आप
1: लीजिए,
0: कर लो,
1: जागरूक हो गए, करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, असंपर्क करेंगे?
0: नहीं वैसे तो हमारे देखो CGW भी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, दिल्ली में हम उससे संपर्क कर सकते हैं, दिल्ली का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेल है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारा बहुत सारा लिटरेचर जल बोर्ड की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनके हम कैंप भी लगवा सकते हैं, लोगों को उनको अवेयर करने के लिए एक बेहतर तकनीक समझाएं, इसमें हम सिंप्लीफाइड मेथड्स को यूज़ करें और उन्हें अवेयर कराएं कि भाई पानी हमें बचाना है।
1: निश्चित रूप से
0: हाँ
1: सबसे बड़ी बात है जागरूकता की, जन जागरूकता की,
0: जी,
1: क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या अभी
0: जब तक वो अवेयर नहीं होंगे तब तक वो कुछ नहीं करेंगे।
1: गर्मियों
0: जी
1: में आने वाली है, और ये
0: जी
1: आने वाले लोगों के लिए, जो जनरेशन आएगा उनके लिए समस्या रहेगी। इससे पहले कि कहीं देर हो जाए
0: जी
1: और
0: जी
1: जल न मिले, जल के बिना जीवन सूख जाए, शहर खाली हो जाए, पलायन हो जाए,
0: जी जी
1: ज़रूरी है कि अभी जो जल है उसको किस तरह से कम खपत करें, बारिश जल का संरक्षण करें, बाढ़ के जल का संरक्षण करें, तकनीकी सहयोग लें,
0: जी
1: संस्थाओं
0: जी
1: से संपर्क करें। इसका महत्व आगे आने वाले समय में वर्तमान समय के साथ साथ काफी होने वाला है। श्री गोपाल सिंह जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सैब मैनेजमेंट, इसकी तकनीकी और इसके होने वाले फायदे उठाने के लिए आवश्यक जन जागरूकता आदि की बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
2: कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है।
3: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहें। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायो

श्री मुख्तसर साहिब व श्री आनंदपुर साहिब दर पंजाब प्रताप नगर गोधरा पोरबंदर व भक्ति नगर दर गुजरात बारपाली बालंगीर परलाखा मुंदी तालचर केसेंगा बिमलगर व बेरीपादा दर उड़ीसा कुछ गुज़श्ते अज नौ ईदगाह तहतेरा आहन जनूबी मी बचन बेदर मुनासिबत मोदी सर्विस कतार कारतोली अम्बाकरा बेहरा अंदाक के दर सरासर पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश इतिसाल रा बेहतर ख्वासा वे हम चिनीन कतार सरयूसर संत रविदास दरमियान अमृतसर चिहारता व वाराणसी रा बिरा अंदाज के यगर रब तेर्रा आहा ने मुस्तगीम आवे ने मोहतरम तरीन मराकज फरहंगी और रूहानी हिन तासीस में नमायत ईदगाह ये रा आहा ने तोसाए मुजद्दद शुदे व सर्विसा ये दो कतार जुमले चंदीन रेले खत आहन व परोजे हा ये जीर बनाइए जादे बेअर्दिशे पाँच हज़ार और चार सौ दो हफ्तात करोड़ रुपये के तवसुत नगुस वजीर दीरू दर जालंधर गुशाई शुदे मिबशत हदफ परोजहा तहकी में इतिसाल बहबूदी ये तहसील मुसाफरीन व तसरी तोसा इकतसादी दर मनतख मिबशत वह हम चिन शीश पैकेज चार खत ग्रीन फील्ड शाहरा मखसूसी ये दिल्ली अमृतसर कतरा सी मुमैर नौ किलोमीटर तुलानी रा गुशाइश कर दरहन सुखनरानी बेदन मुनासिबत मोदी गुफ्त के गुशाइश हफ्ताद पंज ईदगाह रा आहन तोसे याफ्ते तब्दील सरियान रा मुनअक़िद मिसाज़त के रा आहन हिंदर चंदी साल हाइये गुज़श्ते गरार दाश्ते प्रदिन द्रौपदी मुर्मू बेबाज दीदा ये रस्मी अज मोलदोवा मासी दोनियाई शुमारी व रोमानी अज नौजोमीन ताबीस तो पंजोमीन माहजारी रह सुपार ख्वाशुद दरहन आगाही बेरसानहा दर देली नो मोदी रे गर दर उमोर खारिज सी बी जॉर्ज गुफ्त के इन बात दीदा ये रस्मी बनाब दावत रौसा ये जमहूरी ये मालदोवा जमहूरी ये मैसी दोनियाई शुमारी व रोमानी अंजाम दादे मिशवद यालात मतद अमरीका और ईरान हमला शानदार दर सरसर खावर मियान अफजाइश दादन हमला तीरा बेहदफ जीर बनाई व अहदाफ निज़ामी अंजाम दादन तौरी के जंग के शान बर तंग हरमुज तजदीद याफ्ते फरमानदही मरकजी अमरीका गुफ्तियस के इन हफ्तों में शब मौसगी में हमलात खुदरा बेहदफ पास कर्दन अर्तिश ईरान बेरा अंधा अमरीका हमलात खुदरा अलह ईरान बा मजदू में पुलहा ये बेशतरी व हमलात एनर्जी व फरूरेदी यक बुर्ज दर बंदर मुहिम में ईरान तोसे गुस्तरिश दाद बेकरार टेलीविजन दौलत ये ईरान हमलात अमरीकाई इमशब रेलाई दर उस्तान हॉर्मोजोन गान जनूबी ईरान जरर जद हमलात बंदर खामिर रा दर शहरी दर साहिल ईरान दर तंग हरमुज जरब दर वाकुनिश ईरान मोशखाइरा बे मिलले मरबूत बे अमरीका दर खावर मियान जुमले कतर व कुवैत बेरा अंदाज जाय के यकी अस कारखाने हाइये नमक जदाइये आब मिलत सहराई खिसारत दीद मगामात ईरान गुफ्तन के हमलात अखीर अमरीका दो जीन हा नफर रा बे कत्ल रसानदे व सद हा नफर रा मजरू साखते दर गज़े दस्तकम दरियक हमला हवाई इसराइल दीरूद बरियक मरासी में तशिये जनाजे हश नफर कुश्ते शुदन व बीस तो दो तने दीगर रजर राहत दी थी बीमारिस्तान अवदा दर उर्दुगा है अवारगान नुसरत अज तेदाद तलाफात जानी तस्दीक व तायद कर ही गुजारिश फौरी अज अर्तिश इसराइल वासिल न कर दी दे

0: चांदी।
1: हुनर पेशगाने इन फिल्म इबारतन धर्मेंद्र, विनोद खन्ना व आशा पारिक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा।

0: इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम एक का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की इस नीति को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुंदर आंगन।
1: श्रोताओं नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड के साथ जुड़ चुके हैं आप आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में। आज आपके स्वागत सत्कार में हैं हम, तो स्वीकारें मेरा यानी प्रतिभा का और
2: मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल के 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी आप सुन रहे हैं। तो अब वक्त है हमारे सेगमेंट आज के प्रश्न का। तो आज आपको बताना है उन प्यारी यादों के बारे में जब आपकी किसी ने मदद की हो।
1: बिल्कुल, हमें आज का जो हमारा प्रश्न है, देखो मनीषा तुमने बता ही दिया है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं और वो मेल करने के लिए तैयार भी हो गए होंगे। तो एक बार प्रश्न फिर से दोहरा देती हूँ कि जब आपकी किसी ने मदद की हो, क्योंकि ये मूवमेंट हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी आया ही होगा, है ना। ये क्षण हमारी जिंदगियों में आता ही है। तो आपके दिल से किसी का शुक्रिया कब किया, कैसे किया, इससे जुड़ी यादें आपको हमारे साथ साझा करनी है, किससे बताने हैं और अपनी यादों को भी आपने ताजा ही करना है।
2: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, यादों के गलियारे में जाकर खंगालिए, टटोलिए अपने उन पलों को, बांटिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी कहानी बन सकती है हमारे शो की मुस्कान। अपने जवाब हमें भेजिए fmgoldga@gmail.com पर और दूसरों को भी ऐसे खूबसूरत लम्हों के लिए सहभागी

0: जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे अभी तो जीलें फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। और देखिए, जीवन को जीने की जो उमंग है उसका इस गीत में कितना सुंदर जिक्र था। और साथियों, हमारा कार्यक्रम है आपका अपना घर आंगन, जिसमें हम हर बार आपको देते हैं एक प्रश्न जो जिंदगी के उन तमाम फलसफों से जुड़ा होता है जिसमें हम जिंदगी को और अच्छे से जीना सीखते हैं। तो उन्हीं फलसफों में आज एक फलसफा है उस बात का, जो हमारा प्रश्न है कि आपको ये बताना है कि आपकी मदद किसी ने कब की थी और उससे जुड़ी हुई आपकी खूबसूरत यादें बांटनी है। पहला
1: बिल्कुल
0: संदेश भी आया है प्रतिभा, और ये नवीन भाटिया जी का आ चुका है। और ये अपनी यादों में 1999 के गलियारे में पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन दिनों डीटीसी की बस में वो आते जाते थे और उस समय कुछ पैसे उनके पॉकेट में थे और वो पॉकेट से बाहर निकल रहे थे जब वो बस में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान किसी सज्जन ने उन्हें बताया कि पैसे अंदर कर लीजिए आपकी जेब से। और जानते हो, नवीन जी को उस सज्जन का चेहरा आज तक याद है। और
1: बिल्कुल, देखो मनीषा, जब कोई किसी का भला करता है या उसकी मदद करता है तो हम उसके चेहरे को, उस शख्स को कभी भूल ही नहीं पाते। और देखो कितनी पुरानी बात इन्होंने याद की है, आज 1999 की बात ये बता रहे हैं। और देखिए, अच्छा कर्म आपको यादों में, दूसरों की यादों में संजो
0: जिंदा
1: कर ही
0: रखता
1: रखता है,
0: है,
1: जिंदा
0: बिल्कुल
1: रखता है। बिल्कुल, है ना।
0: बिल्कुल। और उसी तरह प्रतिभा, आज का दिन भी ना एक अच्छी याद को संजोया हुआ है, और वो अच्छी याद है आज के दिन में एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसको पूरी दुनिया सेवा, संकल्प, क्षमा और साहस के साथ मानवतावाद के आयाम से जोड़कर देखती है, और पूरी दुनिया उन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है।
1: बिल्कुल
0: समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिभा, आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेल्सन मंडेला के नाम पे मनाते हैं।
1: और देखो, जो आज का हमारा सुविचार भी है वो भी उन्हीं के ही मानवतावादी विचारों से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे दुनिया को बदला जा सकता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज के दिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम याद कर रहे हैं दोस्तों। तो इस खास दिन के साथ आपको फिर से याद दिला दूं हमारे आज की प्रश्नोत्तरी के बारे में, और वो प्रश्न है इंसानियत से जुड़ा हुआ, कि जब आपकी किसी ने मदद की तो आपको अपने अनुभव बताना है FM Gold GA@gmail.com पर।

0: मन मंदिर। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और देखो मनीषा, मेल हमारे पास आ रही हैं, यानी कि
1: हाँ
0: हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि उनकी जो ये उत्सुकता है, जो उनके मेल भेजने का जो ये है,
1: जुड़ाव उनका
0: जुड़ाव
1: जो
0: है, वो
1: हमारे
0: दिखा
1: साथ
0: रहा
1: है।
0: है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखो मेल आया है हिसार से, जिसमें राजू अग्रवाल, चरण दास, रेखा चौधरी वास ये लिख रहे हैं। चरण दास जी कहते हैं कि वो एक समय था कि वो बीमार थे और उनके खुद के पास पैसे थोड़े कम थे,
1: अच्छा
0: लेकिन ऐसे में भी उन्होंने किसी ज़रूरतमंद बीमार को 50 रुपये देकर उसकी मदद की थी। और फिर 5 साल के बाद उन्होंने ये बताया कि उनका जो बेटा है वो सड़क हादसे में कहीं पर वो घायल हुआ, लेकिन सड़क हादसे का शिकार हुआ, लेकिन उसे ज़रा सी भी खरोच नहीं आई। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उस मदद का फल आपको कहीं ना कहीं मिलता है।
1: वो कहते हैं ना कि कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है, मुश्किलें खुद ब खुद आसान इंसान की होती हैं। तो ये खूबसूरत जो संदेश हैं, इन बातों का ही हमें फलसफा बता रहे हैं। और देखिए, एक और संदेश हमारे पास आया है महेश अग्रवाल जी का, प्रतिभा। उन्होंने नमस्कार कहा है। नमस्कार आपको महेश जी। वैसे तो बहुत से लोग कई बार मदद करते हैं और मैंने उनकी मदद की है, लेकिन दो बार की बातें उन्हें याद हैं जिन्हें वो भूल नहीं सकते। और उन्होंने कहा है, पहली बार

0: बहादुरगढ़ आया था, 1993 की बात है। मैंने पढ़ाई करने के बाद, नहीं, मैं पैदल दुकान दुकान जाकर सप्लाई का काम करता था, और तब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि मेरे पास एक साइकिल नहीं है, एक रखी है साइकिल, और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तुम दे देना ये साइकिल, ले जाओ। याद है वो दिन उनको आज भी, कि इस तरीके से किसी ने उनकी मदद की थी। और उसी तरह 2002 में अचानक से उनकी जॉब छूट गई थी और उनके पास कोई भी काम नहीं था और पैसे भी नहीं थे। ऐसे में उनके एक दोस्त ने उन्हें 1,000 रुपये दिए थे दुकान के काम के लिए, और बस वो मदद उन्हें याद है आज तक। और देखिए, ये ऐसी बातें ही जो होती हैं जीवन में ना, वो याद रह जाती हैं प्रतिभा, और
1: और
0: अच्छा
1: देखो,
0: लगता है इन्हें याद
1: बिल्कुल
0: करके।
1: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि ऐसी जो मदद होती है और वो जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं वो कभी भुलाए नहीं भूलते। और देखो, ऐसे ही एक और मैसेज आया है कबीर कश्यप जी का। वो कह रहे हैं कि मेरा नाम ललित है ना, वो किसी उससे किया होगा उन्होंने, कि वो पठानकोट पंजाब से हैं। और उन्होंने लिखा है कि जब एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उनका पर्स चोरी हो गया बस में, और उनके पास किराए के भी पैसे नहीं थे। तो उस मुसीबत की घड़ी में कोई मिस्टर पवन शर्मा जी आए उनकी मदद करने के लिए। उन्होंने उनकी मदद की और तब से ही वो कहते हैं कि मतलब कि दुनिया में नहीं, आज वो दुनिया में नहीं है जिन्होंने उनकी मदद की थी। कि मैं उनके अपने पैसे कह रहे हैं कि कैसे वापस करूं। देखिए, कभी कभी हम चाहते हैं कि हम जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है हम वापस उन तक पहुंचाएं, लेकिन अगर आपके मन में आज ये इच्छा है कि आप उस उपकार का बदला चुकाना चाहते हैं तो आप भी किसी की मदद कर सकते हैं, क्यों?
0: बिल्कुल सही उपाय बताया तुमने प्रतिभा। और देखिए, जो प्रकृति है ना, आप प्रकृति के कण कण में अपने भाव बिखेर सकते हैं, अपनी सद्भावनाएं बिखेर सकते हैं दोस्तों। और आपको कभी मन में ये मलाल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मन में जो सुंदर भावनाएं हैं वो अपने आप प्रकृति में प्रेषित होती हैं और आपकी खुशियों को बरकरार रखती हैं।

0: जी हाँ, जीने के बहाने देने वाले ये छोटे छोटे पल, और इन्हीं में बसा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे दहलीज फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। और आपको याद दिला दें कि आज हमारा जो प्रश्न है वो आपके लिए है, जब आपकी किसी ने मदद की। तो आपको अपनी भावनाएं, अपनी कहानी साझा करनी है हमारे साथ fmgoldga@gmail.com पर। और दोस्तों, चूंकि बात है ख्यालों की और ऐसी यादों की जहाँ पे किसी ने आपकी मदद की, आपके मन में कैसे भाव उपजे, तो अभी हम भाव और भावनाओं की बात करते हैं कवि की उन कल्पनाओं के बारे में जहाँ सभी के ख्याल नहीं पहुँच पाते। तभी तो कहा जाता है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।
1: बिल्कुल ठीक कहा मनीषा तुमने। देखो, कवि अपनी कल्पनाओं और अपने भावों को कविता की शक्ल में संजोता है, और जब वो कविता सुनी जाती है और पढ़ी जाती है तो वो अमर हो जाती है ना।
0: और इसी दिशा में ना प्रतिभा शिक्षा मंत्रालय की एक वो है जो मैं बताना चाहती हूँ, एक कवायद है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कदम उठाकर राष्ट्रीय कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया है।
1: और देखो, इसका जो उद्देश्य है, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में साहित्य, कविता और प्रभावी वाचन के प्रति उनमें रुचि विकसित करना है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय काव्य उत्सव 2026 का आयोजन ना 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। और जानते हैं 31 जुलाई तक आप इसमें अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
1: और आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय पर उपलब्ध चयनित सूची में से किसी एक कविता का चयन करना होगा, और इसके बाद 60 से 90 सेकेंड का स्पष्ट ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर उसे अपने अथवा अभिभावकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करना होगा।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है प्रतिभा। और देखो, छात्रों को जो उनकी कविताएं चुनी जाएंगी उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपना मतलब ऐसा रिकॉर्ड करना जिसमें उनका चेहरा दिखाई दे और उनका जो बैकग्राउंड है उस पे किसी भी तरीके के किसी म्यूजिक का वो प्रयोग ना करें ताकि उनका वो वीडियो निरस्त ना हो जाए। और प्रतिभागियों को वीडियो साझा करते समय राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के आधिकारिक हैंडल को टैग करने के साथ #राष्ट्रीय काव्य उत्सव हैशटैग का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
1: और अंत में प्रतियोगिता की वेबसाइट पर वीडियो का लिंक अपलोड कर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना होगा। इस तरीके से पंजीकरण हो जाएगा पूरा, और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रेष्ठ 10 प्रतिभागियों को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। प्रतियोगिता में चयनित जो सबसे 10 विजेताओं को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के मंच पर सम्मानित किया
0: अरे
1: जाएगा,
0: वाह,
1: और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी प्रतिभागियों को शिक्षा मंत्रालय की ओर से भागीदारी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।
0: और राष्ट्रीय काव्य उत्सव का जो उद्देश्य है दोस्तों वो बहुत ज़रूरी है आज के समय को देखते हुए कि विद्यार्थियों में कविताओं के प्रति, मौलिकता के प्रति रुचि हो, पढ़ने की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले, उनकी अभिव्यक्ति, उनका आत्मविश्वास और उनकी रचनात्मकता की जो

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी चालाक।
1: जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं और प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि हमारी आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तर में जो

0: उन्होंने उत्तर दिया है उसे शामिल किया जाए। और इसी संबंध में हमारे पास जो एक मेल है बहुत प्यारा सा, ये है गौरी शंकर वर्मा जी का। इन्होंने हम दोनों को राम राम कहा है जी, आपको भी राम राम। और अपनी एक याद बताते हुए वो हमें लिखते हैं कि 2003 सितंबर के समय में जब वो घर वाली मतलब अपनी वाइफ के साथ स्कूटर पर कहीं जा रहे थे, ऐसे में गाड़ी चलाते वक्त किसी ने उन्हें टक्कर मार दी और दोनों के सिर में गहरी चोट लगी। उनकी वाइफ को होश तो आ गया था लेकिन वो कोमा में चले गए थे और 1.5 महीने के बाद उन्हें होश आया। वहाँ पर उन्हें जब इस तरीके की स्थिति से उबारते हुए पकड़ कर जो लोग लाए थे उसमें एक पति पत्नी और उनका बच्चा साथ में था, उन्होंने अपनी गाड़ी में उन्हें डाला, अस्पताल ले गए और उन्हें पता भी नहीं था गौरी शंकर जी को, क्योंकि वो तो बेहोश थे। तो वो आज भी याद करते हैं उन अच्छे इंसानों को कि वो कौन थे। उन्हें पछतावा है इस बात का कि मुझे उनकी जानकारी नहीं मिली, मैं उन्हें ढूंढा, मुझे पता नहीं चला, जिन्होंने मेरी मदद की थी मैं उनको धन्यवाद कह सकूं। और वो कहते हैं कि परमात्मा उन लोगों की मदद करें, उन्हें शक्ति दें और उनकी सुरक्षा करें। कितनी खूबसूरत भावना है
1: बिल्कुल
0: प्रतिभा।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मनीषा। देखो, कुछ लोग फरिश्ते की तरह आते हैं और वो मदद करके चले जाते हैं, और गौरी शंकर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और देखो, एक और मेल हमारे पास है जो आई है शांति नगर सोनीपत से, और लिखने वाले हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी। वो कहते हैं कि जीवन में माता पिता से अधिक और निस्वार्थ मदद और कोई नहीं कर सकता। देखो कितनी सही बात कही है। वाकई जो हमारे माता पिता होते हैं वो दिन रात हर समय हमारी मदद के लिए, हमारे साथ के लिए, हमारे साथ में खड़े रहते हैं।
0: बिल्कुल
1: और वो आगे ये कहते हैं कि लोग अक्सर सुंदर चेहरे भूल जाते हैं पर किसी के द्वारा दिया गया साथ कभी नहीं भूलते। वाकई हम किसी की मदद को कभी नहीं भुला सकते। और वो साथ ही साथ मनीषा देखो, वो हमें आज के दिन की और जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, सुखद हो। तो आपका भी दिन, हमारे सभी श्रोताओं का दिन, जीवन खुशियों से भरा हो, सुखद हो, शुभ हो।
0: बिल्कुल। और इसी भावना के साथ हम हमेशा याद करते हैं या याद रह जाते हैं वो लोग जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है। और इसी फलसफे को याद करते हुए हमने आज का प्रश्न आपके लिए रखा है कि जब आपकी किसी ने मदद की, आपको बताना है fmgoldga@gmail.com पर अपनी कहानी, अपनी यादें, अपनी स्मृतियां हमारे साथ साझा करते हुए। और अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव में बात करते हैं मदद करने वाले उन साथियों की जो चुपचाप मदद करते हैं। जानते हैं वो कौन है? सुनिए, वृक्ष वो कविताएं हैं जिन्हें धरती आकाश पर कलम बनाकर लिखती है। वृक्ष की छांव एक ऐसा एहसास दोस्तों जिसने हर जीवन को छुआ होगा। तो एक जानकारी इन हरियाली मित्रों से जुड़ी हुई आज है आपके लिए।
1: भाई देखो, ऑक्सीजन देना, जलवायु को हमारे अनुकूल रखना, जल और मिट्टी को संरक्षित रखना, उन्हें उपजाऊ और साफ शुद्ध बनाना, और वन्य जीवन को आश्रय देना है ना, हमें औषधि और भोजन देना, और सबसे अहम जो गर्म होती पृथ्वी को शीतल करना और वर्षा को निमंत्रण भी देना।
0: बिल्कुल, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले हमारे ये दोस्त परिवार के मुखिया की तरह दोस्तों हमारी खुशी और सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, है ना?
1: वो भी बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, हमें कितना कुछ देते हैं ना ये वृक्ष।
0: बिल्कुल
1: तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है इनके प्रति। इसलिए इन हरियाली मित्रों की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रीन हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका नंबर है 1800-11-8600। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पेड़ों की अवैध कटाई रोकने में आप अपना योगदान दे सकते हैं।
0: प्रतिभा, ये नंबर हम अपने दोस्तों को एक बार फिर बता दें। नंबर नोट कर लीजिए, 1800-11-8600। और हाँ, दिल्ली ऐप के जरिए पर्यावरण संरक्षण से जुड़कर वृक्षों की अवैध कटाई की ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं आप।
1: बिल्कुल। और देखो, वृक्षों को लगाना ही नहीं बल्कि उन्हें संजोना भी समय की मांग है। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम तो होना ही चाहिए ताकि हमारा भी नाम सदियां गुनगुनाए।
0: और झूमती लहराती डालियां जब जब बल खाएं।

0: लव स्टोरी इस फिल्म से आपने सुना अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को।
1: और देखो मनीषा, वो कहते हैं ना कि सपनों की उड़ान ऊंची हो तो आसमान छूना बेहद आसान होता है। जरूरत होती है एक संकल्प, इच्छा शक्ति, अनुशासन और साथ ही साथ कड़ी मेहनत की।
0: और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है प्रतिभा ओडिशा की बालांगीर जिले की रहने वाली पायल नाग ने।
1: और देखो उनकी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास ने उन्हें दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली चारों अंगों से वंचित पैरा एथलीट बना दिया है।
0: क्योंकि बचपन में प्रतिभा बिजली का करंट उनको लगा था और इस दुर्घटना में उनके अपने दोनों हाथ और पैर खराब हो गए थे। इसके बावजूद

0: युद्ध वो हार नहीं मानी और उन्होंने, जानती हो, पैरा आर्चरी को अपना लक्ष्य बना लिया।
1: देखो, उन्होंने अपने कोच कुलदीप वेदवान के मार्गदर्शन में विशेष तकनीक और अनुकूलित उपकरण की मदद से तीरंदाजी सीखी।
0: और अप्रैल 2026 में दोस्तों बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में महिला कंपाउंड वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने विश्व चैंपियन शीतल देवी को हराकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया।
1: और देखो, अब पायल नाग भविष्य में पैरा ओलंपिक पदक जीतने का लक्ष्य रखती हैं। दोस्तों, वाकई पायल नाग की कहानी दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

देखिए, जीने की तमन्ना और मरने के इरादे के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है और हमारी प्रश्नोत्तरी जब आपकी किसी ने मदद की, इसके लिए हमारे पास संदेश आया है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता का। और उन्होंने अपनी यादें साझा करते हुए बताया है कि 1992 में उनका MA फाइनल का रिजल्ट आया था। तकनीकी खामी की वजह से डिग्री लेने के लिए 200 किलोमीटर दूर उन्हें झांसी जाना पड़ा था और वहां पे जो क्लर्क है वो 2-3 दिनों से उनके काम को टाल रहा था। निराशा के बीच जब रजिस्ट्रार के चपरासी ने उनसे कहा कि आप एक बार जाकर साहब को अपनी समस्या जरूर बता दें, तब उन्होंने रजिस्ट्रार से बात की।

0: निराशा के बीच जब रजिस्ट्रार के चपरासी ने उनसे कहा कि आप एक बार जाकर साहब को अपनी समस्या जरूर बता दें, तब उन्होंने रजिस्ट्रार से बात की और उनके बात करते ही वे स्वयं अपनी सीट से उठकर संबंधित बाबू के पास गए और उसे डांटा और उसी दिन ही उनकी डिग्री उन्हें मिल गई। ऐसे परोपकारी अफसर को वो जीवन पर्यंत याद रखे हुए हैं।
1: और देखो एक मेल और है डी राजेश्वर राव जी का, वो कहते हैं कि हमें पेड़ों को प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल उनका ध्यान करना चाहिए, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। पानी दो उन्हें, हग करो और किसी को उन पेड़ों को काटने मत दो।

0: गाइड, ये थी फिल्म जिसका आपने गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और देखो मनीषा, बात अगर बाजार की करें तो बाजार उपभोक्ता और उत्पादन की एक सफल साझेदारी से चलता है। आज बाजार में तरह तरह के उत्पाद मिलते हैं जिसे हम उपभोक्ता जरूरत के अनुसार खरीदते हैं।
1: पर एक सफल उपभोक्ता वही है जो लुभावने विज्ञापनों से दूर रहता है और समझदारी से खरीदारी करता है।
0: तो आइए आज बात करते हैं कि कैसे आप कुछ बातों का ध्यान रखकर एक अच्छे उपभोक्ता यानी एक अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं।
1: कोई भी वस्तु खरीदने से पहले गुणवत्ता, कीमत और उपयोगिता की जानकारी लें, हमेशा बिल और रसीद जरूर लें।
0: बिल्कुल। और देखो उत्पादन का जो उत्पाद है उस पर आप तिथि यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें और उस पर गुणवत्ता चिन्ह देखना बिल्कुल ना भूलें।
1: तो इन छोटी छोटी बातों के साथ खरीदारी करें और खुश रहें।

ஆங்கன்.

किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम एक का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा।

0: गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19

इस फिल्म के हर गीत में आधुनिक संगीत और भारतीय धुनों का सुंदर मेल प्रस्तुत किया। गीतकार आनंद बख्शी के शब्दों ने इन धुनों को और भी यादगार बना दिया। दुनिया हसीनों का मेला, लेकिन इस मेले का सबसे बड़ा राज क्या है? स्वागत है आपका बॉलीवुड के उस दौर में जहां हर चेहरा एक नकाब था, शातिर चालें, झूठे गवाह और एक ऐसा कातिल जिसके साए से भी डर लगे। दोस्तों बने रहिए अभी हमारे साथ, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं 90 के दशक की सबसे बड़ी सस्पेंस थ्रिलर गुप्त की अनसुनी कहानियों और सुपरहिट गानों का पिटारा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिल्म गुप्त की। इस फिल्म का मुख्य पात्र है साहिल सिन्हा, जिसकी भूमिका निभाई है बॉबी देओल ने। साहिल पर अपने सौतेले पिता की हत्या का आरोप लगता है और परिस्थितियां उसे अपराधी साबित कर देती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, रहस्य की परतें खुलती जाती हैं और दर्शक अंत तक अनुमान लगाते रहते हैं कि वास्तविक अपराधी आखिर है कौन। यही रहस्य इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस फिल्म के बारे में और भी बात करते रहेंगे, तब तक सुन लेते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म गुप्त की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्म गुप्त हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्मों में गिनी जाती है जिसमें काजोल ने एक नकारात्मक भूमिका निभाई थी।

लिए एक बड़ा रहस्य बना रहा और इसी कारण ये फिल्म बार बार देखी जाती है। और आज भी हम इस फिल्म के ही बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म अपने आप में एक बहुत खास फिल्म है। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का दूसरा ट्रैक।

ने अपनी सहज और संवेदनशील प्रस्तुति से कहानी को अलग ही मजबूती दी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई काजोल के अभिनय की। उनके किरदार ने दर्शकों को एकदम चौंका दिया और यह भूमिका आज भी उनके करियर की सबसे यादगार प्रस्तुतियों में गिनी जाती है। सहायक भूमिकाओं में ओमपुरी, परेश रावल और राज बब्बर ने फिल्म को नई ऊंचाई दी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और फिल्म थी गुप्त। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਰ, ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 साल विच नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की रक्षा प्रणाली नूं मजबूत करन नूं आपने प्रमुख तरजीह दिती है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने देश दी रक्षा जरूरतां नूं पूरा करन लई दरामदां ते निर्भरता घटाउण दा वी अहद लिया है। उन्होंने कहा कि हथियारबंद बलों के आधुनिकीकरण लई निर्धारित बजट का 75% भारतीय सनअतां तों खरीद लई राखवां रख्या गया है। उन्होंने भी कहा कि सरकार इस साल एक नवी रक्षा प्राप्ति प्रक्रिया लागू करेगी जिस नाल देश विच रक्षा उत्पादन नूं नवी गति ते ताकत मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि देश दा रक्षा उत्पादन करीब 1,78,000 करोड़ रूपये दे रिकॉर्ड पद्धर ते पहुंच गया जदों कि 2014 विच करीब 40,000 करोड़ रूपये सी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल रक्षा उत्पादन विच 2,00,000 करोड़ रूपये दे अंकड़े नूं पार करन दा टीचा रख्या है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRNewsJalandhar। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੱਲ ਮੋਲਡੋਵਾ, ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀਬੀ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਮੋਲਡੋਵਾ ਗਣਰਾਜ, ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ

0: राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्द विरुद्ध भारत की सख्त नीति सिर्फ एक बयान नहीं है, भारत इस स्टैंड से दृढ़ता नाल खड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भलके मोलदोवा, उत्तरी मसेडोनिया ते रोमानिया ते सरकारी दौरे ते रवाना होणगे। ते गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विच भारत बांग्लादेश सरहद ते सरहदी सुरक्षा बल दे
1: रस और तारीखी तब्दीली लाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी की महज कोई बयान नहीं, बल्कि ये सख्त कार्रवाई का अजम मुसम्मम है। भारत के मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी इलाके और सिक्किम में कल तक बहुत तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और पीवी सिंधु जापान के शहर टोक्यो में जारी बैडमिंटन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम 1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड्स पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से आज दोपहर 12:05 पर भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी तौर पर तैयार कर द विक्रम 1 की कामयाबी पर स्काई रूट्स एरोस्पेस की टीम को टेलीफोन के जरिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि यह तारीखी कामयाबी मुल्क के नौजवानों को आगे बढ़ने और इख्तरा में अपने रोल अदा करने के लिए हौसला अफजाई करेगी। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि स्काई रूट्स की टीम में ज्यादातर नौजवान माहिरीन शामिल हैं। उन्होंने विक्रम 1 की टीम को मुलाकात के लिए मदु भी किया।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: वजीर आजम ने मजीद कहा कि यह कामयाबी मुल्क के बेशुमार नौजवानों को बड़े ख्वाब देखने और बेखौफ होकर नई इजादात करने की तरगीब देगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी भारत के पहले निजी तौर पर तैयार करदा रॉकेट विक्रम 1 की कामयाब लॉन्च पर स्काई रूट की टीम को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के तेजी से तरक्की करते हुए निजी खलाई शोबे के लिए एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी खलाई टेक्नोलॉजी में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियत और फरोग पाती हुई खलाई मईशत की अक्कासी करती है। विक्रम 1 को हैदराबाद में वाक़ खलाई कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने डिज़ाइन और तैयार किया है। मिशन आगमन के तहत तैयार किया गया रॉकेट कम लागत और पायदार अंदाज में छोटे सेटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए बनाया गया है। भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखे गए इस रॉकेट में ठोस ईंधन पर मबनी 3 मराहिल हैं, जबकि मदार में एडजस्टमेंट मॉड्यूल में रकीक ईंधन से चलने वाला रमन इंजन नसब है जो रॉकेट को दुरुस्त मदार में दाखिल करने और मदार में मतलूबा तब्दीलियां अंजाम देने में मदद फराहम करता है। यह रॉकेट जमीन की सतह से तकरीबन

कहा है कि भारत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक वाज़ह दो टोक और मजबूत मौक़िफ़ है। आज नई दिल्ली में मुनाकिदा फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को सिर्फ अपनी सरहदों पर नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके ठिकानों में

के दूसरे सेट के दौरान जख्मी होने के बाद रिटायर हो गईं, जिसके बाद पीवी सिंधु को फातह करार दे दिया गया। कल फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान के खिलाड़ी अकाने यामागुची से होगा। फीफा आलमी कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में फ्रांस स्पेन से हार गया था, जबकि दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी थी। आखिर में खास खास खबरों

0: देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
1: Congratulations in space for facilitating
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।

0: कमिटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
0: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
0: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2,030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं

दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं

0: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक

आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुनिधि और आज हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसने न केवल भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि अपनी प्रतिभा के दम पर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। वो एक सफल अभिनेत्री हैं, निर्माता हैं, गायिका हैं, उद्यमी हैं और यूनिसेफ की सद्भावना दूत भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कलाकार हैं प्रियंका चोपड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। प्रियंका चोपड़ा का जो शुरुआती जीवन था वो उसके बारे में हम जानेंगे। प्रियंका चोपड़ा का जन्म हुआ था 18 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 1982 को झारखंड के जमशेदपुर में। उनके माता पिता भारतीय सेना में डॉक्टर थे। सेना में नौकरी होने के कारण उनका बचपन देश के अनेक शहरों बरेली, लखनऊ, पुणे, दिल्ली और लेह में बीता। कुछ सालों तक उन्होंने अमेरिका में भी शिक्षा प्राप्त की। वापस भारत आने के बाद उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और उसके बाद साल 2000 में मिस वर्ल्ड का ताज जीतकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया। ये उपलब्धि उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। तो इनके बारे में बात हम करते रहेंगे। आइए सुन लेते हैं उन पर फिल्माया गया ये गीत।

फिल्मों में अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज़ ये खास तौर से उल्लेखनीय है। फिल्म ऐतराज़ में उन्होंने एक नेगेटिव रोल निभाया। उस दौर में किसी नई अभिनेत्री द्वारा ऐसा चुनौतीपूर्ण रोल स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने यह जोखिम उठाया और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। तो आइए हम उन पर फिल्माया गया एक और गीत सुन लेते हैं और उनके बारे में हम बात करते रहेंगे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, प्रियंका ने हमेशा से अलग अलग तरह के किरदार निभाने की कोशिश की। फैशन मूवी में एक संघर्षरत सुपर मॉडल की भूमिका हो, या कमीने में आधुनिक युवती का किरदार, या फिर सात खून माफ में सात अलग अलग रिश्तों से गुजरती महिला, हर फिल्म में उन्होंने अभिनय को नई ऊंचाइयां दी और अपनी एक अलग पहचान बनाई।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा हिंदी फिल्म उद्योग की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने अभिनय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगीत एल्बम भी जारी किए। उनका गीत इन माई सिटी दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हुआ। साल 2008 में आई फिल्म फैशन प्रियंका चोपड़ा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका अभिनय आज भी भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनय में गिना जाता है।

0: रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति बुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। देखो वंदना, यह समय जो गर्मी पड़ रही है ना, ऐसा लगे कि ब्रज में सुबह उठते ही जमुना जी के घाट पे चले जाओ और वहीं पैर लटकाए के बैठे रहो, ठंडी ठंडी हवा का पान करो और देखो कैसे आनंद में हैं, जमुना जी में डुबकी लगाओ, घाटन की शोभा अति न्यारी है यह समय।
1: हाँ जी जी, बड़ी सीरी सीरी ब्यार चले और बाको आनंद इतना अच्छा लगे और श्री यमुने महारानी को यशगान करवे में बड़ो ही आनंद आवे जी जी।
0: और सुनो, जब संध्या के समय जो आरती हुयो करे यमुना जी की, वाकू देखवे में तो विश्राम घाट पे बहुत ही आनंद आवे।
1: अरे जी जी, ब्रज की जेई तो आनंद है और का है, घर बार में का अच्छा लगे।
0: ऐसी नैसर्गिकता, ऐसी सुंदरता ब्रज में देखवे को मिले है कि का ही कहने। अगर हम ब्रज के घाटन की बात करें तो देखो, विशेषकर मथुरा वृंदावन में जो है ना, जमुना नदी के किनारे किनारे बहुत सारे कई पौराणिक और आध्यात्मिक घाट हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें जहाँ से 84 को उसकी परिक्रमा हु आरंभ करी जाए है, वो कौन सा घाट है?
1: विश्राम घाट जी।
0: हाँ, विश्राम घाट, ये मथुरा को सबसे प्रसिद्ध घाट है। और यहाँ पे श्री कृष्ण ने कंस को वध करवे के बाद
1: विश्राम
0: कियो हो और संध्या की आरती भी यहीं पे हुयो करे, जो बहुत लोकप्रिय है। और तुम जानो यहीं पे यम और यमुना का वो मंदिर है।
1: हाँ जी जी, और जाके संगे केशी घाट है वृंदावन में, यमुना के तट पर ये स्थित है और ये वृंदावन को सबसे सुंदर और भव्य घाट है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने केशी नामक असुर को वध कियो और यहाँ की संध्या की आरती जी जी और संगमरमर की जो मेहराबे आते हैं ना, बहुत ही आकर्षक हैं।
0: देखो वंदना, जो ब्रज में घाट है ना यमुना के कूले कूले, उन घाटन पे कोई ना कोई कृष्ण और राधा की लीला भी भई है, यही लिए वो प्रसिद्ध हैं। अब जैसे चीर घाट की बात करें जो वृंदावन में है, तो ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण ने गोपीन के वस्त्र चुराए के चीरहरण लीला करी ही। और यहीं को प्राचीन कदम्ब को वृक्ष जो है वो आज भी वहाँ पे साक्षी है, इन लीलान को आज भी वहाँ पे मौजूद है और भक्त जन बाकी पूजा करें।
1: और जी जी, लीलान को एक मतलब जीव रहे के वो कोई ना कोई संदेश देते।
0: हाँ बिल्कुल।
1: हाँ, चीर घाट पे चौबिन ने लीला करी, जाको कुछ पता है आपको?
0: हाँ ना, तुम बताओ।
1: अरे जी जी देखो, गोपी स्नान करती ना तो वो वस्त्र नाए पहनती तो ना कृष्ण भगवान ने बिनते कही कि आप स्नान तो करो लेकिन
0: मर्यादा
1: में रह के करो, तो वो संदेश देवे के काज करते जी लीला।
0: और एक और घाट है जहाँ पे कालिया दे लीला भई है।
1: हाँ जी जी जी, वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण यमुना नदी में कालिया नाग को मर्दन कियो और बिनके हन पे नृत्य करो।
0: तो जाको नाम का है घाट को?
1: कालिया देह घाट है जी जी।
0: अच्छा, और ऐसो एक घाट ना मथुरा में हुए जाकू गौ घाट के में, और कहवे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण को तो सब जाने ही है कि गैयांते और ग्वालेंते बहुत प्रेम है, तो क्योंकि वहां पे सभी गैया और ग्वाला मिलो करते, तो या घाट को नाम या लिए गौ घाट पड़ो। यहाँ पे कहवे हैं कि गाय को दान करवे को और स्नान करवे को बहुत ही विशेष महत्व है।
1: हाँ जी जी देखो, एक इमली तला घाट है वृंदावन में, जे स्थान महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी और अन्य संतन की साधना स्थली रही है। और जो मानो जाए कि या इमली के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण राधा रानी की बाट देखते हैं।
0: और देखो ऐसे तो कई घाट हैं, अब जैसे असकुंड घाट है, कुंडा जाए बोले हैं, तो जाए धीर समीर घाट बोले हैं। और ब्रज के इतिहास में ये घाट अपनी शांत और दिव्य ऊर्जा ताई जाना जाए है, जहाँ बैठ के भक्त श्री कृष्ण की लीलान को ध्यान कियो करते। और यहाँ के अतिरिक्त कई घाटन के मुंह को नाम याद आए रहे, जैसे स्वामी घाट है, जैसे असकुंडा बताई तुम्हें मैंने, और ऐसे कई

0: घाट हैं जो जमुना के किनारे किनारे बसे भए हैं, और इनकी बसावट जो है ना वो जमुना के एक छोर से दूसरे छोर तक ब्रज क्षेत्र को जोड़े हैं।
1: हाँ जी जी सांची कह रही हो जी बात, तो आप बहुत ही लंबा चौड़ा बखान कर डारो आपने घाटन को, कहती जा रही हो। अरे तो तुम बोलो ना छोड़ो, अपने श्रोताओं को तो नहीं ध्यान रखे करो।
0: हाँ तो हम लोग ही सुनवाई में जा रहे
1: हाँ
0: हैं, तुम काहे को
1: सुनाओ।
0: नाराज है रही हो, पर ये है कि श्रोतान को कुछ जानकारी दे में तो पूरी दे में ना,
1: हाँ
0: कम
1: चलो
0: तो ना
1: बढ़िया
0: देनी
1: करो।
0: चाहिए ना। तो अब चलो श्रोतान ने सुनवा में है जी प्यारो सो लोकगीत।

0: श्रोताओं, अब ये आपने यह प्यारे से लोकगीत को आनंद लियो।
1: देखो वंदना, अब चौमासा आरंभ है गयो है, तो या समय में हमें थोड़ा सा खान पान को ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ जी, हरी सब्जी में कीड़ा मकोड़ा है जाए,
1: और वैसे तो हरी सब्जी खानी ना चाहिए या
0: हाँ।
1: समय में, मौसमी सब्जी खाओ ना, जो
0: हाँ।
1: मौसमी सब्जी है
0: हाँ, पत्तेदार
1: हाँ
0: सब्जी कम खाओ।
1: कम खाओ। और वैसे वो संध्या के समय ना बहुत उजीते में ब्यारू बना लेनी चाहिए, ताकि मच्छर पच्छर आए जावे ना, तो दिन
0: हाँ
1: को
0: जी
1: डर
0: जी
1: रहे।
0: मच्छरों को बड़ा
1: और
0: होगा।
1: खाने पीने की हर चीज को ढक के रखना चाहिए, जाते कि काऊ मक्खी मच्छर को डर ना
0: हाँ।
1: रहे और कीटाणु ना फैले हैं। पर देखो हास्य ये एक ऐसा कीटाणु है जो हम चाहें कि सब में फैले। हाँ,
0: हाँ जी, आपके भीतर तो मुझे दिख रहा है कहाँ है
1: और मोते तुम में आरोपित है गए
0: अब।
1: है, और तुम ते सभी श्रोतान में आरोपित है जाएगा, तो हम तो
0: हाँ
1: यही छावे हैं। तो जो ना अपने श्रोतान में वो हास्य को कीटाणु प्रवेश करावे और
0: करवा।
1: बिनकु सुनवावे हैं एक झलकी लगन।

0: O ito, batao? Aha! Agay, meri manjil, agay. Aray, aray, rug ja. Meri cycle ab to rug ja.
1: Abey, oye, Meenu. Aray, gata bayo, kitku jai raho hai?
0: Aray, bas yaar, Teenu, tere jori aa raho. Ji, samajh le. तेरी याद आ गई मेरे शेर
1: है? मेरी याद आ गई? अबे रोज तो मिल लो मुते।
0: हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, पर तू एक बात बता यार, तू रोजीना जो दुकान खोल है कुछ बिकते हुए है या वैसे ही टाइम पास कर रहा है?
1: अरे यार मनु कुछ भी समझ ले, अब पिताजी मूली बिकवा में, एक बात बता है, जब मौसम में भला कोई मूली खावे? अब मेरा मन करे मैं ऊंचा दुकान छोड़ के चलो जाऊं। हाँ यार कोई ग्राहक तो आवे ना है। खैर छोड़, तू अपनी बताए।
0: आज तो मैं स्पेशल तेरे जोहरी आया हूँ।
1: मेरे जोहरे?
0: हाँ।
1: अच्छा अच्छा बता कौन सी स्पेशल बात है।
0: देख यार,
2: अबे गांव में 4 दिन बाद एक बहुत जोर को मेला लगवे वारो है।
1: मेला लगवे वारो है?
2: हाँ।
1: अरे तो मैं क्या करूँ यार।
2: अरे यार वह मेला में बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य की पार्टी आ रही है।
1: अच्छा।
2: हाँ पर जी अच्छो बच्चो ना चले हो, जहाँ बार तो हमें उनको नाच देखना है बस।
1: अबे कछु महीनन के बाद परीक्षा आ रही है और तू नाच देखने की बात कर रहा है? कम से कम जा साल तो हम दोनों पास है जामे यार।
0: यार टीनू मेरी बात समझने की कोशिश कर, परीक्षा तो हर साल आंगी।
2: पर ऐसी लोक नृत्य पार्टी हर साल ना आवेगी।
0: पूरे 5 साल बाद आ रही है।
2: अब जी समझ ले कि नाच देखने को सुनहरा मौका है।
1: नाच देखनो है सुनहरा मौका है जी तो ठीक है यार, पर जाकर आज दाम पानी कहाँ से आएंगे?
0: यार टीनू तेरा कहना है तो एकदम सही, पर मेरे दिमाग में एक फर्स्ट क्लास आइडिया आया है।
1: फर्स्ट क्लास आइडिया? अरे तो उगल फटाफट।
0: देख टीनू अपने जो टनाटन गुरु है ना।
1: हाँ।
0: अरे वो एक बिलायती कुत्ता लाए।
1: अच्छा
0: यार कैसे करके अगर हम वह कुत्ता पकड़ लें और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर नत्थू पहलवान है बेच आए तो मैं अच्छा पैसा मिल जाए। वो
1: नत्थू पहलवान क्या? अबे मरवाया को का? मैं ना जाऊंगा।
0: अबे नत्थू पहलवान है कुत्ता पालवे को बड़ा शौक है।
1: तो फिर?
0: अरे वो जब बुलायती कुत्ता के फटाफट अच्छे से दाम दे देगा। और टीनू
1: हाँ
0: हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।
1: अबे काय में?
0: अरे लोक नृत्य देखवे में।
1: अबे बात तो तेरे 100% सही कही है। वाह भाई भोरे मान गयो तू, का दिमाग दौड़ाया हुआ है।
0: अच्छा अब सुन, कल सांझ को ठीक 4 बजे आ जाइयो अमरूद के बाग में।
1: हाँ
0: और मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, क्योंकि वो कुत्ता भी वही टाइम पे बाग में आवे। और हाँ सुन सुन सुन सुन सुन।
1: हाँ बता।
0: कान खोल कर सुनियो।
1: अब बता तो।
0: एक फर्स्ट क्लास की साइकिल और एक मजबूत सा थैला ले आइयो, ठीक है?
1: ठीक है ठीक है, चलो राम राम।
0: अच्छा राम राम राम राम
1: राम राम।
3: भाई साहब आप यहीं रहवे का?
4: हम्बे बोलो कहा बात है।
3: ये दुकानदार कितकू चलो गयो?
4: जे सब आप मोते चो पूछ रहे हो?
3: मैं जय मारे पूछ रहा हूँ कि जे मेरी दुकान और दुकानदार मेरो छोरा।
4: देखो साहब ये दुकान सवेरे 8 बजे खुल जावे और रात को 8 बजे बंद है जावे। जामे सिर्फ मूली बिके।
3: पर मेरो छोरा तो कहवे कि मूली बिके ही ना, ऊपर ते मूली बंदर ले जावे, बड़ो नुकसान है रोए भैया।
4: देखो साहब पहली बात तो ये है कि यहाँ बंदर हते ही ना है, और दूसरी बात ये है कि बंदर मूली ना खावे। मूली तो सबे गई बिकचा में, बाकी जो भी हते वो आपके सामने है।
3: आपने सांची कही, मैं सब समझ गयो, अब तो बाकी अच्छी खबर लूंगो घर जाई के।
0: अरे यार जो टीनू कहाँ रहे हो यार, जाना है बड़ी देर कर दी यार, अभी तक ना आयो।
2: अरे वो आगो आगो मेरो शेर, आजा आजा आजा टीनू जल्दी आ, अब ऐसे ही बुलाए दे रहे भैया।
1: अरे यार कहाँ करूँ, साइकिल ही पंचर रह गई।
0: हाँ बस कर जे, बार बार एक ही बानो सुन सुन के पक गऊ मैं।
2: देख देख देख देख देख देख बोलो बोलो अपना शिकार देख।
1: कहाँ कहाँ
2: देख देख देख।
1: अबे अबे अबे पढ़ो बनू कैसे तो।
0: अरे जब बुलाएं जा, आ आ आजा ले ले ले ले।
1: ओ ओ ओ आजा आजा आजा। अरे आजा मेरे राजा, बिस्कुट खा ले बेटा, आजा आजा।
2: डाल डाल डाल डाल जल्दी तो बोरी में डाल
0: डाल बोरी में डाल डाल डाल।
2: पंजा मार दिया, पंजा मार दिया। अरे पंजा छोड़ पहले डाल बोरी में।
0: पकड़ पकड़ पकड़
2: पकड़ अपन घुसे मोबाइल कर, बोरी को मोबाइल कर,
0: पकड़ पकड़ पकड़
2: डाल डाल पकड़। अब सुन जल्दी तो जल्दी तो यहाँ तो नौ दर क्या रहा है, अरे बंदा जंतर खातिर दारी आ रही है। चल चल चल चलाओ सीधो नत्तो पहलवान की झाड़ रुकियो, मत रुकियो पहले ही भाग ले।

0: Exo-Beast.
1: कौन है रे?
2: पहलवान जी, दरबज्जा खोलो।
3: हमें हम मीनू और टीनू।
1: अरे हमारा आ रहे। हाँ बोलो।
2: राम राम पहलवान जी।
1: राम राम राम राम।
3: पहचाने कि ना हमको?
1: अबे पहचान लियो पहचान लियो। फटाफट बोलो चो आए।
0: रे जे टाइम कसरत कर रहा हूँ, बोलो।
2: पहलवान जी, हम तुम्हारे काज एक विदेशी नगीनो लाए।
4: विदेशी नगीनो?
2: हाँ।
4: दिखाओ कौन सा नगीनो है।
3: जे देखो।
1: ये तुम, ये जानवर कहाँ से मार रहा है जे?
2: पहलवान जी, तुम्हें आम खा बेते मतलब है या गुटली गिन बेते?
4: मुकदर घुमाऊं।
1: अच्छा बताओ कहाँ करने जाना नगीनो को?
3: अब अब अब पहलवान जी, बस तुम्हारे काज है, 4 किलोमीटर दूर ते लाए हैं। ऐसा नगत में जब पूरे एरिया मनाए में लगो। अब जब पकड़ो तो सही। देखो कैसा मलमल जैसा है रे। तबीयत खुश है जाएगी। अरे अरे तुमने छोड़ क्यों दियो?
2: अरे अरे अरे अरे
1: अरे छोड़ो ना, फिसल गया हो जे।
3: अरे
1: पेड़ू पेड़ू मेलू
3: आजा बेटा आजा।
2: अरे अरे कसके पकड़ कसके छोड़ियो मत।
3: छोड़ियो। अरे पहलवान जी, तुम उन्हें कसके पकड़ लो।
1: ये
3: पकड़ लो ना।
1: हाँ पकड़ लो। जान नगीनों का नाम टेडू है।
2: हाँ पहलवान जी, जाको नाम टेडू ही है।
1: टेडू? बड़ा विचित्र सो नाम है टेडू।
3: अरे तो पहलवान जी, तुम्हें जी नाम अच्छा ना लगे तो कोई दूसरा रख लीजो।
2: मैं तो कहा
1: रे, पर जाको करनो कहा है जी बताओ।
3: कछु ना करनो कछु ना करनो, बस तुमको तो जाए खरीद लो बस।
1: अच्छा अच्छा बताओ कहा दे जाको?
3: पता नहीं पता।
2: अब पहलवान जी, अब देखो तुम अपने आदमी तुम ते का ज्यादा मांगे।
1: हाँ, बोल,
2: तुम
1: बोल।
2: बस 2000 दे दियो बस। 2000?
1: 2000?
2: हाँ।
3: वो भी बस तुम्हारे काज है।
1: मुकदर घुमाऊं क्या?
3: तो एक काम करो, तुम 1500 रुपया दे दो।
2: 1500?
3: हाँ जी ठीक है।
1: तेरे लिए भी मुकदर घुमाऊं क्या?
2: फिर का दोगे?
1: 1000 रुपया, समझे? ये पकड़ो और निकल लो।
2: 1000?
3: अब कोई बात ना, ले ले ठीक है। लाओ लाओ दे दो पहलवान जी।
2: चलो भाई पहलवान जी, तुम अपने आदमी हो तो 1000 ले ले रहे। अब इजाजत दियो चलने हमें ना।
1: दरवाजे सामने।
2: हाँ दिख रहा है पहलवान जी।
3: अच्छा जी, राम राम राम
1: राम राम
3: राम राम
1: राम राम
3: बाद में चल चल चल निकलने आजा भैया आजा निकल।
2: हाँ भाई टीनू।
3: अरे मजा आएगा आज तो भैया,
2: देखेंगे डांस पार्टी।
3: अरे वारे भगवान, तेने हमारी खूब सुनी।
2: क्या हो?
3: फटाफट 1000 रुपया दबाए दे कि जाओ आनंद लो।
2: अब तो बस कल चल के नाच गाने को मजा लेनो है। और सुन सुन सुन।
3: हाँ बता।
2: सही टाइम पे आ जाओ, साइकिल पंचर को बहाना मत लगाइयो।
3: एकदम सही टाइम पे आ जाऊंगा कल मैं, देखियो तू। हाँ
2: हाँ चल ठीक है, कल मिलते हैं।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयारी कर रहा हूँ।
2: राम राम राम राम
3: राम राम, राम, राम। यार नाच गाने देख के तो मजा ही आएगा।
2: कहा गाने गाए? जुग जुग जियो मेरी नाचन हारी, जुग जुग जियो गोरी नाचन हारी।
3: मगर यार वो नाच के बाद जो नाटक भयो का हो लगन भाई, देख के तो सारो मजो पतो ना कितक उछल हो।
2: हाँ यार टीनू, यार बामे जब दिव्यांग छोरा ने एक अभिनय करो का हो यार, भाई देख के तो मेरी आंखें नम है गई।
3: हम बे यार बाने दिव्यांग है बे के बावजूद भी बस एक ही लगन लगाए रखी, मैं कछु बनू। मगर बेचारे के घर के हालात इतने खराब आते कि बाप रिक्शा चलाए चलाए के घर के 4 लोगन को पालन पोषण करता रहो। पर यार वह छोरा ने भी जैसे कसम खाई ली थी कि मैं कछु बन के दिखाऊंगो, अपने देश की सेवा करूंगो। जाके गाजे बाद छोरा ने कितनी संघर्ष किए, बाने मजदूरी तक करी। अब बताओ भाई देख के भलो कौन ना रोवेगो। अंत में वो छोरा इतना बड़ो अधिकारी बनो

0: पूरो देश भाई गर्व ते याद करे। भाई ना जाने कितने नाम दिए जामे, सारो हॉल तारियन ते गूंज तो रहे।
1: हाँ यार, ये बात तो तू एकदम सही कह रहा है टीनू। अब मैंने कसम खा ली है कि मैं हूं अब मन लगा के पढ़ूंगो, पढ़ लिख के कछु बन के दिखाऊंगो।
0: हम बे यार सही कह रहा हो तू, अब मैंने कसम खा ली है कि मैं हूं अब सारी गंदगी छोड़ के नेकी के रास्ता पे चलूंगो, पढ़ लिख के अपने देश की सेवा करूंगो।
1: कछु भी हो यार टीनू, भगवान ने नाटक दिखा के हम दोनों की आंखें खोल दी यार।
2: चोरे, मैं दुकान पे गयो पर तू वहां हतो ही ना है। पतो चलो कि तू सवेरे दुकान खोल के कछु मूली बेच के वहां ते 9-2-11 है जावे। कोई शर्म ना आवे ना रे ऐसी हरकत करते हुए।
0: अब पिताजी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर आज मोए ऐसी हरकत करते भाई अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है।
2: अरे बे शर्म तो ए शर्म आती तो तू मोहल्ले वालन के लड़ाई झगड़ो ना ही कर दो। रोज रोज की तेरी शिकायत सुनते सुनते मैं दुखी है गयो। मैंने दुकान यही मारी खुलवाई कि तू दुकान पर रहेगो तो मोहल्ले वालन से लड़ाई झगड़े से बचेगो और दुकान पर बैठकर कछु पढ़ाई भी करेगो। मगर बेटा तेरो पहले जैसा ही रवैया है, दुनिया बदल जाएगी पर तू ना बदलेगो। हे भगवान।
0: पिताजी पिताजी तुम तो बहुत ही दुखी है रहे हो, पर पिताजी आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ से कोई भी शिकायत ना मिलेगी।
2: शिकायत ना मिलेगी जाकी का गारंटी?
0: पिताजी गारंटी हता है, अब आपको बेटा वो ना रहे हो जो 3 दिन पहले हतकाओ।
2: बेटा मैं तेरो जे नाटक समझो ना है कि तू 3 दिन में ही बदल गयो।
0: हाँ पिताजी, एक नाटक ने मेरे और मेरे दोस्त की जिंदगी बदल दी। अब मैं कसम खाऊं कि अब तुम कबू मोए लेके दुखी ना होगे। बस तुम आशीर्वाद दे दो मोए।

0: है, मगर मेरा मन कह रहा है वो जरूर लौट के आवेगो।
1: जरूर आवेगो, भगवान भाई जरूर भेजेगो मेरे पास मेरे शेर हुए।
0: अरे गायत्री, तू इतनी क्यों दुखी है रही है? देख, तेने 3 दिन अंते खानो तक ना खायो, कम से कम खानो तो खा ले।
1: खानो पीनो तो मेरे गले के नीचे ही ना उतर रहे हो, हर टाइम बाकी याद आवे, बाकी उधम बाजी याद आवे। हे भगवान भाई, जल्दी ते भेज दो मेरे पास शेरू, मेरा शेरू कहाँ चलो गयो।
0: अरे अरे गायत्री, अरे कहाँ है गो तुए? भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक होगा। अरे गायत्री देख, देख अपना शेरू आएगा।
1: शेरू शेरू
0: है गो अपना शेरू,
1: तो आएगा शेरू, तू आएगा।
0: हाँ, देख देख मेरा प्यारा शेरू, शेरू आएगा, देख
1: मेरा बेटा,
0: मेरा बेटा आएगा,
1: राज दुलारो। अरे तुम खड़े चो, जल्दी जाओ दूध रोटी लेके आओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पता ना है कितने दिन इनको भूखो प्यासा होएगा मेरा लाल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अब आई लाऊंगा।
1: हे भगवान।

0: अबे सुन सुन, अबे अपने टनाटन गुरु के पास वो कुत्ता वापस आ गया।
1: अबे अबे सही बता, क्या बात कर रहा है?
0: हाँ।
1: अरे पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही कुत्ता है?
0: अरे यार मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो भी पास जाके। यार वो वह कुत्ता है, प्यार दुलार कर रहे। और सुन, पता है असली नाम का है?
1: का है?
0: शेरू।
1: अबे अगर टनाटन गुरु है पता चल गो कि ये शरारत हम दोनों की हती तो हमारा तो जा इलाके में रह वो मुश्किल है जाएगो।
0: अरे यार तू फिर क्या करे, अपना माइंड घुमा यार, कछू सोच फटाफट।
1: सोचूं यार पर कहा सोचूं, कहा सोचूं? अब सोच लियो
0: का,
1: अब जल्दी से चल नत्थो पहलवान के घर।
0: नत्थो पहलवान के घर?
1: हम आ जा
0: ना यार, बहुत मारे वो।
1: अरे तू चलता सही यार, जल्दी यार
0: चल, चल, चल, चल।

0: पहलवान जी हम है तीनू मीनू, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो।
1: हाल खोल रहा हूँ।
2: मारे वो तो ना, ना।
1: तो कैसे आना हो?
0: वो पहलवान जी अब तो बहुत बड़ी गलती है गई। जो कुत्ता हम तुम्हें देखे खाए वो टनाटन गुरु नाम के एक आदमी को आतो। हमन ने मेला में लोक नृत्य देखने के कार्य तुम्हें बेच दियो। जब हमन ने अपनी आंखें देखो है कि वो कुत्ता उनके झोरे वापस आए गो है तो बड़ी खुशी भाई हमें। पहलवान जी हमन ने 1000 रुपया में तुम्हें कुत्ता बेचो हो तो वो रुपया हम तुम्हें वापस करवे आए हैं। जे लो अपने 1000 रुपया।
1: तुम लोग सही टाइम पे आए हो, मैं भाई टनाटन गुरु के झोरे जा रहा हूँ क्योंकि मैं पता चलो कि कुत्ता उनके झोरे है। ठीक है तुम लोग जाओ वरना मुगदल घुमाऊं हवाले में।
0: जा रहे जा रहे। चल चल चल चल
3: चल निकल।
4: ठीनू ठीनू तू इतना हुआ इतना हुआ।
0: हाँ काय कह रहे हो जल्दी बता।
4: देख वो थे टनाटन गुरु चार पाई पे बैठे हैं।
0: अबे हम बे।
4: चल यार उनके पैर चूके उन्हें सब कुछ बता दें यार।
0: चल आजा। चल चल।
4: टनाटन गुरु माफ कर दो टनाटन गुरु।
5: अरे अरे भैया पैर छोड़ो गिर जाऊंगा भैया पैर छोड़ो।
4: नहीं छोड़ेंगे हम नहीं छोड़ेंगे।
5: अरे हाँ हाँ ठीक है बात का है कहाँ भयो।
0: हम है टीनू मीनू। अरे हम जय मोहल्ला में रहे मैं साहब
4: माफ कर दो।
0: अरे हमें माफ कर दो।
5: अरे ठीक है माफ कियो पर बात का है कहाँ भयो।
4: टनाटन गुरु हम बहुत शर्मिंदा है हमने तुम्हारा कुत्ता चुरायो और नथो पहलवान नाम के आदमी है बेचो तो और आज हम तुम्हें सब कछु सच बतावे आए हैं।
5: कहाँ?
4: हमें मेला में लोग नृत्य देखनो तो और पैसा हमारे पास अतनाए जय मारे हमने जी गलत कदम उठायो पर सच तो जी है टनाटन गुरु ये गलत कदम हमारे काजे नसीहत बन गयो। तुम्हारे कुत्ता ने हम दोनों की जिंदगी बदल दई।
5: जिंदगी बदल दई मैं कछु समझो ना हूं।
0: अरे हमने नाच गा

0: आने के संग एक नाटक भी देखो हतो। नाटक को नाम हतो लगन। अरे भाई नाटक ने हम दोनों की जिंदगी बदल दई। हम कसम खाए के कहमे कि जो हम 3 दिना पहले हतकाए वैसे अब ना है,
1: ना है।
0: और जे सब तुम्हारे कुत्ता की वजह से संभव भयो।
1: हाँ।
2: चलो भैया अब जब तुम दोनों सब बालक बन गए हो वो भी मेरी कुत्ता की वजह से, तो भैया मेरे पैर तो छोड़ दियो, वो जी रहोगे का?
1: छोड़ दे छोड़ दे
0: छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे।
2: चलो भैया ये तो अच्छी बात है, अब बेटा आगे बढ़ो। हाँ। अपने माता पिता को नाम रोशन करो
1: जरूर,
2: जब देश को नाम रोशन करो
1: जरूर,
2: और मेरी शुभकामना हमेशा तुम्हारे संग है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गोपाल प्रसाद मुद्गल की लिखी हुई जिझल की लगन। और अभी आई के संग ही हमारा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यहीं संपन्न होवे है। मुकु यानी के वंदना को
1: और मोई यानी श्रुति बुरी को देव अनुमति।
0: राधे राधे, राधे।
1: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: विवेक कुमार तोमर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: सुनते हैं नाटक ऐसा नहीं था, लेखिका मधु, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी।
2: आखिर क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी रह गई थी? मुझसे एक बार कहा तो होता, मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए। खैर, अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो गई। भूलने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें रितु, लेकिन भुला नहीं पा रहा हूं। आज भी मुझे याद है वो सर्द रात, 30 दिसंबर, शिमला का वो माल रोड पूरी तरह सफेद चादर से ढका हुआ था। क्या चर्च, क्या छोटी बड़ी दुकानें, सब बर्फ से सराबोर थी। आने वाले साल की वजह से माल रोड का कोना कोना जगमगा रहा था। धीरे धीरे गिरती बर्फ उन रोशनियों को अपने अंदर समा लेने की कोशिश करती हुई, चारों तरफ सन्नाटा, कहीं कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हवाओं का शोर। और उसी शोर में तुम्हारी आवाज, जब तुम चीखती हुई उस बर्फ से फिसलती हुई आ रही थी, और मैंने तुमको बचाने के लिए अपनी बाहों में भर लिया था। शायद हम दोनों ही अपने अपने होश खो बैठे थे। और ज्यों ही पास वाले गिरजाघर के घंटे की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई हमारे कानों में पड़ी, तब हमें होश आया और वो हमारी पहली मुलाकात एक यादगार मुलाकात बन गई। वो मासूम चेहरा, वो झील सी गहरी आंखें और वो तुम्हारे सुनहरे बाल, आज भी भुला नहीं पा रहा हूं मैं। कहाँ खो गई तुम? तुम्हें कहाँ ढूंढू रितु, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढू? कई बार लगता है कि तुम मेरे आसपास हो, लेकिन फिर भी इतनी दूर, इतनी दूर। रितु, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? तुम्हें लेकर मैंने न जाने कितने ख्वाब देखे थे, कितने ख्वाब, लेकिन वो सारे ख्वाब एक ही झटके में टूट गए, चूर चूर हो गए।
3: भाई
2: रितु, मैं
3: भाई।
2: हाँ,
3: सब ठीक है ना?
2: हाँ, सब सब सब ठीक, सब ठीक है, सब ठीक है।
3: भाभी की याद आ रही है ना?
2: हाँ, वो आज,
3: जानता हूँ जानता हूँ, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है ना, इसलिए।
2: क्या करूं यश, बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन लेकिन भूल नहीं पा रहा हूं।
3: भाई, वाइफ थी वो आपकी, इतना आसान नहीं है।
2: इसी बात का तो अफसोस है कि वो मेरी वाइफ थी, लेकिन सिर्फ कहने भर के लिए।

0: खैर छोड़ो, आओ ना कुछ पार्टी वार्टी की जाए।
1: नहीं यश, मन नहीं है, कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा हूँ मैं।
0: आपकी तबीयत तो ठीक है ना, डॉक्टर को फोन करूँ?
1: अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा तू एक काम करना, प्रीत को कॉल कर ले, जाओ तुम दोनों जाओ, एंजॉय करो, मैं यहीं ठीक हूँ।
0: नहीं, अगर आप साथ नहीं चलोगे तो फिर जाकर क्या करना है?
1: अच्छा बैठ थोड़ी देर मेरे पास, तो चलते हैं। अच्छा एक बात बता यश, क्या इंसान कभी दो नाव में सवार होकर नदी पार कर सकता है? तुझे नहीं लगता कि इंसान को एक ही रास्ते पर चलकर उसकी मंजिल मिल सकती है? क्या भटकते रहने से कभी सुकून, मन की शांति मिल सकती है? अच्छा छोड़ इन बातों को, एक बात पूछूं?
0: हाँ पूछो।
1: क्या मैं बहुत ही मतलबी किस्म का इंसान हूं?
0: आप?
1: क्या मैंने कभी तुझे या रितु को कोई तकलीफ दी?
0: अरे नहीं भाई।
1: कभी परेशान किया?
0: कभी नहीं।
1: कभी पॉकेट मनी पर सवाल उठाया?
0: अरे नहीं।
1: तुम दोनों ने जब भी जितना भी पैसा खर्च किया, कभी उसका जवाब मांगा, हिसाब मांगा?
0: कभी नहीं भाई। आपने मुझे हमेशा अपने भाई की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह प्यार किया। मम्मी डैडी की डेथ के बाद आपने ही तो मुझे संभाला है, आपने ही पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन आज अचानक इस तरह के सवाल पूछना मुझे समझ नहीं आया। क्या मैंने कभी आपका मन दुखाया, या जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं यश, ऐसी बात नहीं है यश। लेकिन पता नहीं क्यों आज अपने अतीत में झांकने का मन कर रहा है, अपने अंदर के इंसान को तलाशने का मन कर रहा है। तो मैं अपने अंदर छुपे इंसान और शैतान दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, खासकर शैतान को। क्या मेरे अंदर भी कोई शैतान छुपा है? क्या मैंने कोई हैवानियत या फिर शैतानों जैसा व्यवहार किया? कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया? बस वही तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा क्या तूने कभी मेरे अंदर छुपे शैतान को देखा?
0: भाई बात क्या है, आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। आज ऐसा क्या हो गया जो आप इतने अजीब अजीब सवाल कर रहे हैं?
1: होता है यश, कभी कभी होता है। आज बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूं।
0: अकेला क्यों भाई, मुझे आप अपना नहीं समझते हो क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यश, सब कुछ है पर भी खाली हाथ, खाली मन, अजीब सी वीरानी है। जैसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत ऊंचाई पर ले जाकर अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया, और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मदद मांग रहा हूँ, लेकिन आसपास के लोग मेरी मदद करने की जगह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं मुझ पर, और उस भीड़ में एक चेहरा जो बहुत ही खुश है, खिलखिला रहा है। गौर से देखा तो वो कोई और नहीं है, रितु थी, मेरी अपनी रितु, मेरी जिंदगी रितु। लेकिन उसका मुझ पर हंसना, मेरा मजाक उड़ाना मुझे परेशान करने लगा।
0: देखिए मुझे लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा।
1: हाँ ये अच्छा है दिल बहलाने के लिए, सपना होगा, ख्वाब होगा, भूल जाओ। यश, रितु ने जो मेरे साथ किया है ना, वो भूल जाना इतना आसान नहीं है।
0: भाई सॉरी, मैं आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन इतनी समझ मैं अभी रखता हूँ कि ये जो शक का जहर होता है ना, ये अंदर ही अंदर इंसान को इतना कमजोर, इतना खोखला कर देता है कि फिर उसको चाहे लाख समझा लो, नहीं समझ में आता उसको। आप हर साल आज ही के दिन भाभी को याद करते हैं और अपना दिल दुखाते हैं।
1: ऐसा नहीं है यश, ऐसा नहीं है यश कि मैं रितु को केवल आज ही के दिन याद करता हूँ। सच तो यह है कि मैं उसको और उसकी बेवफाई को कभी भूल ही नहीं पाया।
0: क्या किया भाभी ने और कब? भाई शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है, लोगों का तो काम ही कहना है दूसरों के घरों में आग लगाने का। भाभी के बारे में किसी ने कुछ कहा क्या?
1: चल ठीक है, मैं लोगों की बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। तू बता रितु कैसी औरत थी?
0: क्या कैसी मतलब?
1: उसका कैरेक्टर।
0: क्या बात कर रहे हैं भाई, भाभी
1: देख यश, हर तस्वीर के दो रूप होते हैं और हर इंसान में दो इंसान।

0: हर इंसान पर लागू होती है और आप पर भी।
1: काफी समझदार हो गया तू।
0: भाई मैं आप पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि जैसा अभी आपने कहा कि हर तस्वीर के दो रूप होते हैं और हर इंसान में दो इंसान होते हैं, तो फिर क्यों हम तस्वीर का एक ही रूप देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये तस्वीर अच्छी नहीं है, जबकि तस्वीर का दूसरा रूप तो हमने देखा ही नहीं। बिना सच्चाई जाने हम किसी के बारे में अपनी राय कैसे बना लेते हैं? आपको नहीं लगता ये गलत है? वैसे कभी कभी आपने भाभी का मन टटोलने की कोशिश की? कभी जानने की कोशिश की आपने?
1: इतना वक्त ही कहा था मेरे पास कि मैं उसके पास बैठ पाता, और ये सब उसकी खुशी के लिए ही तो मैं सब कुछ कर रहा था। मैं ये जो इतना पैसा कमाना चाहता था उसकी खुशी के लिए।
0: अच्छा एक बात बताओ, क्या भाभी ने कभी आपसे कहा कि मुझे आपका प्यार नहीं ढेर सारी दौलत चाहिए? भाई भाभी ने सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार ही चाहा था, जिसको आपने दौलत के तराजू में तोल दिया। दौलत का पलड़ा भारी हो गया और प्यार का पलड़ा हल्का। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कि पहले आपको पैसा कमाना चाहिए था और बाद में शादी कर लेते तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता आपको।
1: हाँ शायद तेरी बात सही है। अच्छा एक बात बता, तू उसके कितने दोस्तों को जानता है? मतलब कौन कौन लोग थे जो यहाँ आते थे?
0: बहुत से दोस्त थे, उनके कॉलेज फ्रेंड, बचपन के दोस्त।
1: कोई खास दोस्त जो अक्सर यहाँ आता जाता रहता हो? शरद, शरद के बारे में तेरा क्या ख्याल है?
0: आता था कभी कभी।
1: कभी कभी या सबसे ज्यादा? कभी नाइस स्टे किया उसने?
0: नहीं मेरे सामने तो कभी नहीं।
1: या कभी रितु या शरद को बेडरूम से निकलते या आते जाते देखा हो? या कभी दोनों को ऐसी हालत में देखा हो?
0: भाई भाई भाई मेरे विचार से रिश्तों में पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि सच जानने की जरूरत ही ना पड़े, और भरोसा इतना होना चाहिए कि झूठ बोलने की नौबत ना आए। शायद रिश्तों को बनाए रखने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है, वरना तो
1: मेरी तरह सारी जिंदगी रोना ही पड़ेगा। क्यों?
0: मेरे कहने का मतलब ये नहीं है भाई, मैं बस इतना जानता हूँ कि जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान और इंसान से अनुभव मिलता है।
1: और मेरे पास ना ज्ञान है और ना ही अनुभव है, ना
0: भाई आप मेरी बात को।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तेरे विचार से मैं गलत हूँ? क्या सुख ढूंढना गलत है? यश आज पैसा ही है जो सुख दे सकता है।
0: लेकिन भाई क्या आपने पैसा कमाकर सुख पाया? हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने? भाई अपना सुख और दुख हम खुद लिखते हैं।
1: यश मैं भी तो रितु को वो सुख वो हर खुशी देना चाहता था, लेकिन यह सोचकर मन दुखी होता है कि रितु ने मुझे समझा ही नहीं, मेरे प्यार को समझा ही नहीं। शर्म आती है मुझे अपने इस रिश्ते पर।
2: शर्म आ रही है जी, शर्म आ रही है आपकी सोच पर मिस्टर विक्रम। शेम ऑन यू।
0: प्रीत जब तक पूरी बात मालूम ना हो ना, तो किसी की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए।
2: यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट यश। जब तक पूरी बात मालूम ना हो किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, क्यों मिस्टर विक्रम? एम आई राइट?
1: यानी तुम मुझ पर, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो?
2: हर्ट हुआ ना? सोचा है कभी आपने? मेरी दीदी पर इतना कीचड़ उछाल रहे हैं आप, तो सोचिए मुझे कितना हर्ट होता होगा मिस्टर विक्रम।
0: ये क्या मिस्टर विक्रम लगा रखा है, सीधे सीधे जीजू भी बोल सकती हो।
2: वो हक इन्होंने खो दिया है।
1: यानी इतनी जल्दी रिश्ता खत्म कर दिया तुमने?
2: इसकी शुरुआत आपने की है। वो यहाँ पर दीदी का फोटो था ना, कहाँ गया यहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा, पुराना सामान फेंक कर नई चीजों से घर सजाने की तैयारी।
1: चीज नहीं थी वो मेरे लिए, दिल बहलाने का सामान नहीं थी वो, मेरी पत्नी थी, मेरी वाइफ थी।
2: लेकिन कभी पत्नी का हक दिया दीदी को? सामान नहीं थी, इसीलिए 6-6 महीने घर से बाहर रहकर सिर्फ 10 दिन के लिए घर आना और अपना दिल बहलाना फिर चले जाना। अपने बिजनेस टूर के चक्कर में आपने कभी दीदी को टाइम दिया? Just use and throw.
0: बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो।
1: बोलने दे विक्रम, बोलने दे इसको। हाँ जिसको भी बोलने दे। आओ बैठ कर बात करते। हाँ। बैठो। अच्छा ये बताओ शरद को जानती हो?
2: हाँ जानती हूँ।
1: कब से
2: क्या, बचपन से। शरद भैया और दीदी स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़े हैं। भाई पड़ोसी हैं हमारे।
1: सिर्फ पड़ोसी या?
2: हंसी आ रही है मुझे, घूम फिर कर

0: फिर से वही सवाल। हाँ, आखिर क्यों बेचैन कर रखा है इस रिश्ते ने आपको? क्या कभी कभी मेरी दीदी ने आपसे पूछा कि आपका और मिस चंद्रा का क्या रिश्ता है? क्यों वो हर टूर पर आपके साथ जाती हैं?
1: ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हर बार मेरे साथ जाती है। वो मेरी पीएस है, सारी मीटिंग सारी अपॉइंटमेंट्स की डिटेल्स उसी के पास होती है।
0: आपका और मिस चंद्रा का पीएस के अलावा?
1: प्रीत,
0: हम कैसे यकीन करें बताइए? आप कैसे यकीन दिला सकते हैं? इसके लिए कोई पैरामीटर है क्या आपके पास?
2: प्रीत, डोंट क्रॉस योर लिमिट।
0: और इनको हक है, बोलो यश, इनको हक है अपनी पत्नी पर उंगली उठाने का? ये बातें जो मैं आज पूछ रही हूँ ना, वो सब मेरी दीदी को पूछनी चाहिए थी। अगर वो जिंदा होती तब घुट घुट कर मर गई मेरी दीदी, घुट घुट कर।
1: और उसकी मौत का जिम्मेदार तुम मुझे मान रही हो?
0: और कौन हो सकता है? आपके लिए पैसा ही सब कुछ था, और मेरी दीदी के लिए वो तो बस प्यार प्यार चाहती थी, पैसा नहीं।
1: लेकिन पैसा भी तो जिंदगी में जरूरी होता है ना?
0: हाँ, पैसे से सामान खरीदा जा सकता है, जिंदगी की खुशियां नहीं। क्या क्या किसी अमीर को मौत नहीं आती? क्या पैसों से वो जिंदगी खरीद सकता है? बताइए। नहीं ना, बस एक बार मेरी दीदी के उस दर्द को समझा होता, उसके उसके मन के अंदर उठते तूफान को देखा होता, उस तूफान को शांत करने की कोशिश की होती। आप नहीं समझेंगे उनकी छटपटाहट को, उनकी बेचैनी को। अचानक अचानक जैसे हंसते हंसते कहीं खो जाना, कुमसुम सी सोनी आंखों को पढ़ने की कोशिश तो की होती एक बार आपने, एक बार की होती।
1: मैं मानता हूं प्रीत कि मैं उसको वक्त नहीं दे पाया, लेकिन उसको भी तो समझना चाहिए था ना कि ये सब ऐशो आराम का सामान मैं उसी के लिए तो जोड़ रहा हूँ, अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर रहा हूँ मैं।
2: वैसे बड़े कमाल की बात है ना भाई, इंसान बड़े बड़े ख्वाब देखता है, मंसूबे बनाता है कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा मेरे घर होगा, गाड़ी होगी, लेकिन अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला होता है इसका हमको ना तो ज्ञान होता है और ना ही भान। लेकिन बातें बड़ी बड़ी, वादे बड़े बड़े, मेरे ख्याल से हम अपना आज खुशी से बिता दें तो आने वाला कल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा।
1: हाँ, मैं मानता हूं यश, कुछ हद तक मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन फिर भी इंसान ये चाहता है कि उसकी जिंदगी चाहे दो पल की ही क्यों ना हो वो अच्छे से गुजरे, है ना?
0: पता है जीजू, जब आपकी पहली एनिवर्सरी थी ना, तो दीदी ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया।
3: प्रीत, प्रीत, ओ प्रीत, सो रही है तू?
0: नहीं, लंदन की फ्लाइट में बैठी हूँ, हम लंदन जा रहे हैं ना दी।
3: चल जा, मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे।
0: यार दी, रात का 1 बज रहा है दी, अब तो सो जाओ।
3: लेकिन लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही ना, मैं क्या करूँ?
0: एक काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं दीदी, ऐसा करते हैं आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं।
3: हाँ, लेकिन हाँ? कैसे? केक तो है ही नहीं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं है,
0: इन सब की तो कोई जरूरत भी नहीं है दी।
3: तो
0: क्या? हाँ, हम हमारे घर में म्यूजिक सिस्टम है ना, हम उसे फुल वॉल्यूम में चलाते हैं, राइट दी? हाँ, और फिर हम डांस करेंगे, हाँ मस्ती करेंगे, कॉलोनी में सबको पता चलना चाहिए कि हमारी दीदी की पहली एनिवर्सरी है, है ना? सबकी नींदें खराब कर देंगे।
3: उड़ा ले मेरा मजाक, कोई बात नहीं।
0: ओ यार दी, समझा करो ना, टाइम तो देखो, रात कितनी हो गई है।
3: एक रात मेरे लिए परेशान नहीं हो सकती तुम प्रीत?
0: अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा बताओ, हाँ मुझे ठीक से बताओ, क्या बात करनी है आपने?
3: अच्छा ये बता, विक्रम को मैं क्या गिफ्ट दूँ? ऐसा कौन सा गिफ्ट होगा जिसे देखकर वो खुशी से पागल हो जाए?
0: ओ यार दी, अच्छे भले इंसान को ना तुम पागल करना चाहती हो, एक पागल के साथ जिंदगी

0: तेरे से तो बात ही करनी बेकार है।
1: अच्छा, एक बार फिर से सॉरी। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अब बताओ दी।
0: क्या बताऊं, समझ ही नहीं आ रहा।
1: कोई
0: मोबाइल फोन?
1: मोबाइल फोन ये लो।
0: पागल है क्या तू, ये पुराना फोन दो मैं विक्रम को।
1: फिर से मेरी बात तो सुनो, फोन लो और जीजू को कॉल करके पूछो कि उन्हें क्या चाहिए।
0: तू पागल है क्या प्रीत, गिफ्ट भी कभी किसी से पूछ कर दिया जाता है भला। मैं ना विक्रम को सरप्राइज देना चाहती हूँ।
1: सरप्राइज?
0: हाँ, कुछ अलग सा गिफ्ट।
1: ठीक है, एक बात बोलूँ?
0: हाँ बोल।
1: देखो आप ना ऐसा करोगी, नेक्स्ट ईयर तक ना एक नन्ना सा प्यारा सा बेबी दे दो उनको।
0: पागल, वो तो तेरे जीजू।
1: अच्छा दीदी अब सो जाते हैं ना, प्लीज ये बेकार की बातें छोड़ो। गुड नाइट।
0: ठीक है, गुड नाइट।
2: प्रीत प्रीत
1: क्या है अब?
0: चल ना मार्केट चलते हैं।
1: दी अभी टाइम क्या हुआ है?
0: 5 बजे हैं। 5?
1: 5 सुबह के या शाम के?
0: अरे पागल, सुबह के। सुबह
1: तो यार दी, सुबह के 5 बजे कौन सी मार्केट खुली होती है मुझे ये बताओ।
0: अच्छा ठीक है ना, सो जा तू तो, सो जा प्रीत।

0: और इसी तरह सारी रात ख्वाब बुनती रही मेरी दीदी।
1: अगर सच में वो मुझे इतना चाहती थी तो शरद की तरफ इतना झुकाव क्यों? बार बार मुझसे सवाल किया जाता है कि मैंने उसकी भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन यही सवाल तो मेरा भी है, उसने मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझा? इतनी बेताबी, इतनी बेचैनी क्यों? क्या ऋतु को यह लगता था कि उसकी उसकी हर एक परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ शरद के पास है? क्यों?
0: विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है जीजू। पता है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक जब भी कोई परेशानी दीदी को होती, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी हो या लाइफ से, वो हर बात शरद भैया से पूछती थी बस। और भैया हर बार दीदी को परेशानी से निकाल देते थे। जानते हैं, एक सहारा बहुत ही जरूरी होता है जिंदगी में, फिर चाहे वो दोस्त के रूप में हो या भगवान के।
1: और ऋतु को लगता था कि मैं ना तो अच्छा पति बन पाया ना ही अच्छा दोस्त। काश हमारा एक बच्चा होता तो तुम्हें लगता है कि बात कुछ हद तक संभल जाती? लेकिन जब भी मैंने कहा तो बोली कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो लाइफ एंजॉय करने दो। और तुम कह रही हो कि
2: अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देने से खुद की जिम्मेदारी तो खत्म नहीं होती ना भाई।
1: लेकिन उसकी रजामंदी भी तो जरूरी थी ना। क्या करता मैं, तुम बताओ क्या करता?
0: हेलो, हाँ मम्मी, मैं यहाँ हूँ जीजू के घर। हाँ बोलो। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ मैं बाहर बात करती हूँ। हाँ हाँ हेलो।
1: मेरा यकीन कर यश, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं क्यों हमारे रिश्ते में अब वो पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत सर्द पड़ गई है। अच्छा ये बता, जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी, क्या तब भी वो ऐसे ही गुमसुम सी, खामोश सी, खोई खोई सी रहती थी?
2: नहीं भाई, अपने दोस्तों के साथ तो भाभी खूब हंसती मुस्कुराती रहती थी।
1: तो फिर मेरे साथ ही क्यों?
2: भाई ये भी तो हो सकता है कि भाभी उनके सामने अपना दर्द बयान नहीं करना चाहती हो, वो दिखाना चाहती हो कि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूं। सिर्फ दिखावा दोस्तों के सामने।
1: क्या जिंदगी सच में इतनी उलझनों से भरी होती है? कई बार लगता है जिंदगी बहुत ही आसान है, कई बार लगता है कि जिंदगी टेढ़े मेढ़े रास्तों की तरह है।
2: भाई यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया ही करती है। दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और कभी मुरझा भी गए तो उनका कोई इलाज नहीं है। पहला पौधा है निस्वार्थ प्रेम का, और दूसरा पौधा है अटूट विश्वास का।
1: इतनी

0: छोटी सी उम्र में तूने सब सीख लिया और मैंने तो
1: आपने सिर्फ पैसा कमाना सीखा, प्यार और रिश्तों को बेचकर।
0: बेचकर? बेचकर या भूलकर? हाँ, शायद बेचकर भी कह सकते हो। हर रिश्ते को दौलत के तराजू में तोल रहा हूं मैं, है ना?
1: और भाई जीत जीत तो दौलत की नहीं हुई। हाँ, मैं जानता हूं कि आज आपके पास पैसा है, मगर दिल का सुकून नहीं है। आप चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकते हो, मगर इस बात का क्या भरोसा कि वो जो भी होगी आपके पैसों की भूखी नहीं होगी। भाभी ने आपका साथ तब दिया जब आपका बिजनेस मात्र स्टार्ट हुआ था। रात रात भर जागकर आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया।
0: ये क्या आपका बिजनेस? क्या ये सब उसका और तुम्हारा नहीं है?
1: है भाई, है। सब कुछ तो हमारा ही है, मगर क्या कभी भाभी उस खुशी को एंजॉय कर पाई? कहती थी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं कहता कि भाभी क्यों सोच रही हो आप ऐसा, तो कहते कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां पीछे रह गई शायद।
0: और मैं बड़ा ही बड़ा सोचता रहा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना। हाँ, शायद ये सब ना हमारे बीते हुए कल की वजह से है। तूने गरीबी नहीं देखी ना, मैंने देखी है। खैर, उन पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा। वो कहते हैं ना, जब तक दिया खुद नहीं जलता वो दूसरों को रोशनी नहीं दे पाता है। भूली तो गई वो मुझे, मेरे प्यार को, मेरे एहसास को, सब कुछ भूल गई वो, सब कुछ।
2: और अब आप भी सब कुछ भूल जाओ जीजू, भूल जाओ सब कुछ। क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो? एक बात बोलूं, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते?
0: ये बात अभी मम्मी ने बोली है क्या? क्या मजाक कर रही हो तुम? बस बस अब और सहन नहीं होगा।
2: तो जीजू, फिर ये इतनी दौलत, ये सब किस लिए?
0: तुम दोनों के लिए।
1: हमारे लिए? पर भाई, आपके बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे।
0: अरे पागल, कब तक कब तक मेरे साथ कौन था जब मैंने जिंदगी की दौड़ में भागना शुरू किया?
1: आपके साथ भाभी का प्यार और विश्वास था भैया।
0: हाँ, लेकिन वो तो मैं खो चुका ना।
2: जीजू, I'm really sorry. पता नहीं गुस्से में मैं क्या क्या बोल गई आपको।
0: तुमने तो सॉरी बोलकर अपने मन का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन मुझे तो रितु ने ये मौका भी नहीं दिया।
1: भाई क्या हुआ?
0: हार रहा हूँ अभी, आता हूँ।
2: यश, तुम जरा अंदर जाकर देखो ना, जीजू क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ कर।
1: मेरा भाई इतना कमजोर नहीं है।
2: लेकिन मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है।
1: अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ।
2: पता नहीं आज जाने मैंने क्या क्या बकवास कर दी, कुछ ज्यादा हो गया था ना।
1: इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें पहले।
2: क्योंकि जीजू बार बार दीदी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
1: हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, भाभी पर इतना शक।
2: फायदा क्या हुआ, अपना ही घर बर्बाद किया ना, अपनी और दीदी की खुशियों को एक पल में सुहा कर दिया।
1: लेकिन प्रीत, इस शक के पीछे एक और कारण भी तो हो सकता है ना।
2: एक और कारण क्या?
1: भाई का भाभी के लिए अंधा प्यार, बेइंतहा मोहब्बत, खो जाने का डर।
2: यश प्लीज पहेलियां मत पूछो, साफ साफ समझाओ ना।
1: देखो, अपना बचपन याद करो, बचपन की उन बातों को याद करो।
2: मेरे बचपन से दीदी की मौत और जीजू के शक का क्या रिश्ता?
1: मैं शायद तुमको समझा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, कोई भी ऐसी चीज जो तुमको सबसे ज्यादा प्यारी हो, कोई डॉल, टेडी बियर या कुछ भी ऐसी चीज।
2: हाँ, मेरा टेडी बियर जो आज भी मेरे पास है, यू नो पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था।
1: और वो टेडी बियर तुम्हारी मम्मी या पापा किसी और को दे देते हैं तो सोचो तुमको कैसा लगता।
2: कैसा क्या हुआ था ना, एक बार मेरा कजन उसको लेना चाहता था, पापा ने भी कहा कि दे दो, मैं तुमको दूसरा ला दूंगा। बट यू नो मैंने ऐसा नहीं किया, और अपने पापा से एक हफ्ते तक मैंने बात भी नहीं की थी। हाँ, और अपने कजन से तो मैंने 5-7 सालों तक बात ही नहीं की बिल्कुल।
1: क्यों, ऐसा क्या था उस टेडी बियर में? अंकल दिलवा तो रहे थे दूसरा।
2: देना तो दूर की बात, अगर कोई उसको छू भी लेता ना मिस्टर, तो मैं पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। हाँ, और भूख हड़ताल अलग से।
1: बुरा लगता था ना।
2: बहुत बुरा।
1: तो अब भी मेरी बात नहीं समझे?
2: अरे नहीं,
1: भाभी भी भाई के लिए उतनी ही प्यारी थी जितना प्यारा तुम्हारे लिए।

0: वो टेडी बियर था। कोई भाभी की तरफ देख भी लेता तो भाई उससे झगड़ा करने लगते थे।
1: पर यश, ये कैसा प्यार था जिसको 6-6 महीने के लिए छोड़कर जीजू।
0: अब फिर से वही बात शुरू ना करो।
1: शुरू तो तुमने की थी ना, मैं तो जस्ट जवाब दे रही हूँ।
0: चलो ठीक है, मैं सॉरी तो बोल रहा हूँ ना।
1: कहाँ बोला, दोबारा बोलो।
0: अरे ठीक है बाबा सॉरी। अब ये बताओ कि आगे क्या करना है।
1: एक बात है, जीजू की जिंदगी का फैसला हम कैसे कर सकते हैं?
0: लेकिन कोई सलाह मशवरा तो दे ही सकते हैं ना।
1: हमारी बात मानेंगे वो?
0: भाई
1: जीजू,
0: ये अचानक कहीं जा रहे हो क्या?
2: हाँ शायद आज तुम दोनों की बातें सुनकर ना मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ।
0: भाई सॉरी, अगर जाने अनजाने में हमने आपका दिल दिखाया हो तो।
1: हाँ जीजू प्लीज सॉरी। हाँ सॉरी।
2: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ भाई, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने मुझे सच्चाई से रूबरू कराया।
1: जीजू
2: डरो मत, जिंदगी से भाग नहीं रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ मैं, बस थोड़े दिन के लिए चेंज चाहता हूँ। ऋतु से जुड़ी वो सारी बातें, सारी यादें अपने अंदर समेट लेना चाहता हूँ। एक बार फिर वहीं शिमला की वादियों में आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा, मेरा यकीन करो।
1: ठीक है,
2: आऊंगा मैं वापस, जरूर आऊंगा।
3: अभी आप सुन रहे थे नाटक ऐसा नहीं था, लेखिका मधु, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, सुनीता ठुकराल, निशा भारद्वाज और दक्ष वशिष्ठ।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे

0: Into the 李光普电台，这是普通话节目，播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
2: नमस्कार, मैं हूं रेनु गुप्ता और मेरे साथ हैं
3: मैं दर्पण तिकिया और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जीवन में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी।
2: जी, और खेल हमें बार बार याद दिलाता है कि हर अंत किसी नई शुरुआत का दरवाजा भी होता है, इसलिए खिलाड़ी आखिरी पल तक लड़ना नहीं छोड़ते, क्योंकि जब तक मुकाबला बाकी है तब तक उम्मीद भी बाकी है।
3: शायद यही जज्बा हमारी विरासत भी है। आजादी की लड़ाई से लेकर खेल के मैदान तक मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, हौसला आखिरी पल तक नहीं टूटता। जिंदगी में भी कई बार ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन अक्सर सबसे अंधेरा पल ही नई सुबह की शुरुआत होता है। इसीलिए हालात जैसे भी हों, कोशिश मत छोड़िए, यही आज का संदेश है। और इसी संदेश के साथ आइए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं।

0: तो दर्पण आज हमारे पिटारे में क्या क्या है अपने श्रोताओं के लिए जरा बता दें उन्हें।
1: जी आज के चर्चा का केंद्र रहने वाले हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, साथ के साथ कुश्ती की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे।
0: जी हाँ, और बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच थर्ड प्लेऑफ मैच, थर्ड पोजीशन के लिए प्लेऑफ मैच की,
1: और साथ के साथ भारत के इंग्लैंड दौरे पर क्रिकेट मैच में तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला, उसमें क्या कुछ होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे।
0: और कॉमनवेल्थ स्पेशल सीरीज में आज हमारे पास क्या है दर्पण?
1: जी लॉन बॉल्स, एक ऐसा खेल जिसमें भारत ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया उसके बारे में बताएंगे। साथ के साथ बैडमिंटन में जापान ओपन के बारे में बताएंगे और एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप से भी आपको रूबरू कराएंगे।
0: और साथ ही बात करेंगे रेसलिंग की रैंकिंग सीरीज के बारे में, बुडापेस्ट हंगरी में विमेन रेसलिंग ग्रेको रोमन के जो ताजा जानकारी है वो अपने श्रोताओं को हम देंगे। और इसके अलावा बात करेंगे चेन्नई चैंपियनशिप के बारे में। और शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम।
1: जी हाँ, तो बने रहिए अगले आधे घंटे अपने रेडियो सेट के पास। आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी।

विश्व बैडमिंटन के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के आगाज में अब केवल एक महीने का समय शेष रह गया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शटलरों का ये महाकुंभ 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। करीब 17 वर्षों के बाद भारत को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है। इससे पहले 2009 में हैदराबाद में विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ऐसे में दिल्ली में होने वाला यह आयोजन भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। विश्व चैंपियनशिप में ओलंपिक और विश्व स्तर के दिग्गज खिलाड़ी पुरुष और महिला एकल युगल तथा मिश्रित युगल वर्गों में खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगे। चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, मलेशिया और थाईलैंड जैसी बैडमिंटन महाशक्तियों के खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और अगर बात करें भारतीय चुनौती की, तो देश की निगाहें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा सितारों पर भी टिकी होंगी। पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु वुमेन सिंगल में भारत को लीड करेंगी, तो वहीं पुरुषों में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का लाभ भारतीय खिलाड़ियों को अतिरिक्त आत्मविश्वास

0: प्रदान कर सकता है। और क्योंकि भारतीय बैडमिंटन ने पिछले दशक में विश्व मंच पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और यही कारण है कि इस बार पदकों को लेकर उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। और दर्पण इसी कड़ी में आज नई दिल्ली में टूर्नामेंट के आधिकारिक मैस्कॉट और एंथम का भव्य अनावरण किया गया है। तो आइए अपने श्रोताओं को सुनाते हैं कि क्या क्या हुआ है वहां पर।
1: जी हाँ, तो एंथम लॉन्च किया गया है, वो एंथम जो सिर्फ खिलाड़ियों का ही नहीं बल्कि दर्शकों का भी उत्साह बढ़ाएगा। उस एंथम को आपको सुनाते हैं।

0: चलिए एंथम थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं, और खबरें बताइए।
1: जी हाँ, और इसी अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहे और उन्होंने क्या कहा वो भी हम जानेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ले चलती हूँ चेन्नई ग्रैंड मास्टर जो 2026 की प्रतियोगिता है उसके मुकाबलों की तरफ। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता में कल राउंड टू के मुकाबले हुए हैं जिनका जो ताज़ा हाल है वो कुछ इस तरीके से है। फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अली रेजा फिरोजा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट के बाद सेकेंड राउंड के बाद लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए दो अंकों के साथ सेकेंड राउंड में एकल बढ़त हासिल कर ली है। ये बेहद रोमांचक मुकाबला 69 चालों तक चला। वहीं अगर भारत के एम प्रणेश ने रशियन डिमित्री एंड्रिकिन को और भारत के अर्जुन एरिगेसी ने अपने से बड़ी रैंकिंग वाले नौदीर बेग अब्दू सत्तोरोव को, निहाल सरीन ने अमेरिकन हांस नीमेन को ड्रॉ दिया है। अगर राउंड थ्री के पेयरिंग्स की बात करें तो अर्जुन एरिगेसी का हांस नीमेन के साथ, प्रणेश एम का नौदीर बेग अब्दू सत्तोरोव के साथ, डी गुकेश का डिमित्री आंद्रे केन के साथ और निहाल सरीन का मुकाबला होगा अली रेजा फिरोजा के साथ। और अगर बात करें करंट स्टैंडिंग्स की तो इस समय नंबर एक पर हैं 2 पॉइंट्स के साथ अली रेजा फिरोजा, वहीं नौदीर बेग अब्दू सत्तोरोव, अर्जुन एरिगेसी, हैंस नीमन, डिमित्री एंड्रेकिन और निहाल सरीन संयुक्त रूप से 1 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। डी गुकेश जो कि फिडे चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, और एम प्रणेश संयुक्त रूप से 0.5 पॉइंट्स के साथ सातवीं पोजीशन पर हैं।
0: चलिए वापस ले चलते हैं आपको बैडमिंटन की दुनिया में। हमने आपको बताया था कि एंथम जो लॉन्च हुआ है वो सुनाएंगे, आइए सुनाते हैं आपको।

यहाँ तो 17 साल बाद ये चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है भारत में, नई दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा है और नजरें रहने वाली हैं सभी दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों पर। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर तो नजरें होंगी, पीवी सिंधु पर नजरें होंगी जिन्होंने हाल ही में जापान ओपन में जगह बना ली है अपनी फाइनल में। आपको बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबला काफी कड़ा होने

0: वाला था, उनके सामने चीन की चेन यू फी थी, जिनके खिलाफ पहला सेट सिंधु ने जीता, एक रोमांचक सेट था, 21-19 से उन्होंने जीता, और दूसरे सेट में प्रतिद्वंदी रिटायर हो गई चोट के चलते, जिसके वजह से पीवी सिंधु को मौका मिला आगे जाने का। खैर, बीडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप पर वापस आते हैं,
1: और क्योंकि यहाँ पर अभी हमने एक जो जानदार शानदार जो एंथम है, एक जोश से भरा हुआ, वो तो सुना ही है, और साथ ही हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है पीको, उसका भी अनावरण हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये मैस्कॉट है, और इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आइए जानते हैं उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा।
2: देश एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन बने, इंटरनेशनल टूर्नामेंट देश में मैक्सिमम आयोजित हो, प्ले इन इंडिया, आप आइए भारत में खेलिए, इनिशिएटिव पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए पिछले 2025 और 26 दो साल में 36 इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन करा गया, एक ही साल में 16 चालू वर्ष में इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन करा गया, अभी ये 2026 छह महीने बाकी है, 9 टूर्नामेंट ऑलरेडी लाइनअप है, और 2027 और 2028 दो साल के लिए और 19 इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, कई टूर्नामेंट आने वाले दो साल के लिए लाइनअप में है। जब कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमारे देश में आयोजित होती है, तब दोस्तों दुनिया के एथलीट यहां खेलने आते हैं। हमारे बैडमिंटन टूर्नामेंट, वर्ल्ड टूर्नामेंट में भी 50 से अधिक कंट्री, 400 से अधिक तो केवल विश्व के महत्वपूर्ण एथलीट खेलने के लिए आएंगे। इस श्रेणी में मुझे खुशी है बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी अच्छी तरह से देश में आयोजित होगी। ये चैंपियनशिप में केवल खिलाड़ी ही नहीं खेलेंगे, एथलीट तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन उसके साथ देश की स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट की क्षमता भी दुनिया देख पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है हम अच्छी तरह से ये टूर्नामेंट का आयोजन भी करेंगे।
0: जी हाँ, अच्छी तरह से टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे, और जैसा हमने कहा, नजरें होने वाली है सभी खिलाड़ियों पर। बात की मैंने पीवी सिंधु की, जिन्होंने अभी अभी फाइनल में जगह बनाई है जापान ओपन के। जैसा हमने बताया कि उनकी प्रतिद्वंदी घायल हो गई, इसके चलते उनको मौका मिला फाइनल में जाने का, लेकिन उस मुकाबले में, सेमीफाइनल में जो पहला सेट उन्होंने शानदार तरीके से जीता, वो एक बड़ी उपलब्धि थी, बता रही हैं खुद पीवी सिंधु।
3: Well, I was very focused and I think my coach kept saying, because I was leading the first game and then she came quite close, so it was important that I, you know, be more focused, because, you know, sometimes when you're leading and you give away points, you suddenly, you know, get disheartened thinking that, you know, why are these points going, or, you know, I was leading. So a lot of emotions go in your head, but I think my coach was saying that, you know, it's okay, it doesn't matter, just focus on the next point, and I think that really helped. And even in the second set, I think there were long rallies, and I think especially in the first game, that long rally which happened and I won the rally, I think that one was very important for me to get that point. Well, I'm very happy that I've you know, gone to the finals, and I think for me every match mattered a lot from the first match, and you know, for me it was important, like especially today's match, it was important from the beginning to be focused, because you know, when you play with the top players, top ranked players, I think it's important that every point matters. I think for me winning that first game really mattered a lot, and I think in the second game as well it was important, where I was focused from the first point, because you know, it was going quite equal, and I think after even though I was 2 points, you know, leading, she was covering and coming back, and I think after 11 it was, I was maintaining that you know, 3-4 points, and but yeah, unfortunately she had to she retired.
0: दिया, अब बात करते हैं क्रिकेट की। तीसरा एक दिवसीय मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाला है लॉर्ड्स में। सीरीज 1-1 से बराबर है, और लॉर्ड्स में यानी रविवार को ये मुकाबला खेले जाने वाला है। कौन जीतेगा इस मुकाबले को, वो सीरीज तो जीतेगा, लेकिन उससे भी बड़ा एक नैरेटिव है जो इस वक्त क्रिकेट प्रशंसकों के जहन में चल रहा है। खबरें आई पिछले दिनों की, ये आने वाला मुकाबला शायद रोहित शर्मा का आखिरी एक दिवसीय मुकाबला और शायद उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हो सकता है। हालांकि इसके बाद इस खबर को खारिज किया बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत

0: राइका ने, लेकिन जब सुधांशु कोटक से पूछा गया, सुधांशु कोटक जो कि भारतीय टीम के साथ बतौर बल्लेबाजी कोच हैं, और उनसे पूछा गया क्या सच में रोहित शर्मा के ऊपर कुछ दबाव है, क्या वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो संन्यास लेने वाले हैं, तो सुधांशु कोटक ने भी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया।
1: सी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रोहित जितना बड़ा प्लेयर को कुछ दबाव या प्रेशर हो सकता है। इज टू गुड अ प्लेयर टू फील दैट। हाँ, दो मैच रन्स नहीं हुए, आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी डिफरेंस, बट टुडे ऑल्सो इट लुक लाइक ही प्रोबेबली गेट अ गुड इनिंग आउट, बट दैट्स ओके। आई डोंट नो रूमर्स कहाँ से आ जाते हैं, बट आ जाते।
0: जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी माना।
2: आकाशवाणी हम जम्बो वेटू आफ्रिका मशरी के नमाहली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदा ही न सिकी का टू नंगाजीनी क्वेनिक्लो हार्ट एल्फू कोमीना टीसा मिया टीसा नाम सीनी यानी मीटा बैनी कोमीना सीटा व पेंडवा वस्कलीजाजी सासा टू नावाली टेनी की पिंडी मालूम। नैंडलिया कुसकलीजा ईदाहिया की सहेलिया आकाशवाणी
3: वर्ल्ड सर्विस हम जाम्बो वस्लिवेटू वा पेंडवा वा एशिया माशवाई के एशिया मगवाई भी ना बारल अफ्रीका ना महाली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदाही न सिकीका टुना टंगाजीनी कन्ने मासाफा या एल्फो तानो ना थेलाथीनी पंगवेटू वा की सहेली कुटोका ईद की सहेलिया
2: आकाशवाणी
3: उनावेजा कुसकलीजा कुटोका सा कुमिना साबा डाकिका अवेना टानो हादी सा कुमिना नाने डाकिका अवेना टानो कीला सीकू।
2: वापिन वस्कलीजाजी सासा तुनावाले टेनी की पिंडी मालूम।
4: वानाफुंजी कुटोका बारला अफ्रीका अंचनी इंडिया तकरीबन वानाफुंजी व किगेनी व पटाव वेल्फुकुमी कुटोका कीला पांडेला दुनिया हुजा अंचनी इंडिया कुजी एंडेलेजा पिया सेमु फुलानी इनाटोका मताइफा यलियोपीगा हटुआ कुबा की माइंडलेव। जाम्बो ला कुवुटिया ने क्वांबा इदादी कुबा या वानाफुंजी कुटोका अंची जिनाजो एंडेलेया हुजा हु हापा अंचीनी कुचुकुआ मासोमो कतिका फानी अम्बिली कामाविले स्टोरिया फलसा सियासा उचूमी उहंदीसी न टेक्नोजिया मादावा सियांसी या कंप्यूटर टेक्नोजिया या हबारी न मांबो या हुसुयो उकुसन्याजी न उसंबाजी व हबारी। लाकिनी वानाफुंजी कुटोका अंची जिलिजोपीगा हटुआ कुबा की वांडा हुजा अंचिनी इंडिया कुजिफुंजा मुजिकी न डांसी जा किएनेजी पिया लुगा या की हिंदी। Kati ya wanafunzi wanatoka anchi zilizoendelea asilimia 40 hadi 50 ni kutoka bara la Afrika, ikiwemo Afrika Mashariki na Kati. Sababu moja wapo inawafanya wanafunzi hayo kuza nchini India kuziendeleza kima somo jinsi walivyo mueleza mwandishi wetu ni kwamba kuna ule uhuru wa kidemokrasia unaopatikana kwenye vyuo wa hapa nchini. Sababu nyingine muhimu ni kwamba gharama ya masomo hapa India ni nafuu kuliko zinazotozwa wanafunzi wanaochukua mafunzo sawa na hayo katika mataifa yaliyoendelea. Isitose, India kwa ajili ya kuendeleza uhusiano wake makongwe na nchi za bara la Afrika hutoa nafasi za bure za masomo kwa idadi fulani ya wanafunzi kutoka bara hilo. Jambo linakuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi hayo. Hali mashuhuri ya India inayoshughulikia mambo ya utamaduni na nchi za kigeni ambayo ipo chini ya wizara ya mashauri ya kigeni, ila tu huziendesha shughuli zake yenyewe, husaidia wanafunzi kupata nafasi kwenye vyuo vikuu na kupanga jinsi watakaohudumiwa wakiwa humu nchini. Isitose, halmashauri hiyo hupatina habari zozote muhimu kuhusu fani mbalimbali za masomo yanayotolewa na serikali ya India. Pia kuna mipango ya masomo ambayo hupatia wanafunzi fursa ya kuziendeleza upande wa fani za kiufundi kwa ufupi. vyo kadha

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: was glazio pendwa hadia pandipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho nasema
1: हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो सचिव भाई को नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गांव बरहाना जिला बुलंदशहर।
1: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: महेंद्र शर्मा को सुनवा देना।
1: जरूर सुनवाएंगे।
2: और मेरे साथ आरती भारती स्वाति मिसेज कविता देवी।
1: हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्ते जी, मैं खजान सिंह जौहरीपुर से बोल रहा हूँ जी।
1: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: महेंद्र शर्मा जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
3: और कुछ नाम है जी?
1: जी,
3: खजान सिंह, रामवती, अजय कुमार, चंद्रकांता, आरव, मोहन, विद्यान।
1: हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: सुरेश चौहान जी बोल रहे हैं, नजमगढ़ से जी।
1: सुरेश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: काफी दिन हो गए महेंद्र शर्मा जी को नहीं सुना हमने।
1: जरूर सुनवाएंगे।
4: छावला से राजकुमारी जी है, बहुत बढ़िया मित्र है हमारे, वो भी सुनते हैं आपका प्रोग्राम। जेके टेलर जी दौलताबाद से, और जी विजय सिंह लखेरा जी खेड़ी तलवाना से, वो भी कान लगा के सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: जगदीश सिंडाड़िया बोल रहा जी, दाना निशान जिला भिवानी जी।
1: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: महेंद्र शर्मा को सुना देना जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
5: जो के भी नाम है जी।
1: जी,
5: राजवीर सिंडालिया, सतीश सिंडालिया, ऋतिक सिंडालिया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर महेंद्र शर्मा से ये रागनी, किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, सचिव भाई राम राम,
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: जितंदर सोलंकी, गांव करकोरा, महाराजपुर जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी।
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज सुनना चाहेंगे जी बल्ले कल्याण को।
0: जरूर सुनवाएंगे
1: नाम बोलूंगा जी,
0: जी।
1: लकी संजना अंशिका टिंकल कन्नू प्राची वीर सोलंकी, पिताजी हैं श्री मेघराज सिंह सोलंकी, माता जी हैं श्रीमती निर्मला देवी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार,
1: हेलो,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
1: अमित तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: और सुना दीजिए बल्ले कल्याण को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: मेरे पिताजी हरिपाल सिंह जी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार,
2: नमस्ते,
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: बिल्लू बोल रहा हूँ।
0: बिल्लू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: बल्ले कल्याण जी भी सुना दिया,
0: जरूर सुनवाएंगे
2: नाम नोट करो सर
0: जी।
2: जैसे भाई, बाबू भाई, हमारे नाती शांता जी, तमन्ना जी, कसंदर ठेकेदार, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार,
3: हेलो ग्राम संसार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: विनोद कुमार प्रजापत बोल रहा हूँ जी, गांव झोजू कला से।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज जी बल्ले कल्याण जी की आवाज में सुनवा दो।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: बल्ले कल्याण जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
4: जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मोटा बादलपुर, मास्टर ब्रह्म सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर बल्ले कल्याण से ये रागनी।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731, और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। 7 बजने को है।

0: क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरो स्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानी रुविदे निमागागी नादी रुविदे नाना गागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफेई को पहले गेम में हरा दिया। दूसरे गेम में चेन यूफेई की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके

0: साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, खेती और हमारे जो पशु हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, और जो हमारे किसान बहन भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, और खेती से हमें जो उत्पादन है वो अपने समय पर ही मिलता है, जब यानी कि 3 महीने बाद कोई फसल आ रही है, 6 महीने बाद आ रही है, लेकिन पशुओं से कुछ ना कुछ उत्पाद हमें मिलता रहता है, और पशुओं का जो गोबर है वो बड़ा ही अच्छी खाद के रूप में खेतों को ताकत देता है। दुधारू पशु हमारे किसान भाइयों की आय को दोगुना करने और रोजगार अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, और ये जो मौसम है वो वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, तो खासकर इस मौसम में तो पशुओं की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तरह की बीमारियां इस मौसम में फैलती हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, गर्मी और बारिश का प्रकोप बढ़ते ही पशुपालकों के सामने मवेशियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन जाती है, और बरसात के मौसम में मुंह पका, खुर पका, गलघोटू जैसी बीमारियां ज्यादा होने की संभावना रहती है। गाय और भैंसों को खुरपका रोग काफी प्रभावित करता है। ये काफी तेजी से फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। इससे प्रभावित होने वाले पशुओं में तेज बुखार के साथ साथ मुंह और खुरों पर छाले और घाव बन जाते हैं, और रोग के असर के कारण कुछ पशु स्थायी रूप से लंगड़े भी हो सकते हैं, जिस कारण पशुपालक भाइयों को आर्थिक हानि भी हो सकती है।
0: बिल्कुल, तो इस वर्षा ऋतु के मौसम में हमारे जो पशुपालक भाई हैं किस तरह से अपने पशुओं की जो पशुशाला है उसका प्रबंधन करें, चारे का और खान पान का कैसे प्रबंधन करें, साफ सफाई का कैसे ध्यान रखें, और जो बाह्य परजीवी हैं या अंतः परजीवी हैं उनके कारण जो बीमारियां होती हैं उनसे कैसे अपने पशुओं का बचाव करें, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको जानना हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। आप पशु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में। तो डॉक्टर राजेश कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार सर।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे वर्षा ऋतु चल रही है, ऐसे में गर्मी है, उमस है, हम तो अपनी बात कह सकते हैं लेकिन पशु अपनी बात नहीं कह सकते, तो गर्मी से, उमस से अपने पशुओं का हमारे जो पशुपालक भाई है कैसे बचाव करें?
2: मानसून के दौर में मनुष्यों की तरह पशुओं में भी बहुत सारे संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसमें मुख्यतया गलघोटू रोग है, लंगड़ा बुखार है, अपच है, आफरा है, न्यूमोनिया है, और इसके साथ ही अंतः और बाह्य परजीवियों से होने वाले संक्रमण है। बेहतर आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन और पशुओं में समय से टीकाकरण और कृमिनाशक दवाइयों के उपयोग से पशुओं में होने वाले इन संक्रमण से पशुओं को बचाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब हम सबसे पहले बात करते हैं पशुशाला प्रबंधन की, क्योंकि इसका प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए पशुशाला है, किसी की टपक रही है, कीचड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पशुओं को दिक्कत होती है और बीमारियों को ये सब आकर्षित करते हैं, तो किस तरह का पशुशाला का प्रबंधन होना चाहिए ताकि पशु जो है वो आराम से रहे?
2: बारिश के पहले पशुओं की जो पशुशाला की छत है इसकी हमें मरम्मत कर देनी चाहिए, जिससे कि बरसात का पानी है वो पशुओं की पशुशाला में ना जाए, क्योंकि जब बरसात का पानी पशुओं की पशुशाला में जाएगा तो वहां पे बहुत सारे पशुओं को, मुख्यतः हम बात करते हैं जो चीचड़ियां हैं, कलनी है, ये रोग पशुओं में ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां

0: नमी रहेगी। इसके साथ ही पशुओं के अंदर वहां पशुशाला में नमी ज्यादा होने के कारण वहां निमोनिया जैसी बीमारी है उसकी भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए पशुशाला की जो खिड़कियां हैं उनको खुली रखें और गर्मी और उमस से बचने के लिए हो सके वहां तक पंखे या पशुओं के लिए कूलर की व्यवस्था पशुशाला में करनी चाहिए। इसके साथ ही पशुशाला की साफ सफाई का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण वहां मच्छर या अन्य कोई संक्रमण नहीं हो। हमारे यहाँ जो चूना आता है, कली जिसको बोलते हैं, सफेदी बोलते हैं, उसका भी पशुशाला में छिड़काव कर सकते हैं या फिर जहां हम पशु को रख रहे हैं ब्रश की सहायता से वहां पे चूने की हर 3 से 4 दिन के अंदर पुताई कर सकते हैं। इसी के साथ पशुशाला में जो पशु के मलमूत्र की जो निकासी है उसका भी उचित प्रबंधन होना चाहिए और हो सके तो पशुशाला के अंदर दिन में एक बार, जैसे हम हमारे घरों में फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से वहाँ पशुशाला में फिनाइल का प्रयोग करें जिसके कारण वहाँ पे इन परजीवी जो कोई भी इन्फेक्शन है वो पशुओं के अंदर ना रहे। और इसके साथ इस मौसम में ज्यादा शारीरिक थकावट भी नहीं देनी चाहिए और बार बार पशुओं को कोशिश करनी चाहिए कि धूप से बचाया जा सके, क्योंकि आप क्या है कि हुमस का टाइम है और पशुओं को अगर बार बार आप धूप में ले जाओगे तो उसके कारण जो उनका शरीर का शारीरिक तापमान है वो गड़बड़ होगा जिसके कारण उनके अंदर इन्फेक्शन या संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
1: गांव में देखते हैं कि जो पशु हैं वो कीचड़ में बैठे हुए हैं, बारिश भी हो रही है, कीचड़ में अपने लथपथ हुए हैं, तो क्या कुछ बीमारी होने की संभावना रहती है?
0: अगर हमारे पशु जैसे कीचड़ में बैठे हुए हैं उससे जो सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी है, जैसे दुधारू पशुओं की हम बात करते हैं तो उनके अंदर जो थनेला रोग होता है जिसको मेस्टाइटिस भी बोलते हैं, उस रोग की सबसे ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि थन है, थन के वहां कीचड़ लगेगा तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो उनके कारण थनों में संक्रमण हो जाएगा और पशुओं के अंदर थनेला रोग होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा इसमें बढ़ेगी। इसके साथ पशु ज्यादा देर तक अगर नमी में रहेगा तो उनकी जो त्वचा है वो नम पड़ जाएगी और नम पड़ने के कारण वहां पे जो आपके चीचड़ियों का प्रभाव है या किलनी है, पिस्सू जिनको कहें, उनका भी संक्रमण वहां पे बढ़ जाएगा। और इसके साथ पशुओं के अंदर जो फफूंदी जनित जो रोग होते हैं वो भी, उनकी संभावना भी पशुओं के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: सब चीचड़ी की जो समस्या है वो तो बनी रहती है पशुओं में, तो इससे कैसे निजात पा सकते हैं हमारे जो पशुपालक भाई हैं?
0: चीचड़ियों की समस्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जो पशुशाला है उसको सूखा रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा नमी पशुशाला में देखने को मिलेगी या रहेगी चीचड़ियों का प्रभाव उतना ही ज्यादा रहेगा। और मैं पशुपालक भाइयों को बता दूं कि अगर चीचड़ियों का प्रभाव पशुओं में ज्यादा बढ़ता है तो इससे इस समय को देखते हुए पशुओं के अंदर जो दो महत्वपूर्ण बीमारियां आती हैं, बब्बेसियोसिस और थिलेरियोसिस जो प्रोटोजोअन जनित बीमारियां होती हैं, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो किसान भाइयों को कोशिश ये करनी चाहिए कि चीचड़ियों से बचाव के लिए एक तो पशुशाला को सूखी रखें, चूने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और इसके साथ ही साथ जहां भी पशु आपका बैठ रहा है या जो पशु का शरीर सीधा जमीन से नजदीक टच में आ रहा है वहां पे राख और मेलाथियन जो पाउडर आता है उस पाउडर का भी इस्तेमाल करके पशु के अंदर इस समस्या को रोका जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक और बात हमने देखी है कि जैसे पशु किसी नाली के सहारे अक्सर गांव में बंधे ही रहते हैं, तो जो पानी होता है नाली का बड़ी मधुरता के साथ पशु पीते हैं, तो कितना नुकसानदायक हो सकता है वो
0: इस
1: पानी?
0: समय सर इस तरह का जो भी पानी है वो पशु को नहीं पिलाना चाहिए। कारण है कि जो पानी हम उसके अंदर पिलाते हैं मौसम के कारण जो पैरासाइटिक जो लोड कहें हम, इन्फेक्शन कहें, वो पानी के अंदर ज्यादा रहता है। तो कोशिश ये करना चाहिए इस मौसम के दौरान साफ जो पानी हो हमारे घर में या जहां आप पशु को, जैसे आपके घर में 5-7 पशु हैं और आपने छोटी हौद या कुछ बना रखा है पानी पिलाने के लिए, तो वहां भी हर दूसरे तीसरे दिन उस पानी को निकालना चाहिए और जो हौदिया है आपकी पशु की उसमें चूने की आपको पुताई करें और साथ ही साथ चूना उसके अंदर डाल के रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा संभावना है कि पशु के अंदर ये लोड बढ़ जाएगा पैरासाइटिक का जिसके कारण पशुओं के अंदर इंडाइजेशन जिसको हम अपच बोलते हैं या दस्त या डायरिया जैसी समस्या पशु के अंदर देखने को मिलेगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, खान पान की बात करें तो किस तरह से हमारे जो पशुपालक भाई हैं खान पान का, चारे का प्रबंधन पशुओं के लिए करें?
0: खास तौर पे पशुपालकों को इस मौसम में क्या है कि नमी ज्यादा है, तो नमी ज्यादा है और हमारे पास हरे चारे की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, तो किसान भाइयों की ये कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा हो सके हम पशु को हरा चारा ही खिलाएं। अगर ज्यादा से ज्यादा आप पशु को हरा चारा खिलाओगे उसमें नमी की अधिकता होने के कारण क्या रहता है, पशु के अंदर डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी और पशु के अंदर डायरिया हो जाएगा। तो कोशिश पशुपालक भाइयों को ये करनी चाहिए कि जो भी पशुपालक भाई हैं वो हरा चारे खिला रहे हैं उसके साथ कम से कम उनको एक तसली या एक

0: राती, या हम ये कहें कि 2 से 3 किलो उनको सूखा चारा, जो भी आपके पास उपलब्ध है, गेहूं का भूसा है, वो आप पशु को जरूर दें, जिसके कारण क्या है कि पशु ऊपर से पानी पिएगा, और जब पशु आपका ऊपर से पानी पिएगा तो आपका स्वस्थ रहेगा, और उसके अंदर जो डाइजेशन से संबंधित जो होने वाली बीमारियां हैं उनका पशु में बचाव होगा।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम हरे चारे की बात करें इन दिनों में, तो कितनी साफ सफाई की जरूरत है। हमने देखा कि कभी मक्का है, बाजरा है या ज्वार है, तो कभी हमारे किसान भाई जाते हैं तो कभी वो पूरा पेड़ी उखड़ के आ जाए, साथ में मिट्टी भी आ जाती है, तो उस समय तो उसे सफाई की जरूरत होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: पशुपालकों को बताना चाहूँगा कि जब हम कभी भी हरा चारा पशु को खिलाते हैं, खास करके इस मौसम की हम बात कर रहे हैं, तो कभी भी हमें जो नीचे जमीन का हिस्सा है, मिट्टी जिसमें लगी है, उसको पशु को नहीं खिलाना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए किसान भाइयों को कि जो आपने हरा चारा खिलाया है उसको कुट्टी करके खिलाएं, और कुट्टी करने के बाद भी उसको थोड़ा कोशिश करें 1 से 2 घंटे उसको थोड़ा सा धूप में सुखा लें। कारण क्या रहता है कि इस टाइम जो भी हमारा हरा चारा है, उस हरे चारे के ऊपर नमी अधिकता होने के कारण जो हमारे पैरासाइट्स हैं उनके अंडों की संभावना उनके ऊपर ज्यादा बढ़ जाती है। अंडों की संभावनाएं बढ़ने के कारण वह जब हम पशु को खिलाएंगे वही हरा चारा, तो पशुओं के अंदर उनके संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।
1: बाह परजीवी के बारे में तो हमने बात की, जैसे आपने बताया जो चिचिड़ी के बारे में बताया था, अब अंतः परजीवी की बात कर ले तो कौन कौन से रोग बारिश के मौसम में खासकर हो जाते हैं?
0: अंतः परजीवी का ही सर जैसे ये बताया, सबसे जो इस टाइम में महत्वपूर्ण जो रोग है इसके अंदर वो होता है सर अपच का, इनडाइजेशन का या डायरिया होने का। तो इससे पशु को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही मौसम मानसून का शुरू होता है हमें हमारे पशु को डीवर्मर जिसको बोलते हैं, कृमिनाशक जो होती है, वो पशु को नियमित अंतराल पे देनी चाहिए। इसका टाइम होता है हर 3-3 महीने के ऊपर पशु को पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। कुछ पशुपालक भाइयों को इस चीज का भ्रम रहता है कि हमारा पशु गाभिन है तो हम ये पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देंगे क्योंकि उससे पशु में गर्भपात हो जाएगा। ऐसा मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, कुछ नहीं होता। इसमें 2 साल्ट होते हैं, एक होता है एल्बेंडाजोल और एक होता है फेनबेंडाजोल। अगर किसी किसान भाई को डर लगता है कि मेरा पशु गाभिन है तो वो किसान भाई अपने पशु को फेनबेंडाजोल बोलस दे सकता है, वो पूर्णतया सेफ है, जिससे उसमें पशु में किसी प्रकार की कोई संभावनाएं देखने को नहीं मिलेगी।
1: डॉक्टर साहब, वर्षा ऋतु में खास करके मुंहपका, खुरपका ये रोग भी पशुओं में होते हैं, तो इन बीमारियों से हमारे जो पशुपालक भाई अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं?
0: मुंह पक्का खुर पक्का तो है ही है, इसके साथ में इस मौसम में खास तौर पे हम बात करें तो लंगड़ा बुखार और गलघोंटू बीमारियां होती हैं, इनका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। तो इनका सर समय पूर्व जो टीकाकरण भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय समय पे करवाया जाता है, तो इसमें जून जुलाई के महीने में जो भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा एक संयुक्त तत्वाधान में टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, जिसमें प्रत्येक पशुपालक को अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। और जो रही बात खुरपका मुंहपका बीमारी है, इसका साल में 2 बार टीकाकरण सरकार द्वारा किया जाता है, एक मार्च से अप्रैल के महीने में और एक सितंबर से अक्टूबर के महीने में। अगर किसी किसान भाई ने नहीं करवाया है इन तीनों बीमारियों का टीकाकरण, तो वो अपने नजदीकी जो भी पशु चिकित्सालय हैं वहां जाकर अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि इन बीमारियों से बचाव सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही है। जो भी हमारे यहाँ पशु के अंदर जो समस्याएं आई हैं, जो बीमारी हो रही हैं, उसमें जैसे साधारणतः हम बात करते हैं कि जैसे निमोनिया इस टाइम बहुत कॉमन बीमारी है, या पाचन की बीमारी है, तो पाचन की बीमारी का तो सर सबसे आसान घरेलू ये है कि आप अपने पशु को कृमिनाशक की दवाई दें। और जो निमोनिया बीमारी जो मैंने अभी जिसका जिक्र करा, वो आपके खास तौर पे जब हमारे पशुशाला है पशु की, उसके आवास को हम अच्छा नहीं रखेंगे, उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहेगी, तो उसके अंदर ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसमें पशु पालक अपने घर से ही अपने स्तर से एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं, जिस भी पशु के अंदर लार टपक रही हो या नाक से पानी आ रहा हो, उसका तापमान बढ़ा हुआ, उसने खाना पीना छोड़ दिया हो, तो उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, एक कटोरी के अंदर मुट्ठी भर अजवाइन के साथ में थोड़ी सी चीनी मिला करके और उसकी पशु को धुनी देंगे, तो ये घरेलू नुस्खा है जिससे उसके पशु के अंदर ये बीमारी है निमोनिया की, उसके अंदर पशु को थोड़ा आराम मिलेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि जो पशुपालक अपने पशुओं को खासकर वर्षा ऋतु में बाहर चराने के लिए लेके जाते हैं, तो उनको क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है?
0: मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि इस मौसम के अंदर आप जब कभी भी पशु को बाहर चराने लेके जाओ, तो थोड़ा कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि सुबह के टाइम में हम नहीं लेके जाएं। जब थोड़ा धूप निकल जाए या टेम्परेचर बढ़ जाता है तभी

0: हमें हमारे पशुओं को बाहर चराने के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह क्या है, जब नमी का मौसम रहता है तो उसके अंदर जो भी लार्वा है या उनके प्यूपा है उनकी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, तो उसमें पशु का इन्फेक्शन बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैं पशुपालकों को ये संदेश देना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप अगर अपने पशु को बाहर चराने की आदत रख रहे हैं तो आप अपने पशु का आज ही, अगर करवाया है तो ठीक है, नहीं करवाया है तो आज ही आप अपने पशु को कृमिनाशक दवाई दें, पेट के कीड़ों की दवाई दें, उसके बाद आप अपने पशु को बाहर चराने लेके जाएं।
1: बिल्कुल डॉक्टर राजेश कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को, और ज़रूर वो आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से अपने पशुओं का प्रबंधन करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं ब्रजेश।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ब्रजेश से ये उपदेश।
1: नीलम बहन, भारत सरकार घरेलू स्तर पर सोयाबीन जैसे तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन चला रही है। ये योजना वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक लागू है, जिसका लक्ष्य खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
0: बिल्कुल शशि भाई, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का उद्देश्य तिलहन फसलों का उत्पादन 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन तक करना है और साथ ही खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को मौजूदा 57% से घटाकर 28% तक करना है और इसके अलावा जीनोम एडिटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले और अधिक तेल देने वाले सोयाबीन के बीज किसानों तक पहुंचाना है।
1: बिल्कुल, तो नीलम बहन, ये तो हमारे किसान बहन भाइयों ने जाना राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन सोयाबीन के बारे में। और देखिए, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर और इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना की जानकारी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोकगीत सुनवाए जाएंगे। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की, लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7:30 हुए हैं और आप सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने एक गज़ल सुनी। इसी के साथ गज़लों का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। 7:45 होने को आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली सरकार का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 2800 AC लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस शामिल करने का

0: निर्णय। दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त, स्वप्रमाणन प्रणाली लागू होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी मामले में पंजाबी बाग नांगलोई के उप पंजीयक को गिरफ्तार किया। दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ई श्रीधरन को वडोदरा के गतिशक्ति विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल के मद्देनजर दिल्ली के रेस्तरां और कैफे सहित अन्य प्रतिष्ठान सप्ताहांत सवेरे 4 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और मजबूत बनाने के लिए 2800 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ये शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली बस अगले वर्ष अप्रैल से संचालित होंगी।
1: इन नई बसों की श्रेणी में 1400 बसें 12 मीटर और इतनी ही बसें 9 मीटर लंबी होंगी। वहीं 12 मीटर वाली प्रत्येक बस पर अधिकतम 35 लाख रुपए और 9 मीटर वाली प्रत्येक बस पर अधिकतम 25 लाख रुपए की सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2028-29 तक दिल्ली के सार्वजनिक बस बेड़े को लगभग 14,000 बसों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। बसों के बेहतर संचालन के लिए IIT दिल्ली के सहयोग से रूटों का पुनर्गठन किया जाएगा। वहीं बस मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों के माध्यम से संचालन और टिकट व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 10 में आयोजित कार्यक्रम में बैटरी से चलने वाले 135 स्वच्छता वाहनों को रवाना किया। ये इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली नगर निगम की रोहिणी नरेला सिविल लाइन्स और केशवपुरम क्षेत्र के स्वच्छता बेड़े को सुदृढ़ करेंगे। श्री वाही ने कहा कि निगम के स्वच्छता बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना स्वच्छ और हरित दिल्ली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये पहल हर घर से अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम साबित होगी। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया सरल बनाने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र व्यवस्था समाप्त कर दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये सुधार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र की जगह स्वप्रमाणन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। निजी विद्यालयों की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र की अनिवार्यता में भी बड़ी छूट दी गई है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये सुधार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है। अब विद्यालयों को मान्यता किसी क्षेत्र में विद्यालय की आवश्यकता के बजाय बुनियादी ढांचे, सुरक्षा मानकों, योग्य शिक्षकों और छात्र शिक्षक अनुपात जैसे मानकों के आधार पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना तथा अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समाप्त कर पारदर्शी और सरल व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में आज पंजाबी बाग नांगलोई के उप पंजीयक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार संपत्ति की गिफ्ट डीड निष्पादित करने के बदले उप पंजीयक ने शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। CBI ने दोनों आरोपियों को 80,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आगे की जाँच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत वाहन चोरी मामले में 11 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 किशोर भी शामिल हैं। पुलिस ने 75 दोपहिया और 1 चारपहिया वाहन बरामद किया। पुलिस के अनुसार बरामद वाहनों में 23 वाहन आरोपियों के कब्जे से, 42 वाहन आवासीय क्षेत्रों और लावारिस हालत में तथा 11 वाहन पार्किंग स्थलों से बरामद किए गए। ऑपरेशन चक्र का उद्देश्य वाहन चोरी की श्रृंखला को तोड़ना और ऐसे गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई कर राजधानी में ऐसे अपराध पर अंकुश लगाना है। अपराध शाखा ने चौथे पुश्ता में एक खाली मकान से अवैध शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान 85 कार्टन शराब बरामद किए गए, जिनमें से 68 कार्टन पर केवल चंडीगढ़ में बेचने के लिए और 17 कार्टन पर केवल हरियाणा में बेचने का लेबल लगा था। पुलिस अवैध शराब के भंडारण और आपूर्ति में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के

0: प्रयास में जुटी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज भारत मंडपम में मानव एआई साक्षरता मिशन नेतृत्व सम्मेलन में भाग लिया। श्री सूद ने कहा कि कार्यक्रम में एआई आधारित शिक्षा, डिजिटल कौशल और भविष्य की शिक्षण व्यवस्था पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एआई तैयार भारत की शुरुआत एआई तैयार कक्षाओं से होगी।
1: आज हम एक और बड़े बदलाव के दरवाजे पर खड़े हैं। किसवीं सदी की अगली लिटरेसी एआई लिटरेसी है। आज सवाल यह नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, एआई तो हमारे जीवन का हिस्सा बन ही चुका है। सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चे एआई का केवल इस्तेमाल करेंगे या उसे समझकर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्या वे एआई के केवल कंज्यूमर्स बनेंगे या एआई क्रिएटर्स, इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनेंगे।
0: श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हर विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर सके। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश राहिब सिंह ने आज पूर्वी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने पटपड़गंज हाईवे और झिलमिल अंडरपास का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सुनियोजित कार्य योजना, विभागों के बेहतर समन्वय और लगातार निगरानी के कारण आज क्षेत्र की जल भराव की समस्या समाप्त हो गई है। उन्होंने लक्ष्मीनगर चौराहे पर शीघ्र ही एक आधुनिक स्काई वॉक के निर्माण की घोषणा की। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार जल निकासी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रीकास्ट ड्रेन तकनीक का विस्तार कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय वरुणालय में आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण, मातृत्व के सम्मान और भावी पीढ़ियों के स्वच्छ तथा हरित पर्यावरण सुनिश्चित करने का जन आंदोलन है। उन्होंने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि अब तक 6,885 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा आज राजघाट पर धरने में शामिल हुए। ये धरना कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा की टीवी बहस के दौरान महर्षि भगवान वाल्मीकि के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में किया गया। वाल्मीकि धर्म सम्मान रक्षा समिति ने धरने का आयोजन किया था। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ टिप्पणी करोड़ों लोगों की आस्था और देश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि और दलित समाज को सम्मान तथा समान अवसर का अधिकार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि स्वस्थ समाज मजबूत राष्ट्र की नींव है। नई दिल्ली में आज भारतीय चिकित्सा संघ के पुरस्कार समारोह में श्री सिंह ने कहा कि चिकित्सा पेशेवर न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं बल्कि देश की विकास यात्रा को भी मजबूत कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि डॉक्टर समर्पण और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का सम्मान राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना का सम्मान करना है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा

0: कहा है कि शिकायत निवारण का दायरा शिकायतों के निपटारे तक ही सीमित नहीं होना चाहिए तथा पेंशन भोगियों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशन संबंधी विवादों का समाधान प्रशासनिक तौर पर किया जाना चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को अदालत जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। उन्होंने आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने कई नागरिक केंद्रित सुधार किए हैं। विभाग ने पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के जरिए डिजिटलीकृत पेंशन सेवाएं शुरू की हैं। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने आज नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए विशेष टिकट जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट यात्रा के कुल 127 मामले पकड़े गए और 1,08,000 से अधिक रुपए का जुर्माना वसूला गया। दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमण त्रिपाठी ने यात्रियों से वैध टिकट लेकर यात्रा करने और टिकट जांच अभियान में रेलवे कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के प्रथम प्रबंध निदेशक डॉक्टर ई श्रीधरन को वडोदरा के गतिशक्ति विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रदान किया। ये डॉक्टर श्रीधरन की 23वीं मानद डॉक्टरेट उपाधि है। डॉक्टर श्रीधरन को देश में आधुनिक मेट्रो रेल प्रणाली के विकास और सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानिरुविदे नेमागागी नादिरुविदे नानागागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अर्जेंटीना और स्पेन के बीच कल रात खेले जाने वाले फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल मुकाबले के मद्देनजर रेस्तरां, कैफे और अन्य प्रतिष्ठानों को सप्ताहांत सवेरे 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा इससे फुटबॉल प्रेमियों को ऐतिहासिक मुकाबले का एक साथ आनंद लेने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक खेली जाएगी। इस अवसर पर भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर उमस रही। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 2,800 एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस शामिल करने का निर्णय। दिल्ली में निजी विद्यालयों को मान्यता के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त। स्व प्रमाणन प्रणाली लागू होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी मामले में पंजाबी बाग नागलोई के उप पंजीयक को गिरफ्तार किया। दिल्ली मेट्रो के प्रथम प्रबंध निदेशक डॉक्टर ई श्रीधरन को वडोदरा के गतिशक्ति विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम मुशायरा का।
2: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन,

0: की मुझे तरगीब जो देता है समीत,
1: डूबने की मुझे
0: डूबने
1: तरगीब जो
0: की,
1: देता है समीत।
0: जी डूबने की मुझे तरगीब जो देता है समीत, जब भी हंसता है भंवर गाल में आ जाता
1: वाह
0: है,
1: वाह वाह वाह
0: जब भी हंसता है भंवर
1: वाह
0: गाल में
1: वाह,
0: आ जाता है, जैसे सुर बन के कोई ताल में आ जाता है,
1: क्या कहना, क्या
0: वो भी
1: खूबसूरत
0: मिलने
1: गजल,
0: मुझे
1: वाह वाह वाह।
0: ननिहाल में आ जाता है। दूसरी गजल का मतलब देखिए, ये भी ताजी गजल है।
1: जी
0: हकीकत मुनहदिम कर दे भी तो अक्सर बनाता हूं,
1: क्या अच्छा मिश्रा, वाह।
0: हकीकत मुनहदिम कर दे भी
1: तो
0: तो
1: अक्सर
0: अक्सर बनाता हूं, मैं उंगली से हवा में खुशनुमा एक घर बनाता
1: अरे
0: हूं।
1: वाह वाह वाह
0: वाह,
1: वाह वाह वाह
0: क्या
1: वाह,
0: कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत मुनहदिम कर दे भी तो अक्सर बनाता हूं,
1: वाह वाह वाह
0: मैं
1: वाह
0: उंगली से हवा में खुशनुमा एक घर बनाता हूं।
1: वाह वाह वाह,
0: और ये शेर देखिए कि मुझे रगबत नहीं गारतगरी से,
1: हाँ,
0: पर हिफाजत को,
1: मुझे रगबत नहीं गारतगरी से पर हिफाजत
0: मुझे
1: को।
0: रगबत नहीं गारतगरी से पर हिफाजत को, कबीले की हसीनों के लिए खंजर बनाता
1: हाय हाय,
0: हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: मुझे रगबत नहीं गारतगरी से पर हिफाजत को, कबीले की हसीनों के लिए खंजर बनाता हूँ। और ये शेर देखिए कि कड़ी धूपों का जब भी हो सफर दरकार, तो पहले कड़ी
1: वाह
0: धूपों का जब भी हो सफर दरकार, तो पहले तसव्वुर में सियाह एक अब्र की चादर बनाता
1: वाह
0: हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: कड़ी धूपों का जब भी हो सफर दरकार, तो पहले
1: वाह वाह वाह वाह,
0: तसव्वुर में सियाह एक अब्र की चादर बनाता हूँ। और ये शेर बतौर खास देखिए बड़ी
1: इरशाद।
0: नज़ाकत लिए हुए है, कभी रंगीन तर लम्हों की याद उसको दिलानी हो,
1: आहा, वाह, कभी रंगीन तर लम्हों की याद उसको
0: कभी
1: दिलानी हो।
0: रंगीन तर लम्हों की याद उसको दिलानी हो, तो खत के हाशिए में मोर का एक पर
1: पर
0: बनाता
1: मनाता हूँ,
0: हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: बहुत
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया। कभी रंगीन तर
1: क्या तस्वीर दिखा
0: लम्हों की
1: पाता
0: याद उसको दिलानी हो,
1: है, वाह
0: इनायत
1: वाह
0: है
1: वाह।
0: आपकी, तो खत के हाशिए में मोर का एक पर बनाता हूँ। और ये शेर के रुलाती हैं मुझे पगडंडियां खूब ओस आलूदा,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: रुलाती हैं मुझे पगडंडियां
1: पगडंडिया,
0: खूब ओस आलूदा, वरक पर जब कलम से गांव का मंजर बनाता
1: वाह वाह
0: हूँ,
1: वाह वाह,
0: वरक पर जब कलम से
1: गांव का
0: गांव का
1: मंजर,
0: मंजर बनाता हूँ। और ये शेर के मेरा ईमा है खाकी जिस्म में जां भरने वाले पर,
1: मेरा ईमा है,
0: मेरा ईमा है खाकी जिस्म में जां भरने वाले पर,
1: वाह,
0: सो पैकर मोम के घड़ घड़ के एक लश्कर
1: आए
0: बनाता
1: वाह वाह वाह
0: हूं।
1: वाह वाह
0: मेरा ईमा है खाली जिस्म में जां भरने वाले पर,
1: वाह वाह वाह
0: सो पैकर मोम के घड़ घड़ के एक लश्कर बनाता हूं।
1: वाह,
0: और मक्ता देखिए कि समीत उसको कोई समझे तो समझे आजरी, लेकिन
1: क्या कहना, समीत उसको कोई समझे तो समझे आजरी,
0: आजरी
1: लेकिन
0: समीत उसको कोई समझे तो समझे आजरी, लेकिन
1: वाह
0: मैं हर्फो लफ्ज से एक खूब रू पैकर बनाता हूं।
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह वाह
0: कहना,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: समीत इसको कोई समझे तो समझे आजरी, लेकिन
1: बहुत वाह वाह वाह
0: मैं
1: वाह
0: हर्फो लफ्ज से
1: वाह
0: एक
1: वाह वाह वाह
0: खूब रू पैकर बनाता हूं,
1: वाह
0: और
1: वाह वाह
0: हकीकत मुनहदम कर दे भी तो अक्सर बनाता हूं,
1: वाह
0: मैं उंगली से हवा में खुशनुमा एक घर बनाता हूं। क्या
1: वाह वाह
0: कहना,
1: वाह। हज़रात गिरामी, ख्वाजा गुलाम उस्सकलैन समीत साहब को आप सुन रहे थे, नागपुर से आपका ताल्लुक़ है, बहुत संजीदा हो गए हैं आप, मैं चाहता हूँ कि इस संजीदगी को थोड़ी देर आपकी मुस्कुराहट में तब्दील करूँ, और वैसे भी आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं इस तरह का एक शायर आपसे मिलाने जा रहा हूँ जिसका लहजा कुछ इस तरह का है कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ,
0: क्या बात है,
1: मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। ये एक तंजिया और मजाहिया शायर का हौसला हो सकता है। आइए थोड़ी देर तंजो जराफत की शायरी सुनते हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश के एक अदबी और तहजीबी शहर देवबंद से आने वाले एक मेहमान शायर, जनाबे जहाज देवबंदी से, जनाबे जहाज देवबंदी
0: चार मिसरे मैं अपने तारुफ में बढ़ूंगा।
1: जी।
0: फासले
2: सब कसम मिटा डालूं।
1: हाँ,

0: फासले सब के सब मिटा डालूं,
1: फासले सब के सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं।
2: ओहो
1: वाह, फासले सब के सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं और ले के उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं।
2: वाह वाह वाह वाह, भाई जहाज
1: ले के उड़ जाऊं सब हसीनों को,
2: क्या कहना,
1: काश ऐसा जहाज हो जाऊं।
2: वाह वाह वाह।
1: और चार मिसरे समाप्त करें कि लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में।
2: अच्छा वाह वाह,
1: लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में, नज़मों में मजा है ना कोई लुत्फ गजल में, नज़मों में मजा है ना कोई लुत्फ गजल में, और किस तरह करूं तुझसे मैं इजहार मोहब्बत, अब्बा तेरे डंडा लिए फिरते हैं बगल में।
2: अरे वाह,
1: किस तरह करूं तुझसे मैं इजहार मोहब्बत, अब्बा तेरे डंडा लिए फिरते हैं बगल में। और चार मिसरे और समाप्त करने के, कटी उम्र जिनकी सितम ढाते ढाते,
2: कटी उम्र जिनकी सितम ढाते ढाते,
1: कटी उम्र जिनकी सितम ढाते ढाते, वो जब मर गए रिश्वतें खाते खाते, वो जब मर गए रिश्वतें खाते खाते, जनाजे पे सब यक जबा हो गए बोले, बड़ी देर की मेहरबा जाते जाते।
2: भाई जहाज क्या कहना,
1: बहुत शुक्रिया कि बड़ी देर की मेहरबा जाते जाते। और ये चार मिसरे समाप्त करें कि अब खुद ही अपने आप को समझा रहा हूँ मैं,
2: वाह अब खुद ही अपने आप को समझा रहा हूँ,
1: अब खुद ही अपने आप को समझा रहा हूँ मैं, कोई गुनाह करने से कतरा रहा हूँ।
2: वाह वाह वाह वाह।
1: और मस्जिद के पास जब से सुरैया ने घर लिया, मस्जिद के आसपास नजर आ रहा हूँ।
2: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह,
1: मस्जिद के पास जब से सुरैया ने घर लिया,
2: मस्जिद के आसपास,
1: मस्जिद के आसपास नजर आ रहा हूँ मैं।
2: वाह,
1: ये चार मिसरे ये भी जो समाप्त कर लें कि एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजे पन में मेरा हाल ऐसा हो लिया।
2: अच्छा,
1: हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहाँ तक धो
2: लिया, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहाँ तक धो लिया। अरे वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया। एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजे पन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। और ये चार मिसरे और समाप्त करें कि मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया।
2: अच्छा, मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया,
1: चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया।
2: अरे वाह वाह वाह,
1: मैं बच बचा के जेल से
2: आगे निकल गया,
1: चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया, और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं दो मिनट में रेल से आगे निकल
0: गया।
2: वाह वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया कि पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं दो मिनट में रेल से आगे निकल गया।
2: भाई वाह वाह।
1: और ये एक जो तस्वीर है
2: जी,
1: के मेरे अरमानों पे वो फेर गई है पानी।
2: अच्छा, मेरे अरमानों पर वो फेर गई है पानी,
1: आस मैंने भी लगा रखी थी शहनाई की।
2: अच्छा वाह वाह वाह,
1: मेरे अरमानों पे वो फेर गई है पानी।
2: अरे वाह,
1: आस मैंने भी लगा रखी थी शहनाई की, और मेरी महबूबा पड़ोसी को मेरे ले भागी, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की।
2: वाह वाह वाह,
1: बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और एक तजमीन और के, शेरवानी कभी और कोट कभी पहना है,
2: शेरवानी कभी और कोट कभी पहना है,
1: शेरवानी कभी और कोट कभी पहना है, एक दफा सलमा ने फिर भी ना इधर देखा है।
2: अच्छा,
1: एक दफा सलमा ने फिर भी ना
0: इधर देखा है,
1: और सैकड़ों मर्तबा भेंगे की रिहर्सल की है।
2: अच्छा,
1: जब कहीं जाके तुम्हें एक नजर देखा है।
2: वाह वाह वाह वाह,
1: देखिए आप आओ कर लें कोर्ट मेरी जय मेरी जाने गजल।
2: वाह,
1: आओ कर लें कोर्ट मेरी जय मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो।
2: अरे वाह,
1: और सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब, एकदम जुम्मन ने बोला और बाजी ठीक हो।
2: अरे वाह वाह,
1: शुक्रिया शुक्रिया,
2: क्या नफसियात आपने पेश की। वाह वाह,
1: आओ कर लें कोर्ट मेरी जय मेरी जाने गजल,
2: वाह,
1: इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो।
2: वाह,
1: और सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब,
2: क्या कहना,
1: एकदम जुम्मन ने बोला और बाजी ठीक हो।
2: वाह वाह वाह वाह,
1: एक गजल के दो चार शेर
2: अता करें।
1: शेर ये हुआ कि लहजे में कुछ मिठास न चेहरे पे नूर है।
2: अच्छा, लहजे में कुछ मिठास न चेहरे पे नूर है,
1: लहजे में कुछ मिठास न चेहरे पे नूर है, उस पर कमाल ये कि तकब्बुर में चूर है।
2: अरे वाह वाह वाह,
1: उस पर कमाल ये कि तकब्बुर में चूर है, और अल्लाह मेरी सातवीं शादी भी रुक गई।
2: अच्छा, अल्लाह मेरी

0: सातवीं शादी भी रुक गई,
1: अल्लाह मेरी सातवीं
0: सातवीं
1: शादी भी रुक गई,
0: माशा
1: अब क्या मेरे नसीब में जन्नत की हूर है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वा।
2: क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
1: अब क्या मेरे नसीब में जन्नत की हूर है।
0: बहुत अच्छा,
1: और
0: वाह वाह,
1: एक बार तू कहा था दरोगा को दोस्तों,
0: अच्छा
1: एक बार
0: तू
1: तू
0: कहा
1: कहा था दरोगा को दोस्तों, अब तक मेरी जबान पे बस जी हुजूर है।
0: अरे वाह वाह वाह,
2: क्या कह रहे,
1: अब तक
0: वाह
1: मेरी
0: वाह,
1: जबान पे बस जी
2: हुजूर है,
0: हुजूर है।
1: और मौसम खराब था जो गिरा आसमान से,
0: क्या कहना क्या कहना, वाह
1: मौसम खराब था जो गिरा आसमान से, इसमें कहां जहाज का कोई कसूर।
0: वाह
1: जी शुक्रिया।
0: ये जहाज साहब, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस मुस्कुराहट को और बढ़ाया जाए, और वैसे भी हमें मुस्कुराने के मौके बहुत कम मिलते हैं, और कुछ और आपकी मजाहिया शायरी सुनी जाए।
1: सुने आप चार मिसरे सुने, बुलंदियों की हदें पार करके दम लूंगा।
0: अरे वाह वाह वाह,
2: हौसले अभी,
1: बुलंदियों की हदें
0: पार करके दम,
1: पार करके दम लूंगा।
0: वाह,
1: इसीलिए तो तकल्लुफ जहाज रखा है।
0: वाह वाह वाह,
1: इसीलिए तो तकल्लुफ जहाज रखा है, और किसी ने एड़ियां चपलों समेत घिस दी हैं। किसी ने एड़ियां चपलों समेत घिस दी हैं, किसी को उसने फ्री में नवाज रखा।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: उसकी नवाजिश का काम।
1: बहुत शुक्रिया कि किसी ने एड़ियां चपलों समेत घिस दी हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: किसी को उसने फ्री में नवाज रखा है। और अब चार मिसरे सुने कि तमन्ना का प्याला भरा 50-50।
0: अरे वाह, तमन्ना का प्याला भरा 50-50,
1: तमन्ना का प्याला भरा 50-50, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50। और सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50, और मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत जताई पर,
0: अरे वाह,
1: मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत जताई पर, उसने किया था प्यार मगर झूठ मूठ का।
0: अरे क्या कहना, वाह वाह वाह,
1: उसने किया था प्यार मगर झूठ मूठ का, और पहले मेरी दुकान थी वो भी सुनार की, ठेला लगा रहा हूँ मगर फ्रूट का।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: पहले मेरी दुकान थी वो भी फ्रूट की,
0: वाह वाह वाह,
1: ठेला लगा रहा हूँ मगर अब फ्रूट का। एक ये जो तज़मीन है गजल,
0: जी जी जी,
1: समाप्त करें कि उसने हाथों को बहुत अपने मला बैठ गया।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: उसने हाथों को बहुत अपने मला
2: बैठ गया।
1: बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला बैठ गया।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: बद इलेक्शन में खड़ा था
0: तो भला बैठ गया,
1: तो भला बैठ गया, और आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के।
2: माशाल्लाह,
1: आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, ये अलग बात के जूते का तला बैठ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: ये अलग बात के जूते का तला
0: बैठ गया,
1: और मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा।
0: वाह वाह,
1: मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा,
0: क्या कहना,
1: इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: और इसमें एक शेर हुआ वाकई के, इतना भारी था सुरैया का जनाजा यारो,
0: क्या कहना, कहा क्या कहना,
1: इतना भारी था सुरैया का जनाजा यारो, जो भी दो चार कदम लेके चला
0: बैठ गया। वाह वाह वाह वाह,
1: जो भी दो चार कदम लेके चला
0: बैठ गया,
1: बैठ गया।
0: आजाद गिरामी, आप समाप्त कर रहे थे जनाब जहाज देवबंदी को। जहाज देवबंदी साहब अपनी तंजिया और मजाहिया शायरी से आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रहे थे, और आपको हंसने पर मजबूर कर रहे थे कि आप हंसे, आप खुश हों। तंजिया और मजाहिया शायरी का यही कमाल है कि इसमें शायर अपने आप को निशाना बनाता है, लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देता है। लेकिन अगर सामईन इकराम आप गौर करें, तो बहुत देर तक हंसने का जो नतीजा निकलता है वो ये होता है, जो भी बहुत देर तक हंसता है उसकी आंखें जो है वो कुछ ना कुछ नम हो जाती हैं। वैसे भी डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था कि अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभा दो, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। तो आप बहुत देर तक हंस लिए हैं, आप खुश हो लिए हैं। आइए थोड़ी सी संजीदा शायरी। मैं नदीम फर्रुख मेरा नाम है, अगर कुछ शेर आप मेरे भी सुन लेंगे और मुझे भी आपकी दुआएं मिल जाएंगी, इस उम्मीद के साथ मैं चंद शेर हासिल करता हूं। अर्ज करता हूं कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है,
1: वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है,
0: सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है।
1: क्या कहना,
0: मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर भी सुने कि जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इब्र

0: के लिए दो चार पागल भेज देता
1: क्या
0: है,
1: बात है, बहुत खूब,
0: वो इबरत के लिए
1: बहुत
0: दो चार पागल भेज
1: पागल
0: देता
1: भेज
0: है।
1: देता है, क्या कहें।
0: और ये शेर भी समाप्त करें कि हमारी आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं,
1: हमारी आज की
0: हमारी
1: जब
0: आज की
1: कोशिश
0: जब कोशिशें
1: नाकाम
0: नाकाम
1: होती
0: होती
1: है।
0: हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता
1: वाह
0: है,
1: बात है, क्या बहुत खूब,
0: हमें वो और एक और उम्मीद
1: उम्मीद
0: का
1: का
0: कल
1: कल
0: भेज
1: कल
0: देता
1: भेज
0: है।
1: देता है,
0: हमारी
1: हमारी
0: आज
1: कोशिश
0: की जब कोशिशें
1: नाकाम
0: नाकाम
1: होती
0: होती
1: है,
0: हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता
1: वाह
0: है।
1: बात है, बहुत खूब कह
0: और
1: रहे
0: एक
1: हैं
0: शेर में इस गजल का भूल रहा था, मुझे याद आया कि
1: जी।
0: जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं,
1: हो
0: जहां वाले उसे जब याद
1: याद
0: करना
1: करना
0: भूल
1: भूल
0: जाते
1: जाते हैं,
0: हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल
1: अरे
0: भेज
1: हलचल
0: देता
1: भेज
0: है।
1: देता है, क्या कहने,
0: जमीनों की
1: वाह
0: तहों में कोई हलचल
1: हलचल,
0: भेज
1: अरे
0: देता
1: बहुत बहुत
0: है।
1: खूबसूरत,
0: क्या
1: बहुत
0: कहना,
1: खूब,
0: जहां वाले उसे जब याद
1: याद
0: करना
1: करना
0: भूल
1: भूल
0: जाते
1: जाते
0: हैं,
1: हैं,
0: जमीनों की तहों में कोई हलचल
1: अरे
0: भेज देता
1: हलचल भेज
0: है।
1: देता है, क्या कहने,
0: जमीनों की तहों में कोई हलचल
1: हलचल
0: भेज
1: हलचल,
0: देता
1: बहुत बहुत
0: है,
1: खूब,
0: वो
1: हलचल
0: पथराई सी आंखों को भी काजल भेज
1: भेज
0: देता
1: देता
0: है,
1: है,
0: सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है।
1: बादल भेज, बहुत खूब
0: चार मिसरे और अर्ज करता हूं
1: जी,
0: कि कभी
1: अच्छा अच्छा
0: झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती,
1: कभी झूठे उसूलों की
0: कभी
1: तरफदारी,
0: झूठे उसूलों की
1: तरफदारी
0: तरफदारी
1: नहीं,
0: नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती।
1: अदाकारी नहीं,
0: अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है,
1: हाँ
0: मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी
1: हाँ
0: नहीं
1: क्या
0: होती।
1: कहने हैं भाई,
0: क्या
1: बहुत
0: कहना है,
1: खूब,
0: अमीरे शहर
1: वाह
0: बिकने पर बहुत
1: बहुत
0: मजबूर
1: मजबूर
0: करता
1: मजबूर
0: है,
1: करता है,
0: मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं
1: दरबारी नहीं,
0: होती। एक गजल के चंद शेर और अर्ज करता हूं, समाप्त करें। अर्ज करता हूं कि जब किसी से कोई लगाव न था,
1: जब
0: जब
1: किसी से
0: किसी
1: कोई
0: से
1: लगाव
0: कोई
1: न था,
0: लगाव न था, जहन पर इस कदर दबाव न था,
1: दबाव न था, क्या कहने,
0: जब किसी से कोई लगाव न था,
1: जहन पर, हाय
0: जहन पर इस कदर दबाव न
1: दबाव न
0: था।
1: था,
0: और ये शेर सुने कि आज चौपाल पर उदासी थी,
1: आज चौपाल पर उदासी थी,
0: आज चौपाल
1: चौपाल
0: पर उदासी
1: उदासी
0: थी,
1: थी,
0: बूढ़ा बरगद तो था अलाव न था।
1: हाय हाय
0: क्या
1: हाय
0: बात है,
1: हाय हाय, वाह वाह वाह,
0: आज चौपाल पर उदासी थी,
1: क्या काफी
0: गजल
1: इस्तेमाल कर
0: के
1: रहा है यार,
0: बूढ़ा
1: वाह वाह,
0: बरगद तो
1: स्किल्स
0: था,
1: बहुत अच्छे, वाह
0: बूढ़ा
1: वाह वाह,
0: बरगद तो
1: क्या
0: था,
1: कहने,
0: अलाव
1: क्या
0: न था,
1: गजल कह रहे
0: सालहा
1: हैं,
0: साल का ताल्लुक था, फिर भी जज्बात का जुड़ाव न
1: हाय
0: था।
1: हाय हाय हाय, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह,
0: सालहा साल का ताल्लुक था,
1: फिर भी
0: जुड़ाव का
1: जज्बात का
0: फिर भी
1: जुड़ाव,
0: जज्बात का जुड़ाव न था, जख्मी जख्मी थी रूह अंदर से,
1: वाह, जख्मी
0: जख्मी
1: जख्मी थी
0: जख्मी
1: रूह
0: थी
1: अंदर
0: रूह
1: से,
0: अंदर से, यूं बजाहिर तो कोई घाव न
1: घाव न
0: था,
1: था, क्या
0: वाह
1: कहने,
0: यूं
1: घाव
0: बजाहिर तो
1: तो
0: कोई
1: कोई
0: घाव
1: घाव न
0: न
1: था,
0: था, और ढेर होना ही था ये कसरे दिल, मुद्दतों से जो रख रखाव न
1: हाय हाय
0: था,
1: हाय हाय, क्या कहने भाई, क्या
0: ढेर
1: कहना,
0: होना ही था ये
1: वाह वाह
0: कसरे
1: वाह
0: दिल,
1: वाह भाई, क्या कहना, रख रखाव, वाह
0: मुद्दतों
1: वाह,
0: से जो रख
1: रख
0: रखाव न
1: रखाव,
0: था,
1: बहुत खूब, क्या कहने,
0: मुद्दतों से जो रख
1: रख
0: रखाव
1: रखाव
0: न
1: न था,
0: था। और मैं आपकी
1: वाह,
0: खिदमत में एक गजल की चंद शेर और अर्ज करता
1: इच्छा
0: हूं,
1: इच्छा इच्छा
0: मतलब
1: जी,
0: अर्ज करता हूं, समाप्त करें कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं,
1: कुछ इस तरह
0: कुछ
1: से
0: इस
1: तेरे
0: तरह
1: इश्क में
0: से
1: फना हो
0: तेरे
1: जाऊं,
0: इश्क में फना, हवा बनाऊं तुझे और मैं
1: मैं
0: दिया
1: दिया हो
0: हो
1: जाऊं, मैं
0: जाऊं,
1: दिया हो जाऊं, क्या
0: वाह वाह वाह
1: कहने,
0: वाह वाह,
1: क्या कहने,
0: कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं,
1: क्या हवा
0: हवा
1: बनाऊं तुझे
0: बनाऊं तुझे और
1: और मैं
0: मैं दिया
1: दिया
0: हो
1: हो जाऊं,
0: जाऊं, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से,
1: हाँ हाँ
0: फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा
1: हाय
0: हो
1: हाय,
0: जाऊं,
1: क्या बात है,
0: बस
1: वाह,
0: एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से,
1: फिर उसके
0: फिर
1: बाद
0: उसके बाद
1: क्या
0: हमेशा
1: नजाकत
0: को
1: है,
0: बेसदा हो जाऊं, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा
1: बेसदा
0: हो
1: हो जाऊं,
0: जाऊं। ये शेर भी सुने कि मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे,
1: वाह, मेरे
0: मेरे
1: खुदा
0: खुदा
1: मुझे एक
0: मुझे
1: ऐसी
0: एक
1: इच्छा
0: ऐसी
1: बता
0: शब
1: दे,
0: अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं,
1: क्या कहने हैं,
0: मेरे
1: वाह,
0: खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे
1: क्या दुआ है
0: कि
1: माता
0: अपने
1: अल्लाह,
0: आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं,
1: मोहब्बती दुआ,
0: कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं, मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है,
1: अच्छा,
0: मुझे यकीन है ये बात गैर
1: गैर
0: मुमकिन है,
1: मुमकिन, हाँ
0: मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो
1: क्या
0: जाऊं,
1: बात है भाई, वाह वाह वाह वाह,
0: मुझे
1: बहुत
0: यकीन
1: खूब,
0: है ये बात गैर मुमकिन
1: मैं
0: है,
1: सच के साथ
0: मैं सच
1: साथ
0: के
1: रहूं
0: साथ
1: और
0: रहूं और
1: गुमशुदा,
0: गुमशुदा हो जाऊं,
1: क्या बात है,
0: गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख,
2: तुझे
0: रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, तुझे रदीफ बनाऊं मैं

0: काफिया हो जाऊं,
1: बहुत खूब, क्या कहना,
0: तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया
1: काफिया
0: हो
1: हो
0: जाऊं।
1: जाना चाहूंगा।
0: एक गजल के एक मतला एक शेर
1: जी ना,
0: तरन्नुम में पढ़ देता हूं ताकि सामईन की खिदमत भी हो जाएगी और ये सफर जो है हमारा मुकम्मल हो जाएगा।
1: जरूर जरूर,
0: एक मतला एक शेर बस
1: जी
0: तरन्नुम में पढ़
1: इनायत
0: देता,
1: कीजिए,
0: अर्ज करता हूं समाप्त करें।
1: इरशाद।
0: आज फिर चाय की मेज पर
1: आज फिर

0: पर
1: वाह वाह,
0: एक हसरत बिछी रह
1: क्या
0: गई।
1: कहने।
0: आज फिर चाय की मेज पर
1: ये
0: एक हसरत
1: क्या कहना।
0: बिछी रह
1: क्या कहने।
0: गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए,
1: ओहो, क्या कहने।
0: केतली देखती
1: आहा,
0: रह
1: क्या कहना अरे वाह
0: गई।
1: वाह वाह, केतली देखती
0: प्यालियों ने
1: प्यालियों
0: तो
1: ने तो लब छू
0: लब
1: लिए। बहुत
0: छू
1: बहुत, केतली देखती रह
0: लिए,
1: गई।
0: केतली
1: वाह वाह वाह, क्या
0: देखती रह
1: क्या अंदाज शेर का
0: गई।
1: भाई,
0: ये
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब।
0: शेर और सुन लें जरा, इसका
1: जी
0: इस गजल का, ये मुझे
1: इरशाद
0: बड़ा मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं ये शेर और आपको सुना
1: इनायत,
0: दूं।
1: इरशाद इरशाद।
0: आज फिर इश्क हावी हुआ,
1: आज
0: आज
1: फिर
0: फिर
1: इश्क
0: इश्क
1: हावी
0: हावी,
1: हुआ।
0: और मंजिल जुनू को
1: आहा,
0: मिली।
1: क्या कहने। आज फिर इश्क हावी हुआ।
0: आज

0: आज फिर दिल ही पहले चला, अक्ल फिर सोचती रह गई। आज फिर दिल ही पहले चला, अक्ल फिर सोचती रह गई। हाथ मेरा हवा में हिला, उससे जिस दम मैं रुखसत हुआ।
1: क्या मंजर कैसी।

0: रह गई। बहुत शुक्रिया। इस महफिल मुशायरा में हमारे तमाम मेहमान शोरा, बिलखसूस ख्वाजा गुलाम उस्सकलैन समीत साहब और जहाज़ देवबंदी साहब और नदीम फर्रुख, मैं खुद, हम सब ने आपकी खिदमत में जो अपना कलाम पेश किया, अब आपसे हम रुख्सत होते हैं, इजाज़त दीजिए।
1: समीन, अभी आप मुशायरा सुन रहे थे, निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब नदीम फर्रुख। समीन, आपने मुशायरा सुना, आपको यकीनन शुआरा का कलाम पसंद आया होगा। अब अपने मेज़बान मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। अब से कुछ ही देर यानी रात्रि के 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार, 9:30 पर अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती, 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे, 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 11:10 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात्रि के 8:30 होने को हैं, अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। 8:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं जुबिन गर्ग की आवाज़ में ये गीत,

जुबिन गर्ग की आवाज़ में अभी आपने खूबसूरत गीत सुना, और अब सुनते हैं अगला गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में फिल्म काबिल से।

और अब सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और साथ ही गायक कलाकार हैं उदित नारायण। फिल्म का नाम है डर।

0: अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़ में अभी आपने एक गीत सुना फिल्म लगान से। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरु मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल

0: इंडोर खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश

0: धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
2: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम

0: शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज वाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस, 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड। Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam, and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and

0: पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहीन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला है। आज शाम नई दिल्ली में कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान करते हुए फीचर फिल्म जुमरे की ज्यूरी के चेयरमैन जयराज ने कहा कि ममूती और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेहतरीन अदाकार के जुमरे में कौमी फिल्म अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि फिल्म 370 में उनकी अदाकारी के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म के ज्यूरी के चेयरमैन असीम कुमार सिन्हा ने कहा कि सुमेरा रॉय की हिदायतकारी में भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेहतरीन मुख्तसर फिल्म मराठी में हमसफर रही। उन्होंने कहा कि बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए आनंद एल राय को दिया जाएगा। बेहतरीन फिल्म क्रिटिक अवार्ड संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा में बेहतरीन तहरीर के लिए के प्रदीप कुमार शेट्टी को उनकी कन्नड़ किताब के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सपोर्टिंग रोल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड मिलेगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना कथा कादू को बेहतरीन बच्चों की फिल्म का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। मजमुई तौर पर तफरीह फराहम करने के लिए काल्की 2898 एडी को बेहतरीन फीचर फिल्म करार दिया गया है। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के उन 20 बागी अरकान पार्लियामेंट के लिए ऐवान में अलहदा से बैठने को मंजूरी दे दी है जो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में शामिल हुए थे। जनाब बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 अरकान पार्लियामेंट के महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में जम किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। 6 अरकान पार्लियामेंट के शामिल होने के बाद पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में शिवसेना के अरकान की तादाद 7 से बढ़कर 13 हो गई है। सरकार ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल कल सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। ये इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कल की मीटिंग के दौरान सरकार दोनों ऐवानों का कामकाज खुशउसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से तआवुन की अपील करेगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम 1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने के बाद और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड कामयाबी से पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया है। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से आज 12:05 पर खला में भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर स्काई रूट एरोस्पेस को मुबारकबाद दी। उन्होंने फोन पर स्काई रूट की टीम से बात की और इस तारीखी खलाई कामयाबी को सराहा।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने भी इस कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में रामोल गटराड रोड पर आतिशबाजी का सामान तैयार करने और इसे प्रोसेस करने के यूनिट में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाक़े में लोगों की अम्वात पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مقامی

आतंकवाद मुफाहमत नामे के तहत अपने वादों और अहद को मुअत्तल कर दिया है। ईरान के मीडिया के मुताबिक जनाब गरीब आबादी ने कहा कि तरफेन मुजाकरात कर रहे थे, लेकिन अमरीका ने बकौल उनके जारहाना कार्रवाई करके मुफाहमत नामे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की मुबैना खिलाफ वर्जी की है। अमरीका और ईरान ने आज भी एक दूसरे पर हमले किए। अबनाई हुरमुज के मामले पर लड़ाई में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता 2 दिन में खारे पानी को साफ करने के प्लांट पर ये दूसरा हमला है, जिससे कुवैत में तशवीश बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो तकरीबन 90% पानी के पीने के पानी के लिए इसी तरह के प्लांट्स पर इन्हिसार करता है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल सिक्किम और उत्तराखंड में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 रोज के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर झारखंड केरलम माहे उड़ीसा और मुल्क के शिमाल मशरक़ी हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। दिल्ली के लिए कल आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की गई है। भारतीय ओलंपिक्स एसोसिएशन IOA ने आज ऐलान किया है कि ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक में तमगा जीत चुकी मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन भारतीय परचम बरदान होंगी। इन खेलों की इफ्तिताही तकरीब इस माह की 23 तारीख को OVO हाइड्रो एरिना में होगी। एक प्रेस रिलीज में IOA की सदर PT उषा ने कहा कि यह एहसास भारतीय खेलों में उनके ग्रांकदर तावन को तस्लीम करता है और उन्होंने खेलों में पूरे भारतीय दस्ते को कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। फीफा आलमी कप में आज रात मियामी स्टेडियम में तीसरे मकाम के लिए फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद आलमी कप में फ्रांस की खिताबी मुहिम खत्म हो गई है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। 72वें कौमी फिल्म अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे, उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है। अबनाई हुरमुज के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। मणिपुर में 6 नगा नागरिकों की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर लगातार चलाए गए अभियान के बाद ये गिरफ्तारियां की गई। संदिग्धों से अभी पूछताछ की जा रही है, जिससे मामले से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान

ये आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10:15 हुए हैं और श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम गीत सुनहरे का। गीत सुनहरे ये वो कार्यक्रम है जिसमें आप सुनते हैं ओल्ड म्यूजिक, वो संगीत जो हमारे दिलों में छा गया है। और जब भी आप इस गीत को सुने, आप खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। तो आइए गीत सुनहरे कार्यक्रम का आगाज करते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम का आगाज करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है शागिर्द, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं मजरूह।

तू में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदा दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म राम और श्याम से। आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की, संगीत दिया है नौशाद ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। आवाजें मुकेश की हैं और संगीत दिया है मजरूह ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन। आवाजें हैं लता मंगेशकर की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है मिलन। आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म हमराज से। आवाजें महेंद्र कपूर की, संगीत दिया है रवि ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है फर्ज। आवाजें सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है छोटी सी मुलाकात। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

चलिए सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है लाट साहब, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए AIR Live News 24x7 चैनल के साथ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए, या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातराड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएँ शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ की यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्ते को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब तक इस यात्रा के दौरान 370,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सरिता, लाई हूँ आपके लिए बेहतरीन नाक में। कार्यक्रम का आगाज़ इस खूबसूरत से गीत के साथ, आनंद लीजिए नॉन स्टॉप गीत संगीत के कार्यक्रम का।

दोस्तों, इसी खूबसूरत से गीत के साथ फिलहाल गीत बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं अभय जोधपुरकर और विकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कड़ू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्रात रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी है। इन 6 सांसदों के लिए विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाए गए 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये है। साथ ही 2 करोड़ रुपये से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे DigiLocker परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएँ शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की चेतावनी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा एक बार फिर से शुरू की जाएगी। इस वर्ष यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत और गजल।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत एंड गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 4:10 हो चुके हैं, 4:01 और 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आराधना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं उषा विजय कुमार, रागम चारू केसी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई 2026। सुबह के 4:54 हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज आप कौन कौन से कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे, इसकी आइए आपको बता देते हैं संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आज तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में जानेंगे। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत हिंदी फिल्मों से, देशगान हम जिंदा हैं सतीश भाटिया की आवाज में। कार्यक्रम स्वररंजनी होगा 5:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस कार्यक्रम में एमडी अलीम खान का वायलिन वादन राग अहीर भैरव में।

0: श्रोताओं, सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना और 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित कार्यक्रम। सुबह 6:45 पर हर रोज की तरह आपके लिए लेकर आएंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ, जिसमें आज आप सुनेंगे बाल कांड। श्रोताओं, सुबह 7:10 पर कार्यक्रम होगा संगीतिका और सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग गीतों भरी और 8:00 समाचार प्रभात और हर रोज की तरह 8:15 पर आपके लिए लेकर आएंगे न्यूज इन इंग्लिश और 8:30 पर उर्दू में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून सत्र कल से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को सख्त

0: निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एनटीए के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा परिणाम को चुनौती देने के लिए फर्जी दस्तावेज या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट का इस्तेमाल करना गलत है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार सीबीएसई ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस साल 15 मई से 21 मई तक हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके तहत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि सरकार का इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम E20 भारत की सबसे बड़ी जननैतिक सफलताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ी है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। E20 से विदेशों से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम हुई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। द गवर्नमेंट हैज कन्वीन्ड एन ऑल पार्टी मीटिंग टुडे अहेड ऑफ द कमिंग मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10th Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal. In line with the recommendations of the National Education Policy, CBSE had introduced two board examinations for Class 10th from this year. The main board examination was conducted from 17.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारा खास कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।